सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 27 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस संसार में आकर माया के आकर्षण में, इसके मोह में लिप्त होकर हम में से सभी लगभग भटक ही जाते हैं। जो अपने आप को बचा लेते हैं वो अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं, लेकिन और इस माया का आप आकर्षण देखिए कि कितने भी बुरे कर्म हो जाएं, लेकिन ये एहसास नहीं होने देती। आत्मा आपकी बराबर आपको संकेत देती है, सिर्फ सावधान करती है कि ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए जिससे ये मानव जीवन व्यर्थ जाए। नित नित हमें पता ही नहीं चलता और कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे कि हम अपने साथ नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक उसका जो असर है वह साथ लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, हम कोशिश करें कि इस चक्र से निकलें, और अगर ये जीवन व्यर्थ भी गया तो इसे सुधारने का कोशिश तो की जा सकती है।

शिव बिना शक्ति के अधूरे और शक्ति उनकी संपूर्णता, दोनों ही एक दूसरे के पूरक। तभी तो अर्धनारीश्वर भी कहा गया है शिव को। और माता पार्वती जो कि गजानन यानी गणपत जी की माँ है, और ऐसे माँ के पुत्र जो कि विघ्नहर्ता हैं, विघ्न का वो हरण करते हैं, मंगल करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि वो सभी का मंगल करें। और माँ को प्रणाम कि वो सबका अखंड सुहाग सौभाग्य सुख समृद्धि की कृपा बरसाएं।

0: आप सुन रहे थे अभी संवेद स्वरों में देशभक्ति पर रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वर में भक्ति पर रचना है आपने सुनी, वे गायक स्वर थे कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति, ए हरिहरन, लता मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए आज प्रस्तुत है हिंदी दिवस संबंधी विचार। स्वर डॉक्टर सत्यदेव आजाद का है।
1: 14 सितंबर का दिन हिंदी के इतिहास में अत्यंत महत्व का दिन है। सन 1949 में इसी दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने एक प्रस्ताव के द्वारा प्रायः सर्वसम्मति से 12 के विरुद्ध 312 मतों से देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को देश की राजभाषा स्वीकार किया था। किंतु ये हिंदी का कम और देश का अधिक दुर्भाग्य है कि ये स्वीकृति आज तक मूर्त रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकी है। स्वाधीनता प्राप्ति के लगभग 5 दशक होने पर भी हम अपनी एक संपर्क भाषा तक विकसित कर पाने में असमर्थ रहे हैं और आज भी विदेशी भाषा के दास बने हुए हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के कुछ वर्षों के बाद ही हिंदी के विरुद्ध कुचक्र आरंभ हो गया, जिसका आरंभ किसने किया स्पष्ट उत्तर दे पाना कठिन है। लेकिन संयोग की बात यह है कि इस कुचक्र की लहर उस राज्य से उठी जिसके प्रतिनिधि तत्कालीन गृहमंत्री और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल स्वामी आयंगर थे। हमें राजा जी के रुख बदल पर भी आश्चर्य होता है। स्वाधीनता के पहले मद्रास में अपने मुख्य मंत्रित्व काल में हिंदी के प्रसार प्रचार हेतु जितना काम उन्होंने किया उतना कम ही मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में किया होगा। अपने अंतिम वर्षों में वही हिंदी के कट्टर विरोधी अंग्रेजी के प्रबल समर्थक बन गए। ये बात आज भी रहस्य के पर्दे में है। हवा का ये संकेत आज भी है। ये कुचक्र अब इतना बल पकड़ता जा रहा है कि संविधान के तथ्यों और इतिहास को भी झुठलाने का प्रयास है। संविधान सभा द्वारा अनुमोदित संविधान के हिंदी पाठ पर, जिस पर 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, संदेह पैदा किया जा रहा है। अनेक राजनीतिज्ञ हिंदी के साम्राज्यवाद का अथवा लोगों पर अनचाहे हिंदी लादने का हौआ खड़ा कर रहे हैं। हर देश की अपनी एक अलग भाषा होती है जो उसकी संस्कृति की वाहिका होती है। क्या इसे हिंदी का दुर्भाग्य समझा जाए कि देश के अधिसंख्य लोग इसे बोलते हैं, इसे समझते हैं, इसलिए वो देश की राजभाषा होने की अधिकारिणी समझी गई है। हिंदी का विकास अवरुद्ध होने से प्रादेशिक भाषाओं का विकास भी रुक गया है। मात्र हिंदी के ही नहीं अपितु सारे देश के विरुद्ध रचे गए इस कुचक्र में उतनी ही गंभीरता है जितनी लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाकर हमको अपनी संस्कृति से काटने के लिए किया गया था। स्वाधीनता प्राप्ति के 50 साल के बाद अंग्रेजी का मोह आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। दुख की बात यह है कि इसमें हिंदी वाले स्वयं सम्मिलित हो गए हैं। हिंदी का नेतृत्व करने, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के पारिवारिक समारोहों के निमंत्रण पत्र भी हम अंग्रेजी में छपवाते हैं। हिंदी दिवस पर हमें इन सभी बातों पर गहन विचार करना चाहिए।
0: चिंतन बिंदु क्रम में अभी आप सुन रहे थे हिंदी दिवस इस विषय से संबंधित विचार। डॉक्टर सत्यदेव आजाद का ये स्वर था।

और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का अंश से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह के हैं। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातःकाल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवधरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

आप अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह के थे। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे सुबह 9 बजे हिंदी वार्ता कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश कुमार और सोहन लाल शीतल, इनसे ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा जनमानस की भाषा हिंदी, और इस विषय पर इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर सुनिएगा कवि मुख संक्रम में कवि गोपाल प्रसाद का काव्य पाठ। ब्रज दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:30 का। 10 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेमपाल शर्मा से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। विषय रहेगा हिंदी भाषा साहित्य भारतीय जनमानस। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय रहेगा पूर्वाह्न 11 बजे का।

पूर्वाह्न 11:30 पर सुनिएगा ललित कुमार वाजपेयी के का लिखा हुआ रूपक निज भाषा सुखदायिनी। प्रस्तुति मनोहर शांडिल लगी होगी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12 बजे। और श्रोताओं का ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुनिएगा शाम 7:31 पर।

बहनें कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। आज का विषय रहेगा बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रजलोक गीत कार्यक्रम में आज रांझा गायन, प्रस्तुत करेंगे भगवान दास अज्ञानी। NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दोपहर 2:30 पर। श्रोताओं, युवा वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में शैलेश कुमार वर्मा कहानी प्रस्तुत करेंगे, शीर्षक होगा जिंदा दिली। संध्या 6:15 पर कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक में आज आप सुनेंगे अजय कुमार तैलंग की वार्ता, विषय होगा ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग। संध्या 6:30 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 6:50 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर विकास पाठक की वार्ता प्रसारित की जाएगी, विषय होगा डेयरी उद्योग को लाभकारी कैसे बनाएं। रात्रि 10:00 सुनिएगा ढोला गायन। आज प्रसंग होगा भंवर ताल की लड़ाई और किशन लाल का ब्याह, प्रस्तुत करेंगे सुभाष चंद्र और साथी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा सितार वादन, कलाकार होंगी विदुषी मीनाक्षी वाजपेयी। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज जानकारी, पशुओं में मेटाबॉलिज्म या उपचय संबंधी रोग एवं उपचार, और इस विषय से संबंधित जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम पशुओं के उपापचय या मेटाबॉलिज्म संबंधी रोगों की चर्चा करेंगे। सभी जीवों के शरीर के भीतर हमेशा अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं क्रियाओं के सम्मिलित रूप को उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पशुओं में उपापचय के बिगड़ जाने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला रोग है मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर। यह बिना बुखार का एक अजीब सा रोग है, जिसमें पशु प्रसव के तुरंत बाद या 3 दिनों के भीतर मूर्छित हो जाता है। यह रोग अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। इसके प्रमुख कारण है रक्त में कैल्शियम की कमी, प्रसव के पूर्व कई महीनों से आहार में कैल्शियम की कम मात्रा का होना, प्रसव के बाद दूध में कैल्शियम की अधिक मात्रा का निकल जाना, विटामिन डी की कमी होना, ये प्रमुख कारण है। रोग की प्रारंभिक लक्षण प्रसव के 12 से 72 घंटों के अंदर दिखाई देने लगते हैं। पशु उत्तेजित रहता है, आंखें डरावनी रहती हैं, पूंछ ऐंठना, कांपना, जीभ बाहर निकालना, दांत कटकटाना, यह इसकी पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था में पशु बेहोश हो जाता है तथा सिर मोड़कर छाती पर रख लेता है। आमतौर पर तापमान सामान्य रहता है या इससे नीचे गिर जाता है। उपचार न मिलने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। दुग्ध ज्वर में उपचार हेतु कैल्शियम, मैग्नीशियम व फास्फोरस युक्त दवा को नस द्वारा 250 मिलीलीटर तथा अधिक दवा खाल से दी जाती है। पशु को उपचार के साथ साथ सपोर्टिव थेरेपी में ग्लूकोज, मल्टीविटामिन, एंटीहिस्टामिनिक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। उपापचय से दूसरा संबंधित रोग है शर्करा की कमी, या जिसे कीटोसिस भी कहा जाता है। यह रोग मुख्यतः गायों में होता है। बच्चा देने के 6 से 8 सप्ताह के अंदर एकाएक पशु दूध देना बंद कर देता है, अचानक उत्तेजित होता है, खाना पीना बंद हो जाता है। पशु के रक्त में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनता व ग्लूकोज का स्तर गिर जाने से यह रोग उत्पन्न होता है। गर्भावस्था में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कम होने से ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है। इसमें अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे अचानक भूख में कमी होना, पशु के दूध में कमी होना, चलने फिरने की अनिच्छा तथा स्वास्थ्य में गिरावट हो जाना। पशु का सिर झुका रहता है, आंखें आदि बंद हो जाती हैं, पशु दीवार या तथा अपने शरीर को चाटता है, रक्त और मूत्र में एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। कभी कभी यह बीमारी दुग्ध ज्वर के साथ साथ होने लगती है। उपचार हेतु पशु को शर्करा युक्त घोल नसों द्वारा चढ़ाया जाना चाहिए। पशु को कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम युक्त घोल भी दिया जाना चाहिए। मकई का दलिया गुड़ में मिलाकर देने से फायदा होता है। एक अन्य रोग है ग्रास टिटनी रोग। यह रोग मुख्यतः गाय में होता है। यह अत्यधिक प्राणघातक रोग है। इसमें बल कारक ऐंठन, कपकपी तथा पशु चेतना शून्य हो जाता है। पशु की मृत्यु 1 घंटे के अंदर हो सकती है। दुग्ध अवस्था में यह रोग किसी भी समय हो सकता है। इसमें पशु सुस्त हो जाता है, वह लड़खड़ाता है, दांत किटकिटाता है तथा शरीर ऐंठता है, बार बार पेशाब करता है, पर शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। रोग की गंभीर अवस्था में पेशियां शून्य हो जाती हैं तथा कांपने लगती हैं। उपचार हेतु मैग्नीशियम ऑक्साइड 100 ग्राम प्रति दिन 1 सप्ताह तक खिला में, मैग्नीशियम ऑक्साइड व सल्फेट का 25% घोल 100 से 200 मिलीलीटर मात्रा सुई के द्वारा दिए जाने से फायदा होता है।
0: कार्यक्रम खेती की बातें अभी आप सुन रहे थे, और इस कार्यक्रम में पशुओं में मेटाबॉलिज्म या उपचय संबंधी रोग और उपचार विषय पर जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा। साथियों, अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ ही देर में।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत साथियों आप सबकी नजर इसकी से है।
1: हमें हाल दिल तुमसे कहना है।
2: कहिए।

आपने सुना अभी आशा भोसले तलत महमूद साहब की आवाज़ में फिल्म 24 घंटे का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

दुनिया देखाऊंगा न कर झगड़ा मेरी रीटा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ चोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ चोरी जरा हंस दे।

0: जरा छोरी जरा हंस दे तू हंस दे तू हंस दे जरा गोरी जरा हंस दे तू हंस दे तू हंस दे जरा छोरी जरा हंस दे तू हंस दे तू।
1: फिल्म असली नकली के इस गीत में आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने। गीत को लिखा था शायर जनाब हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में एक बजकर पंद्रह मिनट पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम हेलो सहेली में विषय होगा बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएँ समाधान। जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप टेलीफोन नंबर 0565 ये स्टडी कोड लगाकर 25135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर शामिल हो सकते हैं। बदलते मौसम में नाक कान गला संबंधी समस्याएं और समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का समय याद रखें आज दिन में 1:15। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया, यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूँ तो जो भाषा मुझे वहाँ के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीरगाथाएं, फिर भक्ति काल का वह अद्भुत युग जब तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनुभव किया था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी। राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली, पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पथ बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित

0: इन कानून बनाए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। इसकी सातवीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक उसकी भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही हैं। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी हैं। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: सात बजकर 19 मिनट और
3: वर्ण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है निल्सन मंडेला।
4: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
5: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
6: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में संपन्न हुआ दो दिवसीय 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं।

0: बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की, कहा मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को दिया जा रहा है समान अवसर, और बारिश तथा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल संपन्न हो गया। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान में तैयार अंग प्रत्यारोपण, विस्तारित क्षमता के इमरजेंसी वार्ड और अन्य कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने संस्थान में विभिन्न पदों पर चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विगत 9 वर्षों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की एक नई श्रृंखला खड़ी हुई है।
2: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा भी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, और जहां पे कोई भी सहयोग करने को तैयार नहीं, कोई सुविधा में आच्छादित नहीं हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि उसे कुछ सहयोग की आवश्यकता है, तो सीएम रिलीफ फंड में हम उसको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराते हैं, जहां से उसको सहायता मिल जाती है, वो अपना उपचार कहीं भी जाके करवा सकता है, किसी भी इंपैनल हॉस्पिटल में जाके करा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ इसने अपनी प्रगति को की है, वह अपने आप में ढेर सारे पेशेंट को इसकी सुविधा उपलब्ध करवाएगा।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में मजबूत हुई चिकित्सा सेवाओं ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाने का काम किया है। समारोह को चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संस्थान के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आगरा में खटिक समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार विकास की मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को समान अवसर देने के लिए

0: काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि हर व्यक्ति शिक्षा, रोजगार तथा आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़े।
1: हमारी सरकार अंत्योदय और सर्वोदय की भावना के साथ काम कर रही है। सर्वोदय यानी समाज में सभी लोगों का उत्थान होना चाहिए, यही हम लोगों की कोशिश रहती है। और अंत्योदय यानी समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो बैठे हैं उनका भी उदय होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास।

0: पहुंचे। उन्हें यह सम्मान संसद में जनहित के विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने, सक्रिय सहभागिता एवं संसदीय कार्यों में योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। अपने संसदीय क्षेत्र में हुए भव्य स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित होना उनके लिए अत्यंत गौरव और भावुकता का क्षण है।
1: ये सांसद रत्न अवार्ड जो मिला है, मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं उनके लिए, ये सिद्धार्थनगर का सम्मान है जिन्होंने मुझे सांसद के रूप में चुना और उन्होंने मुझे सांसद के रूप में भेजा और मैंने अपनी परिश्रम से, परफॉर्मेंस से और पार्टिसिपेशन से सांसद से एक उत्कृष्ट सांसद का मुकाम हासिल किया हूँ। तो ये सम्मान मैं सिद्धार्थनगर के लोगों को समर्पित करता हूँ।
0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। एक रिपोर्ट।
2: फरुखाबाद बलिया में गंगा नदी, शाहजहांपुर में रामगंगा और अयोध्या, बाराबंकी व तुर्तीपार में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कन्नौज जिले में कल प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित कटरी अमीनाबाद क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर ग्रामीणों का हालचाल जाना। इस बीच मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, इटावा, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। इसी क्रम में लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर आज भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। आयोजन से जुड़े भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि गोमती के किनारे 25 सितंबर तक चलने वाले गणेश उत्सव का पांडाल कोलकाता से आए करीब 60 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है।
3: अमेरिका के न्यू जर्सी स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर हमारा मुख्य द्वार का गेट बनाया गया है। 13,000 स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया गया है वातानुकूलित वाटर प्रूफ, और 6,000 स्क्वायर फीट का एक हॉल बनाया गया है जहां भक्त लोग बैठेंगे, गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। हमारे अपने 60 आदमी लगेंगे जो कि महिलाएं और पुरुष, जो कि सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगे। मोदक कानपुर के प्रसिद्ध हलवाइयों के द्वारा बनाया जाएगा जो कि भक्तों को बांटा जाएगा।
0: पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज ही कजरी तीज पर्व भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में संपन्न हुआ 2 दिवसीय 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 6th स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संस्थान में अंग प्रत्यारोपण यूनिट सहित कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर की चर्चा, कहा मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को दिया जा रहा है समान अवसर। और बारिश तथा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष

श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? तो आप सब अच्छे रहें, हम तो यही कामना कर रहे हैं राधे रानी दे कि हमारे सब श्रोता साथी जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वे सब राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें और कार्यक्रम बस ऐसे ही सुनते रहें और जुड़े रहें आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। और ब्रज माधुरी कार्यक्रम को तो हम जाने हैं कि आप सब जो है बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं कि बस का तरियाते समय हो और हम ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुने, तो फिर हमों को तो भी जो है हमको भी यही इंतज़ार रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी अपने श्रोता साथियों से हम बात करें। बात करने को बहुत मन करे है, आपको भी करे कि ना करे। तो देखो साथियों, अब आज हम सब जाने हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और आज ही माता पार्वती यानी कि इनसे संबंधित शिव पार्वती से संबंधित आज एक बहुत ही खास पर्व है, त्यौहार है और वो है हरतालिका तीज। तो दोनों ही आप देखो पर्व जो हैं वे शिव परिवार से संबंधित हैं। तो एक ओर जहाँ अखंड सौभाग्य सुहाग और धन धान की समृद्धि की घर परिवार की कामना की ताई जो है ये व्रत करो जाए है, माता गौरी को जो है निर्जला वैसे रहो जाए है और कल जो है दूसरे दिन जो है इस पूजन को विधि विधान से तरीके से जो है आज संपन्न करके दान दक्षिणा के संग और ये पर्व जो है कल संपन्न होगा। और गणेश चतुर्थी में तो देखो अब हम तो देख रहे हैं कि कई एक दो दिन पहले से ही जो है भव्य तैयारी खूब चल रही है, अपने ब्रज जो है कोई पीछे ना आए है ना। और देखो जन्माष्टमी के बाद अब जहाँ एक और बलदेव छठ की तैयारी चल रही है, राधा रानी यानी कि राधा रानी को जो जन्मोत्सव है राधा अष्टमी, तो वह की तैयारी चल रही है। लेकिन ऐसी बात है ना, ब्रजवासी तो कहूँ पीछे ना आने।

यज्ञों को त्यौहार जो है बड़े धूमधाम से ब्रज में धूम मचाए हुए हैं। गणेश की जो है बढ़िया सी मूर्ति, बड़ी बड़ी अपनी विशाल, मतलब कहीं कहीं तो बहुत छोटे से हुए हैं, कहीं कहीं बहुत बड़े हुए हैं, और लेकिन हैं बड़े भव्य, बहुत ही सुंदर गणपत बप्पा लग रहे थे। हम तो कल देखे हमने, कल बाजार हम गए तो देखे हमने कि गणेश बप्पा जो है बहुत ही सुंदर, उनकी मूर्ति मिट्टी की जो है बनी हुई, लोग अपने घर में लावे की उनकी तैयारी कर रहे थे, यानी कि गजानन की घर में लावे की तैयारी कर रहे, और आज इनकी स्थापना है जाएगी। तो हम तो ये कहेंगे जो विघ्न हरता है, मंगल करता है, गौरी नंदन गणेश सबको कल्याण करें, तो वहीं हम गौरी माता से यही कामना करें हैं कि वे सब पर अपनी कृपा बनाए रखें जो सुहागने या व्रत को करें। और वैसे कहूँ कहूँ तो यो प्रावधान है कि जो कुंवारी हैं कन्याएं वे वो करें अच्छो वर पाइवे के ताई, और जो सुहागिने हैं वे अपने सौभाग्य को अखंड की भावना और कामना के संग ये व्रत को करें हैं, सुहाग को व्रत है। तो हम तो सब आप सब उनको यही कहेंगे माता पार्वती सब पर अपनी कृपा बरसाएं, मंगल करें सबको और कल्याण करें। आप सब उनको दोनों ही त्योहारन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और अपने कार्यक्रम में आओ आगे बढ़ें और सुने झीलों गीत।

0: तो अभी जो है आप लोग ये सुन रहे थे कीर्ति शर्मा की आवाज में। कार्यक्रम में साथियों आगे बढ़े और सुने जी काव्य पाठ कवि मुख क्रम में। आज कवि हैं गोपाल प्रसाद।
1: बिरज अनोखो धाम सखी जाकी पावन तान्यारी है, लालित्य मधुर ब्रज भाषा को प्रिय लागत सुन के गारी है। यहाँ पर ब्रह्म आए के खेलो, ब्रज माखन खाय सुखारी है। पायो स्नेह श्री राधा को, ब्रज हेत भयो गिरिधारी है। ब्रज हेत भयो गिरिधारी है। अगलो छंद देखें। ब्रज के घर घर में डोल डोल, अनुपम माधुर्य चख्यो कान्हा। ब्रज के घर घर में डोल डोल, अनुपम माधुर्य चख्यो कान्हा। पलना

ये जो भादों को महीना है ये बड़ा अद्भुत महीना है, और जहां पे एक प्रकाश डारते भाई छंद में आपको सुनाए रहे हूं। भादों को महीना अद्भुत है, जामे जन्मे गिरिधारी हैं, ललिता दिक सखी सब।

मिस प्रगति वृषभानु दुलारी है, हम कुंसनाथ करिवे के मिस प्रगति वृषभानु दुलारी है। ब्रज को महात्म बताते भाई एक छंद प्रस्तुत कर रहे हो।

आदि लगे। बरनों कहा कुंजन कुंजन कुं सुख धाम सबे अनियारी लगे।

ओ लली के यहाँ ब्रज भूमि बड़ी ही प्यारी लगे। और एक छंद ब्रज में बोली जावे वाली मधुर भाषा ब्रज भाषा के काजे।

जी लगे। और एक गीत मैं आपको सुनाई रहा हूं, जाके माध्यम सो पूरे ब्रज को दर्शन कराए भी को प्रयास है, आप मेरे संग संग आनंद लें।

तो अभी जो है काव्य पाठ को हम सब आनंद ले रहे है थे कवि मुखसो क्रम में, और आज कवि है थे गोपाल प्रसाद। तो फिर अभी और लोग गीत सुन लियो जाए।

तो साथियों, अभी जो है आप सुन रहे थे मीरा चंदेल की आवाज़ में इस लोकगीत को। साथियों, अब जो है समय सूचिका यानी घड़ी कह रही है कि हम अपने साथी से जो है अब विदा लें, कार्यक्रम संपन्न करवे की मतलब अनुमति लें। तो अब समय तो है चुको है, तो आप सब जो है खुश रहें। और एक बार फिर आप सबन को शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की और हड़तालिका दिवस की। तो आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम अब यहीं विश्राम ले है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम तीन दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से

0: करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरु मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
3: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
4: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011

0: 3-3-1-0-4-8-1 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार ना बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कैनेडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निभिन्न निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Bomma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed

0: अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर,
1: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लेंगे।

श्रोता साथियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत का गीतांजलि। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले हम आप सभी को गणेश जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी और हरताल का कजरी तीज, इसकी और हिंदी दिवस, इन सभी की आज हम आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज का दिन है भी खास, तो हिंदी का जहाँ तक सवाल है, सच बात तो ये है साथियों, हिंदी हमारा गौरव है, हम सभी भारतवासियों का, हमारी पहचान है। और सच बात तो ये कि आप एक और बात सोचिए कि आज जहाँ हम इतना उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, है ना, यूँ तो सभी भाषाएं और बोलियां अच्छी होती हैं, सभी का अपना स्थान होता है, सभी का अपना महत्व होता है। स्थान स्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं वह भी हमारी भाषा को समृद्ध करती हैं। और इस मामले में अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का जो आंगन है वो बहुत विशाल है, महासागर है, इसमें अनेकों क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय बोलियां हैं। लेकिन साथियों, सच बात तो यह कि वर्तमान समय में हम जहाँ जिस समाज की व्यवस्था में रह रहे हैं, है ना, जिस जो आबो हवा हमारे चारों तरफ है, वह है कुछ ऐसा, मतलब उसने इस कदर उलझा दिया है कि हम आज कहीं ना कहीं देखें, आप ज़्यादातर आप स्कूल विद्यालय हैं जो भी हैं, है ना, कॉलेजेस हैं, तो वो आप देखिए सब इंग्लिश मीडियम, सब अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम, और हम उसमें अपने बच्चों को, लाड़ों को पढ़ाने के लिए बेताब रहते हैं। हमारी जो सरकारी स्कूल्स हैं या जो सरकारी यानी कि जो हिंदी माध्यम है, वहाँ हम लोगों की रुचि नहीं होती है। ये कितने अफसोस की बात है कि आज हिंदी दिवस है और हम सब उतना ही हिंदी को अपनाने में हिचकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फक्र महसूस होना चाहिए, गौरव हमें महसूस होना चाहिए, और हमें तो है। कहते हैं ना, आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री और हिंदी के कवि वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, उनकी रचना कितनी सुंदर है कि वो कहते हैं कि गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, कह कबीराय मैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। और आप ये देखिए कि पहले हिंदी भाषा के, आधुनिक भाषा के जो, जिसे हम जनक कहते हैं, भारतेंदु जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं, उनके देखिए उस समय भी उनके हृदय में ये टीस थी, दर्द था, वेदना थी, कि संभवतः इससे तो यही लगता है कि उस वक्त भी उन्होंने ये महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं हिंदी जो है वह पीछे है, और उसे अपनाने में या उसके प्रति जो व्यवहार है वह अच्छा नहीं है। तो देखिए वो कह भी उठते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, वे क्या कहते हैं, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो ये है, बिल्कुल सही बात है। तो हम सब आइए अपनाएं, ना सिर्फ कहें, बल्कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस पे हमें सिर्फ एक केवल पूरा पखवाड़ा ये मनाने के बजाय हम लोग अपने हर सांस में हिंदी को जिए, हर पल जिए, और हमारी भाषा, सबकी भाषा का सम्मान करते हुए, लेकिन हमारी जो भाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, इस पे हमें नाज होना चाहिए, और हमें नाज है, हम हिंदी हैं, हमारी भाषा हिंदी है, गौरवशाली है। तो हिंदी को हम करते हैं प्रणाम।

कितना खूबसूरत और विशुद्ध हिंदी में ये लिखा हुआ गीत, गीतकार आनंद बख्शी की कलम से ये निकला हुआ गीत था, और इस इन शब्दों को पिरोया था संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत पंडित भरत व्यास की आवाज़ में। शुद्ध हिंदी की बात हो, गीतों की बात हो, और पंडित भरत व्यास जी की चर्चा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता।

साथियों, आपने सुना ये गीत जो था फिल्म सती सावित्री से। गीतकार थे पंडित भारत व्यास, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुन लीजिए कार्यक्रम से संबंधित। आज दिन में 1:15 से वनितावलोक कार्यक्रम में हेलो सहेली कार्यक्रम ये प्रसारित किया जाएगा और आज का विषय रहेगा बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं समाधान।

0: कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टेलीफोन नंबर आप एसडी कोड 0565 जो मथुरा से बाहर के श्रोता हैं वो लगाएं 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में आप नाक कान गला से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप बदलते मौसम में नाक कान गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम है, साइनस यानी नाक की एलर्जी, नाक का बंद रहना या मांस बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना, बहरापन, कान में अजीब आवाज़ें आना, टिंटिस और चक्कर आना, टॉन्सिल्स और एडेनोइड की समस्या, गले में खराश या दर्द, गले में संक्रमण, आवाज़ बैठना, हॉर्सनेस या फिर और निगलने में कठिनाई, स्लिप एपनिया, नींद में सांस रुकना या खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएं और सिर व गर्दन क्षेत्र की गांठें या ट्यूमर आदि के समाधान, यदि कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर निशांत गुप्ता से, वरिष्ठ ईएनटी जो हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे। समय कृपया ध्यान रखें, आज दिन में 1:15 से सूचना समाप्त हुई। और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।
1: प्रिय

साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं गीतांजलि कार्यक्रम का और आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से मैं हूं आपकी साथी अंजू मिश्रा। तो आनंद लीजिए कार्यक्रम का और सुनते रहिए प्यारे प्यारे से ये गीत।

साथियों, अभी आपने सुना है वर्मा मलिक के लिखे इस गीत को किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म थी हम तुम।

0: आप सुन रहे थे अभी नई उम्र की नई फसल का ये गीत। गीतकार थे नीरज और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। साथियों आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।
1: बाय।

है पर कर सेवा हो सेवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन स्वामी तुमसे

हमसे बढ़कर कौन, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ों में। संगीत राम लक्ष्मण का था और गीतकार रविंद्र रावल थे। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: एफएम 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हिंदी वार्ताक्रम में आज ये जनमानस की भाषा हिंदी, इस विषय पर सोहनलाल शीतल और डॉक्टर सुरेश कुमार से ली गई भेंट वार्ता ओपी सिंह की।
1: अभिव्यक्ति के लिए किसी भी समाज की और किसी भी व्यक्ति की एक भाषा होती है, और जब तक किसी देश की भाषा नहीं है, किसी देश की एक बोलने चालने की लिखने की एक लिपि नहीं है, तब तक वो देश और वो समाज शायद एक विकसित समाज नहीं हो सकता। तो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की हिंदी एक राजभाषा है, कामकाज की भाषा है, या कहें राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा तो है ही। तो ये हिंदी के संदर्भ में आज ये कहा जाता है कि इसकी व्यावहारिकता है वो कहीं थोड़ी सी खोती जा रही है, उसके प्रति जो मान सम्मान

0: उसको मिलना चाहिए, वो कहीं पीछे छूटता जा रहा। तो किस तरह हिंदी को हम लोकप्रिय बनाए, किस तरह व्यवहार की भाषा बनाए, किस तरह जन जन की भाषा बनाए, कामकाज की भाषा बनाए, ये आज एक प्रश्न है। और इस संदर्भ में आज हमारे साथ दो हिंदी सेवी हैं, हिंदी के जानकार हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह हिंदी हमारे व्यवहार की भाषा हो सकती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोहनलाल सीता साहब। आप शाखा प्रबंधक रहे SBI बैंक में, सेवानिवृत्त हैं लेकिन हिंदी के कामकाज से अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं, आप भी हिंदी अधिकारी हैं केनरा बैंक में और हिंदी के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं दोनों का स्वागत करता हूं। और डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि भाई हिंदी कहीं अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है, तो क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं? क्योंकि हिंदी आज भी जन जन की भाषा है और न सिर्फ राष्ट्र की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो हिंदी का परचम काफी कुछ लहरा रहा है और हर मंच पे हिंदी देखी सुनी और पढ़ी जा रही है। तो एक हिंदी सेवी होने के नाते आपके जो विचार हैं वो क्या हैं?
1: धन्यवाद सिंह साहब। ये कहना कि हिंदी कहीं विलुप्त सी होती जा रही है,
0: जी
1: ये तार्किक नहीं है और ये अशोभनीय बात कहूंगा मैं। किसी ने कहा है कि अंधकार है वहां जहाँ आदित्य नहीं है, और सुना है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। हिंदी आज के परिवेश में वो भाषा है जो शायद न केवल अपने भारतवर्ष में ही, पर हिंदी राजभाषा है, भारत की है, राजभाषा है हमारे स्टेट की है, हमारे राज्य की है, और कामकाज की भाषा है, हमारे कार्यालय की भाषा है, और जन जन की भाषा है वो हमारे हर
0: अपने
1: आदमी
0: दिल की
1: अपने दिल
0: भाषा
1: की
0: है।
1: भाषा है। तो
0: जी
1: हम जो भी कोई चीज अपनी भाषा में प्रकाशित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, वो दूसरी भाषा में करना संभव नहीं है। मेरी जो हिंदी है, हिंदी तो कैसी भाषा है जिसमें हर भाषा के शब्दों को हजम करने की ताकत है सर, चाहे अंग्रेजी हो, किसी का भी शब्द ले लो,
0: मतलब आत्मसात करने के मामले में हिंदी का कोई सानी
1: कोई
0: सानी
1: सारी
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है। और जब जो आदमी हर आदमी को स्वीकार करता है तो वो आदमी अपने आप में महान बन
0: मान
1: जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है।
1: तो यही हालत मेरी भाषा हिंदी भाषा की भी है। हिंदी
0: जी
1: भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों को हजम करने की ताकत है, इसलिए ये भाषा देश की, मैं समझता हूँ राष्ट्रभाषा ही कहूंगा मैं, तो राजभाषा तो है ही है लेकिन चूंकि मेरे राष्ट्र में बोली जाती है तो राष्ट्रभाषा ही मैं कह सकता हूँ इसे। नंबर 2, केवल ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 144 विश्वविद्यालयों में ये भाषा पढ़ाई जा रही है, और वहाँ हिंदी का परचम, हिंदी का झंडा अपने आप में एक गरिमामय स्थान कायम किए हुए है।
0: जी सुरेश कुमार
1: जी
0: जी, जो डॉक्टर सीतल ने कहा कि व्यावहारिक तौर पे अपनी स्थिति के तौर पे हिंदी का आज खूब नाम है, खूब पहचान है, लेकिन संवैधानिक स्थिति अगर हम जानना चाहें आपसे, तो हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है कि संविधान के माध्यम से किन अनुच्छेदों के तहत किस तरह से इसका एक सफर रहा, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे इसमें?
2: सर, मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में संविधान लागू होने से पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। 1950 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया
0: लागू
2: था,
0: हुआ जी।
2: और उसी संविधान में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक राजभाषा संबंधी सरकार ने प्रावधान किए गए थे, और 343(1) में कहा गया था कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और उसी के साथ से अंतर्राष्ट्रीय अंकों का स्वरूप का भी उन्होंने विकास किया
1: अंतरराष्ट्रीय
2: गया,
1: अंकों का भी स्वरूप
2: अंकों का
1: है,
2: स्वरूप जो अंतर्राष्ट्रीय अंक
1: बिल्कुल
2: होगा,
1: सत्य है।
2: और जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि का अर्थ है कि जैसा हम बोलते हैं उसी में हुबहू वैसे ही लिखा जाता है।
0: लिखा जाए
2: तो
0: जी।
2: उसी के अनुरूप जैसे उन्होंने 344 बनाया गया, 344 में राजभाषा आयोग गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष बीजी खेर बनाए गए थे। इसी तरह उन्होंने 345, 46, 47 से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी जो अनुच्छेद थे उसमें बताया गया, और 351 में ये बताया था कि हाँ, जो हमारी राजभाषा हिंदी है वो सभी भाषाओं को आत्मसात करते हुए और सामाजिक प्रवृत्ति के इसके आधार पे आगे बढ़ेगी। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे जो राजभाषा हिंदी है इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश अभी है, और उसके
0: मतलब जो भी आ रहा है, एक
2: हाँ
0: जो न, एक बड़ी नदी की तरह उसमें
2: जी,
0: जो भी
2: और जो भी आ
0: प्रवाह
2: रहा
0: मिलता रहता है उसको समाहित करते हुए
2: है
0: आगे बढ़ रही है
2: आगे बढ़
0: उसमें।
2: रही है।
0: तो इस व्यावहारिक तौर पे अगर हमें इसकी जैसे कहीं लोकप्रिय बनाना है, संवैधानिक स्थिति तो है लेकिन फिर भी उसको लागू करने का, उसको आगे बढ़ाने का, और जैसा कहा जाता है कि उत्तरोत्तर उसका विकास करना है, उसको धीरे धीरे इस तरह बनाना है कि हमें ऐसा ना लगे कि हम उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे अपने जन की, मन की और हमारे कामकाज
2: की
0: की
2: बात
0: भाषा ऐसे हो जाए कि उसमें हमें ऐसा ना लगे इसके लिए कोई प्रयास भी हो, और क्यों कर करें जब हमारी वो मातृभाषा है। तो
2: बात
0: ये जो एक दौर रहा,

0: 50 में तो लागू हो गया, लेकिन शुरुआत
1: मैं
0: कहीं 63 से हो
1: 63 से
0: रही
1: हुई
0: है
1: है।
0: उसमें, तो वो उसमें थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन क्या अब ऐसा लगता है कि अब जो गति है उस गति से जो इस काम को बढ़ाया जा रहा है वो आपको पर्याप्त लगता है उसमें, या कहीं और उसको मूल्यांकन और उसमें और गति देने की जरूरत आपको लग रही है उसमें,
1: हाँ सर, अभी तो गति मतलब
2: देने की
1: देने
2: आवश्यकता
1: की
2: है अभी?
1: आवश्यकता है, क्योंकि सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दे रही है। और आपने देखा होगा कि जब ये हिंदी को राजभाषा, जो हिंदी हमारी, इसको व्यापार की भाषा बना दिया है, यदि व्यापार और रोजगार की बात, रोजगार प्रक को इसको शामिल कर दिया जाएगा, तो हिंदी और ज़्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि करती जाएगी। क्योंकि लोग अभी समझते हैं कि हमें रोजगार के लिए अंग्रेजी को ही
0: जी
1: प्रथम स्थान दिया जाता है। जब भी कोई भी परीक्षा होती है, उसमें
0: हुँ.
1: जो भी पेपर आता है, अंग्रेजी और हिंदी अन्य लैंग्वेज में भी आता है, भाषा में आता है, लेकिन यदि पर्सन जो सही है उसको हम अंग्रेजी में ही उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
0: जी डॉक्टर शीतल, क्या ऐसा लगता है कि व्यवहारिक अभी जरूरत और है इसको
2: नहीं
0: बढ़ावा
2: सर,
0: देने की?
2: हाँ सर बिल्कुल सत्य है। और सबसे बढ़िया बता दूं मैं आपको, वो हिंदी लाने के लिए थोड़ी मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। भाई ये कह देगा अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, हिंदी पढ़ेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हमारे यहाँ जो बैंकों में हिंदी अधिकारी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने विभाग हैं सब में हिंदी अधिकारी पोस्ट है। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में, हर और हर स्कूल में हिंदी का प्राध्यापक, हिंदी का अध्यापक, हिंदी का प्रोफेसर, हिंदी का ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हिंदी रोजगार रोजगार परक तो पहले से ही है।
0: जी।
2: नंबर दो, ये हम कहें कि भाई अंग्रेजी से हमें जल्दी नौकरी मिल जाएगी, सर ऐसा संभव नहीं है। अंग्रेजी आपको रोजगार दे सकती है, कार दे सकती है, लेकिन आपको अंग्रेजी संस्कार नहीं दे सकती। इसलिए हिंदी वो भाषा है जो आपको रोजगार के साथ साथ संस्कार भी
0: भी
2: देती
0: देती है
2: है।
0: जी। और
2: और
0: किसी भी
2: मैं ये
0: समाज
2: कहूँ कि
0: और व्यक्ति के
2: हाँ,
0: लिए
2: यहाँ
0: संस्कार बड़ी चीज है
2: संस्कार,
0: सर।
2: सबसे जहाँ संस्कार शुद्ध हैं, जहाँ संस्कार बिल्कुल अच्छे हैं, निश्चित है वहाँ कोई भी चीज बाधक नहीं होगी। हिंदी के बढ़ाने में, प्रचार करने में, हिंदी को समृद्धशाली बनाने में अपनी विचार और मानसिकता दोनों ही
0: जी
2: काम आनी चाहिए।
0: डॉक्टर सुरेश कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ये सोचा कि आप बैंक में आए, फिर उसमें एक हिंदी के माध्यम से आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो हिंदी को आपने एक करियर के रूप में जब चुना, तो
1: जी
0: क्या आपने ऐसा सोचा था जो आज हो उसमें, यही सोचा था, या कुछ अनायास करके इस तरह आ गए उसमें?
1: नहीं सर, मैं क्योंकि बैंकिंग जो क्षेत्र है वो देश आज़ाद होने से पहले से ही है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक जो है 1905 या 19वीं सदी के आसपास के हैं, और क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ज़माना था, तो बैंकों में जो रेगुलेटिंग है वो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। लेकिन राजभाषा हिंदी थी, वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद में बैंकों में आई है,
0: जी।
1: क्योंकि उससे पहले तो बैंक सारे प्राइवेट थे, और बैंक यदि राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकों में ऑटोमेटिक रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा। और आप देखते हैं बैंकों में जितने भी कामकाज, आप स्टेशनरी आइटम्स है, फॉर्म्स है, ड्राफ्ट है,
0: अब वो
1: बाइलिंगुअल
0: बाइलिंगुअल हो गए,
1: हो
0: अंग्रेजी के
1: गए,
0: साथ साथ हिंदी भी है।
1: और जो ग्राहक भी है वो आप देखें गांव में ज़्यादातर जो स्लिप वगैरह है, अपना पैसा निकालना, लेन देन करना, बातचीत करना, वो एकदम हिंदी में करता है, या गांव की जो भाषा है वो अपनी मातृभाषा में करता है। और आपने देखा होगा कि ये बैंकों में जो विभिन्न पूरे भारतवर्ष के लोग काम करते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत का है, चाहे वो पूर्वोत्तर का है, तो वो यहाँ पे आके आराम से उसको सहज रूप से अपनी बोलचाल में ढाल लेता है और कामकाज भी करता है। इसलिए क्योंकि लोग सोचते हैं कि बैंक में अब कि जो बैंक पहले प्राइवेट था, लोग दूर होते थे जाने के लिए, आज आप देखते हैं बैंकों में एक गांव के लोगों की भीड़ सी उमड़ी रहती है, और वो अपना
0: मतलब
1: लेन देन
0: वहाँ
1: कर
0: कामकाज की भाषा के रूप में
1: क्या
0: हिंदी आई
1: आई
0: है
1: है,
0: और
1: बहुत आई है
0: व्यावहारिक रूप से
1: जी।
0: उसने स्थान बनाया है। इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हालांकि सब चीज़ें बाइलिंगुअल हो गई हैं और हिंदी में ज़्यादातर काम हो भी रहा है, व्यक्तिगत तौर पर जो कर रहे हैं कि हिंदी में जो काम करना चाहता है उसके लिए मनाही नहीं है, उसका काम हो जाएगा।
1: जी
0: तो कुछ और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए और व्यावहारिक बनाने के लिए, उस झिझक को कम करने के लिए डॉक्टर शीतल ने कहा
2: हाँ
0: जैसे कि मानसिकता को बदलना
1: जी
0: है, तो जब हम बैंक में जाएं तो पहले थोड़ा सा घबराहट सी होती थी, क्या मैं सही कर पाऊंगा कि नहीं, लिख पाऊंगा कि
2: हाँ
0: नहीं,
2: तो
0: तो
2: वही
0: आज वो झिझक कहीं टूट रही है। व्यक्ति जब जाता है तो हिंदी में काम शुरू करता है तो उसे ऐसा नहीं लगता कि मेरा काम नहीं होगा, हो जाएगा, ऐसा वो सोच के जाता है उसमें।
1: नहीं, उसको क्योंकि हिंदी में उसको पहले से ही बैंक में इस तरह की परिपाटी थी, और आज भी बैंकों में नोटिस बोर्ड जितने भी जन सूचनाएं हैं वो द्विभाषी रूप से आती हैं, और या द्विभाषी नहीं है तो हिंदी में जरूर लिखी होती हैं, तो आम जो नागरिक आता है वो उसको पढ़ लिख कर अपना जो वहाँ पे बैठा रहता है तो वो देखता है कि बैंक में इस तरह की लोन सुविधाएं हैं, इस तरह की सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, और कृषि ऋण योजना है, वो देखता है, और उसके कारण ही बैंकों में आज गाँव के

0: खींचे आ रहे हैं
1: जी जी
0: और
1: उनके
0: वो
1: काम हो रहे हैं, मतलब
0: उनका काम हो रहा है, और सरकार भी लोगों को लोन की सुविधा देके अपनी तरफ जोड़ने का
1: बैंकिंग योजना की
0: बैंकिंग
1: तरफ
0: के
1: आकर्षित कर रही है।
0: अब
1: जी जी
0: आकर्षित
1: जी
0: भी कर रही है, और
1: जी
0: लोग अब क्या कि पहले जो लोगों के खाते अपने घरों में पैसे रखते थे, आज वो नहीं है, आज लोग बैंकों में अपना एक खाता किसी एक ग्राहक
1: मतलब
0: का
1: हिंदी के प्रचार प्रसार
0: प्रसार
1: से कहीं लोगों की जो जरूरत
0: हमारी
1: है
0: हाँ वो
1: वो भी
0: पूरी हो रही
1: बैंकों
0: है,
1: के माध्यम से
0: माध्यम से
1: व्यवसाय
0: पूरी
1: बढ़ रहा है।
0: व्यवसाय
1: जी
0: बढ़ रहा
1: भाई,
0: है।
1: भाषा का जहाँ सरलता है, और चूंकि भाई गांवों में कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो वो तो अपना काम हिंदी में चलाएंगे ना, तो ऐसे लोगों के लिए बैंक में बड़ी सुविधा है कि वो अपना हिंदी में ही फार्म भरें, हिंदी में ही बात करें, हिंदी में सब कुछ हिंदी में करें, तो भाषा जो अपनी रोजमर्रा की भाषा है उस भाषा का ही प्रयोग करें, उस भाषा से हमारी व्यवसाय में वृद्धि होती है। क्योंकि हम अगर गाँव में जाते हैं तो वहाँ शुद्ध हिंदी बोली जाती है, और खासतौर से कहीं कहीं ब्रज भाषा और वहाँ की आंचलिक भाषा ही बोली जाती है,
0: जी
1: तो वो
0: जी
1: भाषा है कुल मिला करके। तो भाषा के संवर्धन में, जो हमारी जो व्यवसाय के संवर्धन में और भाषा संवर्धन, दोनों ही अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं।
0: मतलब जो
1: जी
0: बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो व्यापार है, अर्थ का काम है, उसके
1: जी
0: साथ साथ व्यावहारिक तौर पे हिंदी के प्रचार प्रसार में
1: हाँ, हिंदी के
0: भाषागत जो एक विकास है उसमें भी देश में योगदान दे रहा है, इसमें
1: योगदान
0: कोई दो बिल्कुल राय
1: दोहरा नहीं
0: नहीं
1: सकते
0: है, और उसमें
1: सकते
0: हिंदी
1: हैं
0: हमारी
1: मुख्य
0: सहयोगी के
1: भूमिका
0: रूप
1: निभा
0: में
1: रही है।
0: निभा रही है। उसमें
1: हाँ,
0: राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में अगर डॉक्टर
1: एकता
0: साहब
1: की भाषा है सर। वो एक
0: मैं जानना
1: छंद था ना,
0: चाहूं
1: एक
0: कि
1: वो मैंने एक छंद ध्यान हो तो आपको, के चंदन के चंदन सो नंदन की वंदना में, मीरा के मजीरन की तान है कमाल की, और मैया मोरी मैंने न चुराया खाया माखनुरी, ऐसी सरसानी मृदवानी है गोपाल की, और ने कहूँ न टेढ़ो जामे मार्ग स्नेह को है,
0: वाह
1: मैया
0: वाह
1: भांज
0: वाह
1: घुंगरू
0: जी
1: नचावे नंदलाल की, और सोहन सुअंग गात बारों ऐसी बानी माए, हिंदी है सुहानी बिंदी भारती के
0: ये
1: भाल
0: बात
1: की।
0: वाह वाह
1: तो
0: वाह क्या
1: ये
0: बात
1: हमारे
0: है
1: देश की जो भाषा हिंदी है वो हमारी भारत माता की बिंदी है,
0: बिंदी
1: उसका
0: का
1: सम्मान है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, जो हमारी जो भी भाषा है वो हमारे राष्ट्र का सम्मान है।
0: तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे सुरेश कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूं कि भाषा को व्यवहार में लाएं, भाषा को अपनी अंगीकार करें,
1: जी
0: स्वीकार करें, उस पर मान करें, सम्मान करें, तो ये एक गर्व की बात तो है ही, लेकिन संस्कार जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि संस्कार और व्यवहार को आगे बढ़ाने में भी भाषा हमारी मदद करती है, तो हिंदी इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। हाँ सर, पूरी तरह से कामयाब है इसमें।
2: तो अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता क्रम में, ये सोहनलाल शीतल और डॉक्टर सुरेश कुमार जी से ली गई भेंट वार्ता ओपी सिंह की, विषय था जनमानस की भाषा हिंदी। साथियों 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए जालौन और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
1: जालौन जिले से पुलिस द्वारा अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एड थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 892 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जालौन पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। साइबर थाना व जनपद जालौन के थानों पर गठित पुलिस टीम द्वारा लगभग 40,97,000 रुपए की कीमत के गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किए गए, जिससे लोगों के चेहरों में चमक नजर आई। अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने इस बारे में जानकारी साझा की।
2: जालौन पुलिस के द्वारा निरंतर हर माह सीआईआर पोर्टल के माध्यम से जो फोन गुमशुदगी जिनकी दर्ज होती है जो हो जाते हैं उनको निरंतर उनके स्वामियों से मिलाया जाता है। इस महीने 241 फोन नियमानुसार सीआईआर के माध्यम से बरामद किए गए हैं। इसकी मार्केट में वैल्यू लगभग 41 लाख रुपए की है। जो सभी लोग जो है अपना फोन पाकर अति प्रसन्न है।
1: जालौन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा का

0: सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 12,000 और सहायिकाओं का 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। रानी लक्ष्मीबाई सभागार, विकास भवन उरई समेत जनपद की सभी तहसीलों में कार्यक्रम का प्रसारण देखा और मुख्यमंत्री का संबोधन सुना गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 9 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। 4 कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली दी गई और 7 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई कराई गई। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की देखरेख में इन योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में जिले के कुल 1,32,475 लाभार्थियों के खाते में हर महीने सीधे आर्थिक मदद पहुंच रही है। आंकड़ों के अनुसार वृद्धा पेंशन योजना के तहत सबसे ज्यादा 85,016 बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं निराश्रित पेंशन योजना से 31,523 महिलाओं को दिव्यांग भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत 15,824 दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कुष्ठ पेंशन योजना के अंतर्गत 112 लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा है कि
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जनपद में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की स्कीम चलाई जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, इसके अलावा जो कुष्ठ रोगी है उनको जीवन यापन के लिए दी जाने वाली 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन सहायता योजना है। हमारे जनपद में कुल 1,32,000 लाभार्थी हैं जिनको नियमित रूप से पेंशन दी जा रही है। कुल जनसंख्या का 15% है। इस प्रकार हमारे जनपद की 15% आबादी को सामाजिक सुरक्षा के कवर से आच्छादित किया गया है और उनको समाज में अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए एक सम्मान का भाव मिला हो।
0: जालौन में परिवहन विभाग के प्रशंसनीय शुल्क की वसूली में प्रदेश स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेश कुमार ने अगस्त माह में निर्धारित 26 लाख रुपए का लक्ष्य के सापेक्ष में 51,27,000 रुपए की वसूली की। क्रमिक लक्ष्य 180 लाख रुपए के सापेक्ष में 256,70,000 रुपए की प्राप्ति कर मासिक और क्रमिक दोनों श्रेणियों में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं यात्री कर मालकर अधिकारी आनंद राय कुलीर ने अगस्त माह में 30 लाख रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष में 37,46,000 रुपए का क्रमिक लक्ष्य 150 लाख रुपए के सापेक्ष में 170,08,000 रुपए वसूली की। उन्होंने मासिक श्रेणी में प्रथम प्रदेश में दूसरा स्थान, क्रमांक श्रेणी में पांचवा स्थान हासिल किया।
2: जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
3: बुलंदशहर जनपद में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना कार्य से संबंधित तैयारियों, प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनगणना के द्वितीय चरण हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जाएं। बुलंदशहर में बीते दिन जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी और बैठक तथा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व, आरक्षण की स्थिति तथा संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा आयोग के समक्ष स्थानीय स्तर पर पिछड़े वर्गों से संबंधित विषयों एवं समस्याओं को रखा गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाएं एवं अभिलेख निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी तथ्यों को स्पष्ट एवं प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जाए। बुलंदशहर में 8 सितंबर को सांसद डॉ. भोला सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद

0: में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद भोला सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले के जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति ODOP की बैठक बीते दिनों आयोजित हुई। बैठक में ODOP योजना अंतर्गत CSIR CGCRI खुर्जा द्वारा प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए उपस्थित सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए गए। पॉटरी उद्योग में तकनीकी दक्षता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई एवं उत्पाद निर्माण से पूर्व कच्चे माल एवं निर्मित माल की टेस्टिंग की सुविधा भी स्थानीय उद्योगों को प्राप्त होगी। बुलंदशहर में 5 सितंबर को जनपद स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के 58 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20, इस प्रकार जनपद स्तर पर कुल 78 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बीते दिनों जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में तहसील शिकारपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में 89 फरियादियों द्वारा अपनी समस्याओं के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मौके पर 30 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए गए। बुलंदशहर में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने विकासखंड सिकंदराबाद की ग्राम पंचायत बहुरावास में पंचायत सचिवालय में बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से लाइब्रेरी के खुलने एवं युवाओं का लाभ मिलने इत्यादि के संबंध में जानकारी हासिल की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाइब्रेरी को निर्धारित दिवसों में अवश्य खोला जाए, साथ ही लाइब्रेरी पर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए गांव के लोगों को एकत्रित कर उन्हें लाइब्रेरी पर उपलब्ध प्रतियोगी पुस्तकों एवं अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकों के बारे में जानकारी दी जाए। राज्य महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत मंगलवार को बुलंदशहर जिले के दौरे पर रही। जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उनकी अध्यक्षता में NREC महाविद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधिक जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं और अधिनियमों के विषय में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा बुलंदशहर के जिला पंचायत सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान 47 महिलाओं द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए। अध्यक्ष ने महिलाओं की शिकायतों को सुनकर संबंधित विभागों को शीघ्र ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: कार्यक्रम प्रस्तुत है आवो हवा के अंतर्गत। ललिता गुप्ता की ये जानकारी, विषय है मानव और वृक्ष।
3: पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान सर्वाधिक होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित आम आदमी ही होता है। मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के मूलभूत घटक हैं। इन सभी के तालमेल से पर्यावरण स्वस्थ और संतुलित रहता है। किंतु अत्यंत खेद की बात है कि आज मनुष्य अपने अहम और स्वार्थ के वशीभूत असंतुलित भौतिक विकास की दौड़ में अंधा होकर बेरहमी के साथ वनों को उजाड़ रहा है, काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, प्राण वायु को विषैला बना रहा है। प्रकृति पर लगातार होने वाले ये हमले पर्यावरण को तिल तिल करके नष्ट कर रहे हैं। देखा जाए

तो आज का मनुष्य अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर आज विनाश की ओर बढ़ रहा है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण में मानव का योगदान दो चरणों में होगा। सबसे पहले प्रदूषण की गति थम, दूसरा संरक्षण को गति प्रदान करके। वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण शब्द का दायरा सूक्ष्म में जैविक कोशिका से ब्रह्मांड तक बढ़ गया है। औद्योगिकरण और मानव सभ्यता के आधुनिक विश्वास से पहले पर्यावरण और मानव दोनों के बीच एक सामंजस्य एवं संतुलन था, परंतु जैसे जैसे उद्योगों का फैलाव बढ़ता गया और जनसंख्या वृद्धि से आबादी के घनत्व में बढ़ोतरी होती गई, वैसे वैसे कई क्षेत्रों में पर्यावरण विकृति की गति इतनी द्रुत होती गई कि अब प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन

इतनी द्रुत होती गई कि अब प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन करना एक विकट समस्या बन गया है। इससे न केवल मानव जीवन संकट में है, अपितु पशु पक्षी जगत एवं वनस्पति जगत के लिए भी यह संकट उतना ही भयावह हो गया है। इसको हमें बचाना है। इस संकट से बचने के लिए यह आवश्यक है मिलजुल कर ऐसे प्रयत्न किए जाएं जिससे हमारी पृथ्वी और पर्यावरण सही सलामत रहें। वृक्ष लगाएं, तीव्र औद्योगिकरण, वनों के बेरोक टोक, कटाव, नदियों में कूड़े कचरे का प्रवाह, कृषि में रसायनों का असंतुलित प्रयोग और तेजी से बढ़ती जनसंख्या आदि के द्वारा पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए मनुष्य ही पूर्णतः जिम्मेदार है। इसके लिए हमें ऊर्जा की बचत अधिक से अधिक करनी चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्य के लिए घातक है उसके वायुमंडल में जाने की गति धीमी हो जाए। दूसरी ओर हमें ऊर्जा के उन स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा जिनसे ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा एक है। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें तो न इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और न ही मीथेन। इस प्रकार हम पवन ऊर्जा का प्रयोग भी करें तो यही सब लाभ होंगे। सौर ऊर्जा से हम खाना भी पका सकते हैं, बिजली भी बचा सकते हैं। जिन महिलाओं के यहाँ चूल्हे से काम हो रहा है और सारा प्रदूषण कर रहे हैं उनको सौर ऊर्जा का चूल्हा प्रयोग में लाना चाहिए। यदि हम व्यर्थ कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करें तो मोटर गाड़ियों के उपयोग में थोड़ी सी योजनाबद्ध नीति पेट्रोल की खपत को कम करके पर्यावरण को दूषित होने से बचा जा सकता है। मानव चाहे तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास को रोके बिना भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। अवशिष्ट प्रदूषक पदार्थों का कंपोस्ट खाद बनाकर मानव उपयोग में लाए, उन्हें जल में नहीं बहाए ताकि उनके हानिकारक तत्व जल में नहीं जाएं और मनुष्य बीमार नहीं पड़े। आज मानव परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का किफायत से उपयोग करे और साथ ही गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग करने के प्रयास किए जाएं। इस दिशा में अधिक से अधिक शोध एवं प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे इसके लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताएं सीमित रखें और अपना जीवन सादगी से बिताए, विशेष तौर पर ऊर्जा का अपव्यय रोककर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले एक ही वाहन का उपयोग करें तो पेट्रोल की खपत कम होगी। पॉलिथीन का प्रयोग न करें, जल का अपव्यय न करें। हम देखते हैं कि जगह जगह पानी बह रहा है, जगह जगह रोड लाइटें जल रही हैं, तो हम उसको अपव्यय न करके जनता में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाएं। श्रोताओं, सारे मानव जन को मिलजुल कर प्रयास करें तो ही इन परिवर्तनों के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से बचा जा सकता है।

0: कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत आप सुन रहे थे ललिता गुप्ता से ये जानकारी। विषय था मानव और वृक्ष। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह। संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, तो श्रोताओं, आज का सुविचार है कि मृदुभाषी बने, क्योंकि सारे जगत में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे वाक शक्ति मिली है, जिससे वो बोलकर

अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। साथियों, जहां वाणी हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन वहीं एक शाप भी है, क्योंकि मीठा बोलकर हम किसी के भी हृदय को जीत सकते हैं, और अगर हम कड़वे वचन बोलते हैं तो हमारी बात किसी को भी तीर की तरह चुभ सकती है, और उससे हमारे संबंध हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को वश में रखें। मधुर वचन सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को ही परम शांति और सुख पहुंचाते हैं। प्यार से बोलने वाले व्यक्तित्व की पहचान एक अलग ही होती है, समाज में उसका एक अलग ही सम्मान होता है। प्यार से बोलने वाले व्यक्ति हमेशा अपने मन को हल्का और तरोताजा महसूस करते हैं, और उनका व्यक्तित्व हमेशा प्रसन्नचित रहता है। जब हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते तो हमें भी इस प्रकार के कड़वे वचन सुनने को नहीं मिलते, और अंदर से हमें भी बहुत शांति मिलती है। मीठी वाणी बोलना एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है, जो हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है और सामाजिक जीवन में सफलता की कुंजी भी मानी जाती है। जो व्यक्ति अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करता है, तो चाहे उसका वो कार्यालय हो, चाहे कहीं भी नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, वहाँ भी उसको उन्नति के अवसर मिलते हैं, क्योंकि हमारी मीठी भाषा से, हमारी अच्छी भाषा शैली से हमारे जो तरक्की के रास्ते हैं वो भी खुलते हैं। क्योंकि कहीं भी हों हम, सबसे पहले हमारा स्वभाव, हमारी विनम्रता ये देखी जाती है। इसलिए हमेशा किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लें और प्रयास करें कि हमारी वाणी से किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचे। और कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए।

0: ये दिवस हम सबके लिए गर्व और आत्मसम्मान का दिन है। ये वो पावन अवसर है जब हम अपनी मातृभाषा हिंदी के सौंदर्य, उसकी शक्ति और उसकी मधुरता को बड़े ही स्नेह से याद करते हैं। तो आज हम मना रहे हैं हिंदी दिवस, और आज इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं KRPG कॉलेज मथुरा से हिंदी की प्रोफेसर एवं हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि किरण जी। आपको हमारी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: धन्यवाद आपको भी और हमारे समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जैसा कि आज हिंदी दिवस है, बताएं कि आज हिंदी दिवस मनाए जाने का क्या उद्देश्य है और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है।
1: देखिए, हमारे देश में आजादी के बाद हमारे देश के विद्वजनों ने, साहित्यकारों ने ये तय किया कि संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, और इसके लिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, तभी से हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने की प्रासंगिकता यह है कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधे, सब भेदभाव मिटाकर सारे राज्य के लोग प्रेम से रहें, हिंदी भाषा में कार्य करें, एक दूसरे को समझें और निरंतर विकास की ओर उन्मुख हों।
0: हम जब हिंदी का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और हिंदी दिवस भी हम इसीलिए ही मनाते हैं, तो इन सबको देखते हुए क्या हिंदी के प्रति अब युवाओं का रुझान और उनकी रुचि बढ़ रही है?
1: जी बिल्कुल, युवाओं की रुचि हिंदी के प्रति बहुत बढ़ रही है, और उसके पीछे जो मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो टीवी है, रेडियो है, या बहुत सारे जो हमारे पास साधन है आजकल जो डिजिटल चल रहे हैं, उनमें जो है युवाओं को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कविताएं मिल रही हैं, हास्य लेख मिल रहे हैं, जो भी वो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो उन्हें हिंदी भाषा में मिल जाते हैं, जिससे हिंदी के प्रति सबका प्रेम बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये है कि हिंदी में अब रोजगार के अवसर बहुत हो चुके हैं। पहले हिंदी में लोगों को जानकारी नहीं थी कि रोजगार के इतने अवसर हैं। अब केवल हिंदी भाषा साहित्य का विषय नहीं है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी हो चुका है। इसमें आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, हिंदी अधिकारी बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रूफ रीडर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, और यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी हिंदी भाषा में हमारे पास बहुत सारा काम है जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और कोई भी विषय है उसमें जब हम प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें हिंदी तो होता ही होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का महत्व बहुत बढ़ रहा है।
0: जैसा कि हम देखते हैं कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उसकी जब छात्र तैयारी करते हैं तो उनके अन्य जो विषय हैं उनमें तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन जब वो हिंदी का भाग आता है तो उसमें वो कठिनाई महसूस करते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, बच्चों में कैसे बचपन से इसकी एक आधारशिला रखी जाए?
1: देखिए, जब बच्चे प्राइमरी स्तर पे होते हैं तभी कम से कम शिक्षकों को और उनके माता पिता को उन्हें बताना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जब हम मातृभाषा से जुड़े रहेंगे तो हम निस्संदेह तरक्की कर पाएंगे, एक दूसरे की चीज़ों को समझ पाएंगे। किसी बच्चे को मातृभाषा में कोई बात समझाओ तो उसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, और अंग्रेजी में समझाओ तो उसे नहीं समझ में आएगी। अंग्रेजी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे देश में दूसरा विषय अंग्रेजी ही है। मैं ये कहती हूँ कि किसी भी भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, हर भाषा को हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें मातृभाषा से जुड़े रहना चाहिए। इसलिए हमारी जो व्यवस्था है हमें उसे बदलना होगा, और हमें अपनी व्यवस्था में अपने बच्चों को ये बताना होगा छोटे स्तर से ही कि अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें, हिंदी को सीखें, हिंदी को पढ़ें, हिंदी में पहाड़े सीखें, हिंदी में गिनती सीखें, जो कि बहुत आवश्यक है, तभी वो समाज से जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादातर समाज गरीब वर्ग से है। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें गरीब वर्ग से जुड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हमें जो है बच्चों को प्रारंभ से ही ये सिखाना पड़ेगा।
0: जी, बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया, और इसी के साथ एक और प्रश्न करेंगे कि सरकारी कामकाज और कार्यालयों में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
1: देखिए, आज़ादी के बाद से हमारी जो राजभाषा बनी है जब से हिंदी, तब से ये नियम बना दिया गया है कि अधिकांश जो सरकारी कार्य हैं वो हिंदी में ही होंगे, लेकिन फिर भी हम किन्हीं विशेष कारणों से या अपनी मानसिकता के कारण अंग्रेजी में काम करते रहते हैं और हिंदी में काम नहीं कर पाते हैं या करना जरूरी नहीं समझते। तो ऐसे में हमें सारे अपने सरकारी काम हिंदी में ही करनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजी को हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो वो हमारी आदत में आ गया है। हिंदी में कुछ संस्कृत निष्ठ शब्द हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आते। तो हमें ये चाहिए कि जितने भी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करें वो हम संस्कृत

0: में कम और देशज और तद्भव शब्दावली में ज़्यादा करें, जिससे कि लोगों को बात ज़्यादा समझ में आए और अच्छे तरीके से कार्य हो सके।
1: हिंदी के प्रचार प्रसार में साहित्य, सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न की क्या भूमिका रही है?
0: ये इन्हीं चीज़ों की भूमिका रही है सबसे ज़्यादा। हिंदी के प्रचार प्रसार में हम सैद्धांतिक रूप पर कोई नियम निकाल तो देते हैं, लेकिन वो नियम तभी फॉलो होता है जब जनता उस चीज़ को समझती है। और जनता को हिंदी भाषा के मनोरंजन के साधनों के द्वारा बहुत ज़्यादा हिंदी भाषा को सीखने की ज़रूरत महसूस हुई। आपको पता है कि जब बहुत पहले, आज़ादी से भी पहले, दो राइटर थे, दो लेखक थे, देवकी नंदन खत्री और गोपाल दास गहमरी, उन्होंने तिलस्मी और जासूसी उपन्यास लिखे थे। उस समय उनके उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए थे कि लाखों लाखों लोगों ने जो है हिंदी भाषा को सीखा था। तो हिंदी के प्रचार प्रसार का काम तो साहित्य ने तभी कर दिया था आज़ादी से पहले ही, और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। उसके बाद जो सिनेमा है, हमारी फिल्में हैं, इतनी मनोरंजन प्रधान होती हैं कि हर कोई इन फिल्मों को देखना चाहता है। देश क्या विदेश में भी वो फिल्में देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं, उनको पुरस्कार मिलते हैं, जिससे कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। रेडियो तो है ही जनसंपर्क का साधन, आम जनता जो है रेडियो को सुनती है, और जो उन्हें कार्यक्रम आते हैं वो हिंदी भाषा में आते हैं, वो उनको समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। चाहे वो कृषि समस्या हो, चाहे वो बच्चों की समस्या हो, चाहे वो युवा समस्या हो, कोई भी देश की समस्या हो, रेडियो के माध्यम से आम जनता उसे सुन पाती है और समझ पाती है और उससे लाभान्वित होती है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया है, डिजिटल जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सब में हिंदी भाषा में आजकल काम हो रहा है, और इन सब ने हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है।
1: जो हमारे हिंदी के अध्यापक रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि बच्चों के प्रति हिंदी में जो है किस प्रकार से एक रुचि बढ़ाई जा सकती है? क्या उसमें कुछ नवाचार की भी आवश्यकता है?
0: जी बिल्कुल, नवाचार की आवश्यकता है, और अध्यापकों को बच्चों को जो है नए नए तरीके निकाल कर नए नए माध्यमों से हिंदी भाषा को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, विशेषकर छोटे बच्चों को, जिससे कि उनको अच्छी तरह हिंदी समझ में आए और वो अपनी धरती की जड़ों से, अपनी मातृभूमि की जड़ों से, अपने भारत देश की मिट्टी से जुड़े रहें और अपनी मातृभाषा को समझ सकें और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य भावना को निभा सकें।
1: किसी भी देश का जो वास्तविक और व्यापक विकास, उसकी अपनी मातृभाषा में अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है। और इसमें अगर हम बात करें चीन की, तो चीन एक ऐसा देश है जो कि इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। उनका ज्ञान विज्ञान, अधिकांश जो उनके विषय हैं, चाहे वो सामाजिक हों या विज्ञान से जुड़े हुए हों, वो सब अपनी उनकी मातृभाषा में हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या भारत का भी विकास जो है, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, हिंदी के माध्यम से हो सकता है?
0: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी भाषा के माध्यम से सर्वाधिक विकास संभव है। कोई भी स्थल हो, कोई भी जगह हो, कोई भी शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे व्यवसाय हो, जब हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में अपने विचार रखते हैं, तो हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कह पाते हैं, हम उनको समझ पाते हैं, जिसके कारण हमारा विकास तेज़ी से होता है। उदाहरण के लिए आप बैंक में जाएँ और कोई वहाँ गाँव का गरीब व्यक्ति आ गया है और उसको अंग्रेजी नहीं आती, आप उसको समझाएंगे कि लोन कैसे लेना है, कि बैंक में यहाँ पर पैसे जमा करो, ये अकाउंट खोलो, इसमें इतने फ़ायदा होगा, इतना परसेंट ये मिलेगा वो मिलेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको हिंदी की सहज भाषा में समझाएंगे तो उसे समझ आएगा। और हमारी अधिकांश जनता जो है गरीब तबके से है, तो वो सभी आकर जो है बैंक में खाते खुलवाएंगे, विकास होगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में विज्ञान है, विज्ञान मेडिकल की पढ़ाई आजकल हिंदी में हो रही है, मतलब सब कुछ आजकल बदल रहा है, पहले से न्यायालयों में हिंदी में कार्य हो रहा है। तो जब वहाँ पर सामान्य जन जाते हैं तो उनको जब हिंदी में बात करते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होता है, और समाधान होने से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, अपने विचार विमर्श कर पाते हैं, तो उससे जो है निसंदेह देश का विकास होता है। और हर क्षेत्र में विकास के लिए अपनी मातृभाषा से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है।
1: तो आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे सभी श्रोताओं से आप क्या कहेंगी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें, सभी काम हिंदी में करें, और जो आपकी मानसिकता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, सब नहीं हैं, जो अंग्रेजी में चलना, अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में पढ़ना अपने को गर्व का विषय समझते हैं, लेकिन गर्व का विषय अपनी मातृभाषा है, अंग्रेजी भाषा नहीं। हमें सभी भाषाओं का ज्ञान लेना चाहिए, जितनी भाषाओं का ज्ञान लेंगे हम उतना अच्छा है, लेकिन जब तक हमें आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़रूरत नहीं है, तब तक हम अपनी मातृभाषा हिंदी से ही जुड़े रहें और हिंदी में ही सारे कार्य करें। धन्यवाद।

0: गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। भगवान गणेश का प्राकट्य उत्सव है और यहाँ जयसिंहपुरा स्थित गणेश टीला पर गणेश मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ काफी भव्यता के साथ काफी धूमधाम से यहाँ गणेश जी के प्राकट्य उत्सव को मनाया जाता है। और हमारे साथ यहाँ के सेवायत श्री गणपत चतुर्वेदी जी हैं, तो आइए उनसे गणेश जी के प्राकट्य उत्सव के बारे में और यहाँ इस मंदिर की अपनी क्या प्राचीनता है, क्या यहाँ का इतिहास है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको हमारी ओर से आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: देखिए, मैं आपके माध्यम से जितने भी गणेश जी महाराज के भक्तजन हैं उन सबको इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी उनके भक्तजन उनकी आराधना करते हैं और जिन जिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी शरण में हैं, उन सबकी मनोकामना गणेश जी महाराज पूरी करें और उनके घर में शुभ कार्य होते रहें, उनकी विघ्न बाधाओं का ठाकुर जी हरण करते रहें, ऐसी मैं आज के दिन के लिए कामना करता हूँ। और अगर हम इस स्थान की बात करें गणेश टीला मंदिर की, तो ये स्थान मथुरा वृंदावन के मध्य में और श्री यमुना महारानी के तट पर एक समय रहा था, लेकिन अब थोड़ा दूर है यमुना जी थोड़ी यहाँ से। तो ये पूर्व मुख्य योगी गणेश जी महाराज विराजमान है, जो कि अनादिकाल से कम 500 वर्ष प्राचीन ये ठाकुर जी का स्थान है, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियाँ यहाँ सेवा पूजा ठाकुर जी की करते हुए होगी। वर्तमान में मेरे पिताजी महाराज पंडित श्री देवकी नंदन चतुर्वेदी जी के मुख्य सेवायत है यहाँ और सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के संरक्षण में हो रही हैं। और

0: मैं इस स्थान के बारे में ये कहना चाहूंगा, जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कारागार से फल की टोकरी में छिपकर अपने दोनों पुत्रों के सहित में वहां से रिलीज हुए थे, तो सर्वप्रथम इसी स्थान पर आकर उन्होंने कई रोज तक निवास किया था। और उस समय जो भी पूजा सेवा ठाकुर जी की कर रहे थे हमारे पूर्वज, उन्होंने इस स्थान पर उनको अपना समय व्यतीत करने में काफी सहयोग किया था। और ये मराठा संतत के पुरंदर छत्र पति शिवाजी महाराज, बाजीराव जी, पेशवा, उन सब से संबंधित स्थान है। और बड़ा ही रमणीक, जो ठाकुर जी के बारे में क्या कहूँ, इतने प्रत्यक्ष देव हैं कि जो इस मंदिर पर ठाकुर जी से जिस प्रकार की जो भी कामना करके आता है, उनकी वो सारी मनोकामनाएं गणेश जी महाराज पूर्ण करते हैं। बड़ा सिद्ध स्थल है, तपस्वियों योगियों मुनियों की स्थल ही है। एक कथा ये भी है कि जिस समय औरंगजेब के भय से ठाकुर जी की जितनी छवियां रहती हैं, मूर्तियां हैं, उनको छुपाने के लिए उन पे कलेवर किया जाता रहा है, तो उस समय एक कलेवर ठाकुर जी का जो कि रखा हुआ है, इसके दर्शन भी अभी भी होते हैं। ठाकुर जी के एक ऐसे सेवक जो कि कभी भी इस स्थान पर नहीं आए थे, उनको स्वप्न में दर्शन देकर यहाँ पर बुलाकर बद्रीनाथ केदारनाथ से यहाँ आकर उन्होंने दर्शन किए। और उनके कहने के अनुसार ठाकुर जी ने जो उनका कलेवर था अपना, वो रिलीज किया, जो कि अभी भी दर्शन के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसा प्रत्यक्ष स्थान है, जागृत ठाकुर जी का स्थान है। जो भक्त जैसी मनोकामना लेकर यहाँ पे आती हैं, उनकी मनोकामना ठाकुर जी पूरी करते हैं।
1: तो ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा?
0: ये ठाकुर जी का स्थान 500 वर्ष पुराना है। समय समय पर इसमें जीर्णोद्धार होते रहे हैं। वर्तमान स्वरूप जो इसका प्राथमिक स्वरूप हो उससे भिन्न हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी के जो मूल स्थान है, यहाँ ठाकुर जी का गर्भगृह है, उसके आगे का जमुआन है, ये करीब 500 वर्ष प्राचीन जरूर है।
1: ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? इसकी स्थापना किसने, कैसे यहाँ गर्भगृह स्थापित हुआ था, क्या इसके बारे में भी कुछ इतिहास मिलता है?
0: यह स्थान गणपति का जो है वो 500 वर्ष प्राचीन तो ठाकुर जी का यह स्थान अवश्य है, क्योंकि जो प्रांगण है जिसमें ठाकुर जी विराजमान है और उसके आगे का जगवान है, वो प्राचीन स्वरूप में। बाकी का जो स्थान है उसमें समय समय पर जो भी उसका जीर्णोद्धार की वजह से जो भी परिवर्तन होते रहे हैं। ऐसा भी एक कथा किसी पुस्तक में बताई जाती है कि जो गणेश जी महाराज हैं, उनको कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही लाकर ब्रज में स्थापित किया गया था। तब से लेकर आज तक ठाकुर जी का मुख्य केंद्र है मथुरा में। और ठाकुर जी ऐसे सुंदर स्वरूप में है, क्योंकि चतुर्भुजी स्वरूप में है ठाकुर जी, जिनके दोनों ऊपर की भुजाओं में, एक में परश है, एक में कमल है, नीचे के दोनों हस्तकमल ठाकुर जी के वो रिद्धि सिद्धि पर विराजमान है। तो इस प्रकार का सुंदर ठाकुर जी का बाल स्वरूप, तो मैं अक्तों से कहूंगा उनको दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें और अद्भुत ठाकुर जी के उत्सव में शामिल हों, ताकि मंगल काज की भागी बने।
1: गणेश जी का कैसे गणेश चतुर्थी के दिन प्राकट्य हुआ, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है?
0: गणेश जी का इस चतुर्थी के दिन प्राकट्य हुआ, इसके लिए माता पार्वती जी से एक संबंधित एक कथा आती है कि उन्होंने अपने उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसको एक बालक स्वरूप देकर और अपने द्वार पर स्थापित कर स्नान आदि कार्यों के लिए चली गई। तो उसी दौरान भगवान शंकर जी का आगमन हुआ और उन्होंने उस बालक से प्रवेश चाहा उस द्वार पर, उस बालक ने मना कर दिया, उससे सर विच्छेदन हुआ। और उसके बाद माता पार्वती का क्रोध और ठाकुर जी को गज का मुख प्रदान करते हुए शंकर जी ने गणेश नाम और दिया कि जो कि उनके जितने भी गण थे उन सब में सर्वश्रेष्ठ, उनसे सर्वसे पहले पूजित ठाकुर जी को माना गया। तो ठाकुर जी गणेश जी महाराज शुभता के प्रतीक हैं, जो इनके आराधना करता है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते कृतम, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्विध मासिण फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संतय। तो इस प्रकार से ठाकुर जी का ध्यान है, ठाकुर जी अनेक रूप में विद्यार्थियों की मंगल काज जब भी आपके यहाँ हो तो शुभता के प्रतीक हैं। आपके जीवन में आने वाली जितनी भी विघ्न व्याधियां हैं, उन सबको ठाकुर जी गणेश जी महाराज बाहर निकाल सकते हैं आपके जीवन से, और शुद्ध और अच्छी शुभ कार्यों की जो आपकी वो अच्छाइयाँ हैं वो आपके जीवन में शेष बचती है, तो आपको पुण्य का भागी बनाती है, आपके शुभ कार्यों की कारक बनती है।

0: और साथियों उसी के साथ अब एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। फोर लेन सड़क परियोजना के निर्माण का रास्ता हो गया है साफ। कोसी गोवर्धन सौक मथुरा रायाकट तक फोर लेन निर्माण के लिए पेड़ कटान की अनुमति के साथ ही वन विभाग को आवश्यक 59 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अगले हफ्ते से इसका कार्य आरंभ करने के प्रयास किए जाएंगे। और इसी के साथ एक और खबर है, मथुरा के 4 एथलीट 37वीं नॉर्थ जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 14 से 16 सितंबर तक होगा मुकाबला। और साथियों इसी के साथ आपसे एक और अपील करना चाहेंगे कि जल का संरक्षण करें, क्योंकि जल है तो कल है, इसलिए हर वो प्रयास करें जिससे कि जल की एक एक बूंद का संरक्षण हो। और इसके लिए आप कुछ महत्वपूर्ण उपायों को अपना सकते हैं और हमेशा ध्यान रखें जहां कहीं भी जल की बर्बादी हो रही हो उसको रोकने का प्रयास करें, और अपने घर में भी ऐसे उपायों को अपनाएं जो कि जल की बचत को करते हैं। जैसे कि आप अगर अपने वाहनों को पाइप से धोते हैं सीधे, तो उनको पाइप से ना धोकर आप बाल्टी या मग का इस्तेमाल करें, और नहाते समय शावर का यूज़ ना करके अगर बाल्टी मग का इस्तेमाल करें। ऐसे ही कुछ उपायों को अपनाएं तो जल का संरक्षण आप कर सकते हैं, क्योंकि जल की एक एक बूंद हमारे लिए अमूल्य है। और इसी के साथ बात करते हैं आज के दिन विशेष की, तो आज की तिथि 14 सितंबर इतिहास के झरोकों से ही कहती है कि आज ही के दिन सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और आज ही के दिन सन 1960 में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना की गई थी। तो साथियों आज बस इतना ही, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की और कार्यक्रम के संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ये बातचीत प्रेमपाल शर्मा से ओपी सिंह की। विषय है हिंदी भाषा साहित्य भारतीय जनमानस।
2: श्रोताओं भाषा भाव की और संवाद की एक माध्यम होती है। भाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत बड़ा अवदान होती है, संबल होती है। भाषा के माध्यम से ही हम ये कहें कि जीवन के जो कार्य व्यापार है हमारे चल रहे होते हैं, लेकिन भाषा हमारे जीवन में कहाँ से आती है।

0: कैसे आती है, कैसे समृद्ध होती है, और हमको एक जीवन प्रवाह, हमारे जो जीवन का प्रवाह है उसको एक नदी की भांति किस तरह प्रवाहित करती हुई ले जाती है, ये एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है। साहित्यकार इस पर बहुत कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का अपना जो विकास है, अपना उसका जो साहित्य है, वो कहाँ और कैसे पैदा हुआ, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, श्री प्रेमपाल शर्मा जी। आप प्रभात प्रकाशन से जुड़े रहे। प्रेमपाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
1: जी नमस्कार
0: जी,
1: जी।
0: हम जानना चाह रहे हैं कि जैसा हिंदी के संदर्भ में कहा जाता है कि हिंदी जो जन की भाषा है, मन की भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, और हिंदी की जो अपनी सहोदर भाषा है, बोलियां हैं, या कहें कि अगर हम किसी भी जीवन के पक्ष को ले लें, चाहे वो आज़ादी के को लेकर लें, चाहे आज वर्तमान की बात करें, चाहे पुराने समय की बात करें, हिंदी हमारे साथ एक नदी की तरह बहती रही है, प्रवाह की तरह बहती रही है, उसी के साथ हम मिल करके आगे बढ़े हुए हैं। तो हिंदी के अगर अपने साहित्य के साथ साथ उसके विकास की यात्रा को अगर हम आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप इससे जुड़े रहे हैं, तो किस तरह से रेखांकित करेंगे, हमारे श्रोताओं को कैसे बताना चाहेंगे इसमें?
1: सर, हिंदी साहित्य को लेके
0: जी
1: जो इतना हो हल्ला मचता है कि भाई हिंदी पर संकट है, हिंदी के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है, ऐसा कुछ है नहीं।
0: जी
1: दरअसल हिंदी तो अपने आदिकाल से ही विभिन्न चरणों में इतनी गति से, हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गति से आगे बढ़ती रही है,
0: जी
1: अपनी विकास यात्राओं को इस तेजी के साथ आगे बढ़ाती रही है।
0: जी
1: और आप पीछे लौट के देखें तो हिंदी का जो शब्द सामर्थ्य है कितना विशाल हुआ है,
0: जी
1: और हिंदी के जो साहित्य भंडार है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो ये कहना कि हिंदी पे अस्तित्व है, हिंदी कुछ अपनी विकास यात्रा रुक गई है या ऐसा कुछ संकट खड़ा हो गया है, तो ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। बल्कि हिंदी तो वट वृक्षों की बात विभिन्न रूपों में बाहर निकलकर आ रही है, विभिन्न विधाओं में
0: जी
1: बुलंदियों पे पहुंच रही है। एक अगर विधा कुछ कम हुई है तो दूसरी विधा ने चरमोत्कर्ष को छुआ है। तो विकास हिंदी का निरंतर हो रहा है, और वर्तमान काल में, और मैं कहूं कि पिछले 3-4 दशक से तो हिंदी ने बहुत ही अच्छी गति पकड़ी है और बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य देखने में आ रहा है।
0: जी हिंदी की अपनी जो लिपि है, हिंदी का अपना जो एक वैज्ञानिकता है, हिंदी की वो वाली सामर्थ्य जो किसी को भी अपने में समाहित कर लेती है, चाहे किसी भी भाषा का शब्द हो, किसी भी बोली का हो, कि कहीं से भी कोई आ जाए, हिंदी उसको अपना लेती है, उस तो उसके स्वीकार करने की जो शक्ति है। वैज्ञानिकता के मामले में अगर हम बात करें, तो आज जैसा कि तकनीकी युग है, कंप्यूटर का युग है, एक समय जब था कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में आगमन हो रहा था, समाज में उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी, वो हमारे जीवन में आ रहा था, तो तब कहीं ऐसा लगता था शायद अंग्रेजी ही इतना प्रभावी हो जाएगी, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि कंप्यूटर पे भी सारे काम हिंदी में हो रहे हैं, बखूबी हो रहे हैं, और बहुत ही मतलब प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ हो रहे हैं, तो हिंदी की जो स्वीकार्यता है और उसकी जो वैज्ञानिकता है, चाहे वो लिपि के संदर्भ में हो, चाहे उसके कार्य व्यवहार के संदर्भ में हो, ये कितने स्थापित हुई है इसमें?
1: ये तो बहुत मजेदार बात है
0: जी
1: कि हिंदी की जो पाचन क्षमता है बहुत विशाल है।
0: जी
1: वो विभिन्न भाषाओं के, प्रादेशिक भाषाओं के, दूसरी विदेशी भाषाओं के भी शब्दों को
0: जी
1: अपने में ऐसे समाहित कर लेती है जैसे कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। और अगर हम आज के संदर्भ में कहें, तकनीकी संदर्भ में कहें, तो जो हिंदी की सामर्थ्य है कि हर स्वर के लिए एक शब्द है, हर संबंध के लिए एक शब्द है,
0: जी
1: हर
0: जी
1: संपर्क के लिए एक शब्द है। और जो हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो तकनीकी, खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे सबल भाषा जो उनके देखने में आई है, वो संस्कृत और हिंदी है। संस्कृत चूंकि उसकी मातृभाषा है हिंदी की, तो बहुत सारे शब्द उसमें वैसे के वैसे आए हैं।
0: जी
1: तो हिंदी ने भी अपना वही स्थान बनाया है कि एक तरह से हिंदी जो है ना, सोनोग्राफी है, फोनोग्राफी है, कि हर स्वर के लिए, हर आरोह ब्रेक के लिए एक शब्द अलग से है उसमें।
0: जी जी जी
1: अंग्रेजी में ऐसा नहीं है।
0: हाँ हाँ

0: अंग्रेजी यहाँ बहुत पीछे पिछड़ जाती है,
1: जी जी
0: क्योंकि वहाँ एक ही शब्द
1: कई
0: सीखे,
1: संबंधों के
0: हाँ
1: लिए
0: कई
1: है।
0: संबंधों को उच्चारण
1: जी
0: देता
1: जी जी
0: है,
1: जी
0: अभिव्यक्ति देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हिंदी में तो ऐसा है कि उसका एक संबंध है तो उसके लिए अलग उच्चारण है, एक कॉलिंग है, एक
1: हाँ,
0: पुकार है, तो उसके लिए कई कई शब्द
1: कई
0: हैं,
1: कई
0: उस एक ही
1: शब्द।
0: व्यक्ति को कई
1: जी
0: कई संदर्भ में हम पुकार सकते
1: जी
0: हैं
1: जी तो
0: हिंदी में।
1: उसकी जो समृद्धि है, उसकी जो व्यापकता है, उसका जो विस्तार है, वो मतलब एक कहें कि अनंत है।
0: जी
1: जैसे
0: जी जी बिल्कुल
1: जैसे भारतीय संस्कृति और उसके बारे में
0: जी
1: कहा
0: जी
1: जाता है कि वो अनंतता की
0: जी
1: द्योतक
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: हिंदी भी उसी तरीके से।
0: हाँ
1: आपने बात कही कि हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है, वो
0: जी
1: जननी है, वहीं से हिंदी का विकास हुआ धीरे धीरे।
0: जी
1: इसी तरीके से और भाषाएं भी, बोलियां भी हैं जिनका संस्कृत से जन्म हुआ। तो कई बार ऐसा एक चर्चाओं में, परिचर्चाओं में ऐसा आभास लगता है कि हिंदी का शायद किसी से कंपटीशन है, प्रतिद्वंद्वता है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं लगता। तो इसको आप किस तरह से रखेंगे इसमें?
0: ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो ये फोबिया बना रखा है,
1: जी
0: मैं ये मानता हूँ कि अगर हिंदी का विकास होता है या
1: जी
0: हो रहा है या होगा,
1: जी
0: तो प्रादेशिक भाषाएं निश्चित ही समृद्ध होंगी,
1: निश्चित तौर पे।
0: उनका वो उसकी छोटी बहनें
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उनका आपस में कोई विरोधाभास
1: मतलब
0: नहीं है,
1: अस्तित्व की कोई लड़ाई
0: कोई
1: नहीं है।
0: लड़ाई नहीं है, अगर दोनों में तालमेल रहता है तो उसके बहुत सारे शब्द हिंदी में समाहित हो जाएंगे, हिंदी के बहुत सारे शब्द कन्नड़ में भी उपयोग किए जा सकते हैं, तेलुगु में भी उपयोग किए जा सकते हैं, और जैसा कि हो रहा
1: हो
0: है,
1: रहा है जी।
0: संस्कृत के बहुत सारे शब्द उधर भी हैं इधर भी हैं,
1: जी
0: लेकिन उनके लय ताल बोलने का थोड़ा, उच्चारण का
1: जी जी
0: तरीका
1: तो वो तो
0: थोड़ा।
1: स्थानीयता और व्यवहारिक जो वो है वो तो बना रहेगा, लेकिन बात यही है कि हम कितने लोगों को, कितनी बोलियों को, कितनी भाषाओं को और कितने समुदायों को एक साथ लेकर के चलते हैं, इसी से शायद भारतीयता बनी है। संस्कृति की बात
0: जी
1: करें,
0: जी
1: सभ्यता की बात करें,
0: जी
1: या
0: हाँ
1: फिर इस भाषा के विकास की बात करें,
0: जी
1: तो सामूहिकता और उसमें स्वीकार्यता,
0: जी
1: ये तो हमारा एक तरह से हमारा संस्कृति का भी गुण है और हमारी भाषा और
0: जी
1: बोलियों का भी
0: जी
1: गुण है। तो
0: जी
1: ये तो बना रहना चाहिए उसमें, इसको आप मानते हैं इसमें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी तो सब भाषाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी,
1: जी।
0: ऐसा नहीं कि हिंदी तो समृद्ध हो जाए या चरम पर पहुंच जाए और ये रसातल में पहुंचाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ऐसा है कि अगर अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ता है
1: जी
0: तो हिंदी को भी नुकसान होगा, उसकी छोटी बहन है प्रादेशिक भाषाओं का भी नुकसान होगा, मगर
1: जी।
0: हिंदी का विकास होने से ये क्षेत्रीय
1: तो
0: भाषाएं।
1: अब थोड़ा सा इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि व्यवहार में जब हिंदी के प्रचलन की बात करते हैं, स्वीकार्यता और उसकी उपयोगिता की तो बात हो गई, लेकिन जब व्यवहार में हम उसके उपयोग की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि हम चीजों को कहीं छोड़ते भी जा रहे हैं, चाहे वो आधुनिकता के नाम पर, चाहे कामकाज की भाषा के उपयोगिता के नाम पर, या फिर पढ़ाई में अंग्रेजी के थोड़े माध्यम के नाम पर। तो यहाँ कहीं ऐसा लगता है कि व्यवहार में उसको थोड़ा सा उन चीजों को देखने की और समझने की जरूरत है कि व्यवहार में हिंदी बनी रहे, उसमें हमारी आने वाली जो पीढ़ी है कहीं वो थोड़ा सा इससे ना अलग हो जाए। तो जो स्थानीयता है, जो हम बोलियों की बात कर रहे हैं, तो उनके जो देशज शब्द है वो भी कहीं छूटते जा रहे हैं हमसे। तो इस पर कहीं काम करने की जरूरत है व्यवहार में।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, काम करने की, देशज भाषा और बोली और
1: जी
0: उसके शब्दों से ही हिंदी की ताकत बढ़ती है।
1: जी
0: आज जो हिंदी से लोग दूरी बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उसमें एक आकर्षण ये होता है, ऐसा भ्रम है, मैं
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: मानता हूँ कि अंग्रेजी रोजगार देती है
1: जी
0: या स्टेटस ऊंचा करती
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हिंदी में भी, हिंदी के क्षेत्र में भी हजारों हजार रोजगार हैं, उसकी बहुत अच्छी मांग है, बशर्ते हिंदी अच्छी आनी चाहिए,
1: जी
0: हिंदी सर्व गुण सर्वांग रूप में आनी चाहिए,
1: जी
0: और जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं इतना पढ़ गया, पीएचडी कर ली या इतनी ऊंचाई तक मैंने हिंदी का
1: जी
0: अध्ययन किया और मैं आज बेरोजगार घूम रहा हूं, तो उन्हें खुद अपने आप
1: अपने
0: में
1: आप को देखना
0: आत्मलोचन
1: है
0: करना चाहिए
1: जी के।
0: कि मैं कहाँ गलत हुआ, मैं कैसी हिंदी पढ़ गया और
1: हाँ
0: मुझे कैसी हिंदी पढ़नी चाहिए थी,
1: जी
0: तो उनको थोड़ा इस पर मनन करना चाहिए। लेकिन हिंदी के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जानकार हैं, आज हर क्षेत्र में उनकी मांग बनी हुई है।

0: चाहे प्रकाशन का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे भारत सरकार या राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में विभागों में अच्छे हिंदी जानकारों की बड़ी मांग है
1: जी। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि सरकारी कामकाज में हिंदी कहीं कम हो रही, तो आप इस बात को मानते हैं क्या? इसमें कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो लोग इसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं, जिन पे इनके विकास की बात है, वो ही कहीं हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं या उनके व्यवहार में कमी है। तो सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा काम की भाषा तो है, लेकिन व्यवहार में कहीं ऐसा लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा वो हो रहा है इसमें?
0: हाँ, जिनके हाथों में या जिनके पदों में इसके विकास और इसको समान धारा में लाने की ताकत है,
1: जी
0: वो लोग शायद इस ओर से उदासीन है।
1: जी जी उदासीन है, मतलब व्यवहार में तो है लेकिन उदासीन है।
0: अगर वो चाहें, पूरे मन से चाहें,
1: जी,
0: तो हिंदी अपने जन जन की भाषा बन सकती है, व्यावहारिक भाषा भी बन सकती है, हर कार्यालय की व्यवहार की भाषा बन सकती है। मैं तो इतना कहता हूं कि छोड़ो दक्षिण को, अगर उत्तर भारत के खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं,
1: जी जी
0: हिंदी भाषी राज्य हैं, वही ये प्रण कर लें कि हम अपने राजकीय कार्य में हिंदी का ही प्रयोग करेंगे,
1: जी,
0: तो हिंदी तो वैसे हिंदी ही व्यवहार में आ जाएगी,
1: तो हिंदी के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है
0: नहीं
1: उसमें।
0: बिल्कुल नहीं।
1: प्रेमपाल जी, कई बार जब हम साहित्य रचना करते हैं, कोई कृति आती है, लेखन होता है, चाहे वो कहानी हो चाहे अन्य विधाएं हो, कई बार उसमें जो चाहे वर्तनी की शुद्धि हो चाहे व्याकरण की अशुद्धि हो, इस पर भी काफी कुछ लिखा और पढ़ा जाता है। तो इसमें किस तरह की गलतियां एक उससे लेखक से हो जाती हैं, और उस पे लिखते समय क्या कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए? अगर हमारे कुछ पाठक सुन रहे होंगे तो उनके लिए बताएं कि लेखन के समय जो होने वाली अशुद्धि है उनसे कैसे बचाया जा सकता है।
0: जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है कि हिंदी तो हम लिख रहे हैं या
1: जी
0: लिखते हैं,
1: जी
0: लेकिन त्रुटियों से, लेकिन हिंदी लिखें तो त्रुटि रहित, अब उनमें किस तरह की त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, और इनका परिमार्जन भी आप खुद कर सकते हैं। जैसे शब्दों के गलत रूप प्रचलन में हैं और हम उन्हीं को चलाए चले जा रहे हैं,
1: प्रयुक्त कर
0: लेकिन
1: लेते हैं।
0: पीछे लौटकर ये देखना चाहिए कि जो मैंने ये लिखा है क्या ये शुद्ध है, अन्यथा
1: उसके शुद्धता पे जाना
0: शब्द
1: चाहिए,
0: कोश का सहारा ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हिंदी को लेके मेरे सामने कई बार ये ऐसी समस्याएं आई हैं, जब मैं ये संपादन करता हूँ, कहानी हो चाहे आलेख हो चाहे निबंध हो, उनमें जो लेखक होता है उनका दुराग्रह ये होता है कि मैं तो जन्म से हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं तो हिंदी में कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे जो
1: गलत
0: लिखता हूँ
1: लिख
0: शुद्ध लिखता हूँ। और मुझे इस पे बड़ी कोप तो होती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक हिंदी हो गई है,
1: जी जी
0: हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग हिंदी है।
1: हाँ।
0: तो मैं उन सब बंधुओं से, उन सब ऐसे लिखने वाले भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हिंदी लिखें, लेकिन उसके स्वरूप को न बिगाड़ें। उसमें जिस तरह की वर्तनीगत गलतियां हैं, व्याकरणगत गलतियां हैं, धारा प्रवाह की गलतियां हैं, उसको अपने स्तर पर ठीक करें। और मैं उन संपादक बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि लेखक तो कई बार अपने प्रवाह में लिख जाता है,
1: जी जी
0: लेकिन उनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, चाहे संपादक पत्र पत्रिकाओं के हों चाहे अन्य सेमिनार वगैरह के, कि उनको थोड़ा परिमार्जन करके, उन गलतियों का निराकरण करके पाठक या अपने पाठक के सामने परोसना चाहिए। अब मैं देखता हूं कि उनमें एक प्रत्यय की गलतियां लगभग 99% यानी कि 99% लोग गलती करते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सरकारी माध्यमों में या निजी माध्यमों में उनको गलत ही लिखा जाता है। जैसे आप एक शब्द को ही ले लें, सतत, कई बार पोस्टरों में, सरकारी विज्ञापनों में किसी की श्रद्धांजलि के लिखा होता है सत सत नमन, वहां भी हलंत लगा दिया जाता है।
1: जी जी।
0: तो ये कितनी बड़ी खामियां हैं, और जहां सत के साथ सत्य के लिए जहां सत हलंत लगना चाहिए वहां उसे पूरा लिखते हैं।
1: जी जी।
0: तो इन चीजों पर, इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
1: तो ये कहीं व्यवहारगत ज्यादा हो गई है कि हम जो लिखा जा रहा है उसी को शुद्ध मान के आगे बढ़ जाते हैं और उसकी वैज्ञानिकता और उसकी शुद्धि पर ध्यान नहीं देते, तो एक जो लिख रहा है ये लेखक की एक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर कोई व्यवहार में अशुद्धि हो रही है तो उसको हम शुद्ध भी करते चले, यहां लिखने के साथ साथ उसके व्याकरण पर भी हमको ध्यान देना चाहिए इसमें।
0: हाँ, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लिखते हैं, गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी ही, लेकिन

0: हिंदी की एकरूपता को बनाए रखने के लिए, हिंदी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे संस्थान भारत सरकार ने खड़े किए हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं,
1: जी
0: समय समय पर एडवाइजरी वो निकालते हैं, तो उनको आप अनुकरण करें। वो क्या बताते हैं, उनके द्वारा बताई गई बर्तनी, उनके द्वारा बताए गए शब्द जो वो शुद्ध मानते हैं, उनका
1: जी जी
0: अपने लेखन में उपयोग करें, तो मैं समझता हूं कि अशुद्ध हिंदी लिखने से आप जरूर बच जाएंगे।
1: जी अब प्रेमपाल जी, हिंदी की बात हमने की, हिंदी में आप साहित्य रचना कर रहे हैं, उस रचना के प्रकाशनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संदर्भ और वो आपके आते रहते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने जो कुछ लिखा है हिंदी में, आप यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों पर काफी कुछ काम करते हैं, तो ये जो विधा है लिखने की, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताओ कि यात्रा वृत्तांत अगर कोई लिखता है तो उसकी क्या प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें क्या कुछ ऐसे स्थायी चीजें हैं जिनको लेना ही चाहिए, तब वो एक अच्छा यात्रा वृत्तांत या संस्मरण होता है। इस पर थोड़ा मैं श्रोताओं के साथ
0: जी हाँ, जी हाँ सर,
1: जी
0: मैं बिल्कुल इस पे बताना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण हिंदी साहित्य की बड़ी रसदार विधा है।
1: जी
0: इसमें पिछले कई दशक से ऐसा हो रहा है कि जो उथले उथले बिना गहराई वाले कि यहाँ गए वहां गए ये खाया वो खाया, ऐसे यात्रा संस्मरण आ रहे थे
1: जी
0: और केवल उसकी पूर्ति भर हो रही
1: जी
0: थी।
1: जी जी
0: लेकिन मैं ये मानता हूं कि यात्रा संस्मरण कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। जब आप किसी स्थान विशेष या तीर्थ विशेष या पर्यटन स्थल की आप
1: जी
0: यात्रा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस स्थल की भौगोलिक ऐतिहासिक
1: जी
0: जानकारी पाठक को मिलनी चाहिए, और लिखने की शैली आपको ऐसी होनी चाहिए
1: जी
0: जो यात्रा वृत्तांत लिखने वाले हैं कि पाठक को लगे वो पढ़ नहीं रहा है बल्कि लेखक के साथ साथ उनका दर्शन कर रहा है।
1: दर्शन कर रहा है जी,
0: तो इसमें यात्रा वृत्तांत लेखन की सार्थकता है।
1: मतलब जीवंतता होनी चाहिए
0: जी जी
1: उसमें, जो
0: जी
1: जीवंतता मतलब जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो एक तरह से वो उस चीज को विजुलाइज कर पाए, उसके साथ जुड़ पाए, उसको भाव रूप में उसको स्वीकार कर पाए,
0: जी
1: तो उसके लिए उसकी पूरी पृष्ठभूमि उसमें आना चाहिए।
0: आना
1: तो
0: चाहिए।
1: इसमें जब कोई व्यक्ति लिखना चाहता है, मान लो कोई आप तो लिख रहे हैं और भी लोग लिख रहे हैं, लेकिन कोई नया पाठक ऐसा है जो आपको सुन रहा है और वो आगे लिखना चाहता है इन संदर्भों में, तो क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? क्या जब हम कहीं घूमने जा रहे हो, तो मान सपोज करो हम एक भारतीय रेल से यात्रा कर रहे हैं
0: जी
1: और हम 2-4 दिन के लिए कहीं ऐसी ऐसी जगह पे गए, अब वहां तो क्या हम पहले से तैयारी करके जाएं या देखने के बाद तैयारी करें? लेखन की तैयारी पहले हो जाती है या देखने के बाद होती है इसमें?
0: नहीं, ये लेखन की तैयारी तो बाद में होगी, जब आप देखेंगे तभी तो कुछ लिखेंगे।
1: जी,
0: तो इसमें होना ये चाहिए कि
1: हाँ
0: पहले देखें और इस बारीक नजर से देखें, जो सामान्य व्यक्ति देख रहा है उससे अलग नजर से देखें।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: तो कहूंगा कि आप जो जो देखें उसका एक्सरे करते चलें,
1: हाँ
0: और फिर जब आप इन सब चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें कुछ और मेहनत करके, कुछ और संदर्भ, कुछ और विशेष जानकारी जोड़कर अपने यात्रा संस्मरण को या यात्रा वृत्तांत को इतना समृद्ध बनाएं कि जब कोई पाठक या आपके यात्रा वृत्तांत को पढ़ने वाला आपसे प्रभावित होके उस यात्रा पे जाना चाहे तो उसको वो लिखा हुआ
1: उसको
0: एक गाइड का काम करे।
1: जी, मतलब उसको एक मार्गदर्शक की तौर
0: हाँ,
1: तरह पर
0: मार्गदर्शन करे और एक गाइड का काम करे, उसे कहीं पूछना ना पड़े,
1: जी,
0: जो दिक्कत आपको आए उसे ना आए।
1: जी, तो
0: तो
1: वहां कहाँ कैसे जाना है, कहाँ रुकना है,
0: जी
1: क्या चीज देखने लायक है, उसकी जो पृष्ठभूमि में है, अगर कोई ऐतिहासिक जगह है तो उसकी इतिहास क्या रहा है,
0: जी
1: कोई वैसा पर्यटन या दर्शनीय स्थल है तो उसका क्या है, तीर्थ है तो उसकी आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, ये सब चीजें होनी चाहिए। तकनीकी का युग है तो हर आदमी के पास फोन होता है, कैमरा होता है, तो ये जो जब हम लिखते हैं तो कुछ पिक्चर अगर हम उसमें डालते हैं तो वो कुछ कम्युनिकेशन का काम करती है,
0: हाँ
1: मार्गदर्शन का काम करती है।
0: जी जी बिल्कुल करती है, कि जब आप लिखते समय, एक तो आपने वास्तविक यात्रा की,
1: जी
0: लेकिन जब आप उस चीज को लिखते हैं, उस यात्रा संस्मरण को लिखते हैं, तो आप मानस यात्रा करते हैं, और मानस यात्रा करते समय जो आपके द्वारा चित्र लिए गए हैं वो आपकी बड़ी मदद करते हैं।
1: जी,
0: वो आपको जैसे चलचित्र की तरह एक के बाद ये, एक के बाद ऐसे करके वो बताते हैं, तो आप उसमें लिखते समय भ्रमित नहीं होते कि पहले ये देखा था या वो देखा था, और वो चलचित्र की तरह आपका यात्रा वृत्तांत पूरी कहानी को कह देता है। और वो जब इस तरह सिलसिलेवार कहा जाता है तो वो जरूर पाठक के हृदय में उतरता है।
1: रोचक।

0: विशेषता आ जाती है उसमें। कुछ चीजें हिंट के तौर पे हम एक पॉकेट डायरी रख लें, उसमें लिखते चलें, बाद में वो हमारे बड़े लेखन में काम आएंगी, बिंदु काम आएंगे। कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो ये भी अपन कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: क्या वहां के स्थानीय लोगों से छोटे छोटे साक्षात्कार भी करते रहना चाहिए अपनी जानकारी के लिए, लेखन के लिए उसमें? क्योंकि कई बार चीजें नहीं मिलती हैं, न साहित्य में मिलती है, नहीं हुए लोग कुछ चीजों को बता देते हैं जो चीजें ओझल होती हैं। तो लोगों से संपर्क करना, उनसे संवाद करना, उनसे जानकारी इकट्ठा करना भी लेखन में मददगार होता है।
1: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आप एक समृद्ध यात्रा संस्मरण लिखना चाहते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोग उनसे बात करें,
0: जी
1: जो वहाँ तीर्थ स्थल के पंडा पुजारी उनसे विशेष आग्रह करके वार्ता करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएं। आप अगर किसी रिक्शे में भी जाते हैं तो रिक्शे वाले से भी वहाँ की उस भाषा में बात करें, वो भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे सकता
0: दे
1: है
0: सकता
1: जो
0: है।
1: आपके लेखन को बहुत समृद्ध बना सकती है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, मैं जो जो छोटे छोटे चीजें डालता हूँ वो ऐसे ही व्यक्तियों से साक्षात्कार के बाद मुझे हाथ लगती हैं,
0: जी,
1: जो मेरे यात्रा सुन सुन पढ़ के जो पाठक फोन करते हैं कि ये तो बड़ी दुर्लभ है, आपने कहाँ से ली, आपको कैसे पता लग गई। तो ये उन्हीं बेचारे जो
0: जो
1: जिन्हें कोई नहीं
0: लोग
1: जानता,
0: जिनसे आपका
1: अननोन
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: सहायक है,
0: जी
1: उनसे प्राप्त
0: उन
1: होती हैं।
0: जी
1: और जब हम कहीं भी यात्रा पे जाएं तो नोट्स बनाना न भूलें, ये बहुत जरूरी है कि आप उनके बीच में नोट्स बनाते जाएं, पॉइंट बनाते जाएं, और जो लिखने में आपको बहुत मदद करें।
0: जी आपने जो साहित्य पे तो लिखा ही है, यात्रा वृत्तांतों की हम बात कर रहे हैं, आपने जन के स्वास्थ्य पर भी बहुत कुछ लिखा है, आयुष के स्वास्थ्य पर के संदर्भ में लिखा है। आजकल का जो समय चल रहा है, कोरोना काल का विशेषकर हम देख रहे हैं इसमें, तो इस समय जो हमारे पुरातन चीजें थी, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें थी, जो हमारी परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें आ रही थी, उन्होंने बहुत मदद की। जब एक समय हमारा जो सफल विज्ञान और सफल चिकित्सा पद्धति कहीं हमको वो मदद नहीं दे पा रही थी, तब हमारी दादी नानी और हमारे परिवार की उन चीजों ने हमें बहुत संबल दिया, जिनको हम कई बार व्यवहार में छोड़ चुके थे। तो आयुष पे जो आपने लिखा, वो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, उस पे कैसे आप लिखने लगे इसमें?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने, ये मेरे बिल्कुल दिल के करीब है।
0: जी
1: दरअसल मैंने देखा, जब मैं इस क्षेत्र में उतरा, मैं शोध संस्थान में जब अपने गुरुजी का शोध सहायक बना,
0: जी
1: तो मैं देखता था कि वो भी बड़े ग्रंथ से छोटा ग्रंथ बनाते थे
0: जी
1: और वो आम आदमी के लिए किसी काम का नहीं होता था।
0: जी
1: और बाजार में मैं पुस्तकें देखता था तो उसमें ऐसे ऐसे नुस्खे लिखे होते थे कि
0: जी
1: आदमी तमाम जिंदगी ढूंढे तो
0: जी
1: नुस्खा पूरा नहीं हो सकता था।
0: जी
1: तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि जब देसी चिकित्सा को जिंदा करना ही है तो नुस्खे उस तरह के रखे जाएं। और मेरे खासकर मैंने अपने लिए टारगेट
0: जी जी
1: दिया, ये अपने आप को चुनौती दी कि भी आप ऐसा लिखो जो आपके घर में उपलब्ध है, आपकी रसोई में उपलब्ध है, उससे हम कैसे चिकित्सा कर लें,
0: जी जी जी
1: हमें बाजार जाना ही नहीं पड़े। तो मेरे ने जितना भी लेखन किया है उसमें आप एक भी नुस्खा आप ऐसा नहीं पाएंगे
0: हाँ
1: जिसमें आपको बाजार खरीदने जाना पड़े कि ये चीज लेके आनी।
0: जी जी
1: हर चीज जो जो मैंने उसमें गिनाई है, चाहे वो फंट है, चाहे काढ़ा है, चाहे चूर्ण है, चाहे
0: हाँ
1: दूसरी चीज है,
0: जी जी
1: वो आपके घर में सहज सुलभ
0: मतलब
1: है।
0: आपकी रसोई आपका औषधालय
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: वहां रखी हुई मसाले और चीजें हमारी औषधि है, मतलब कि उनके एक मिश्रण बनाने की बात है, और उस मिश्रण को बनाने के तरीके की बात है। उसमें हमारी काफी कुछ जो व्याधियां हैं, हमारी काफी कुछ जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उनका समाधान उसमें मिल जाता है, ये आप
1: जी
0: कहना चाह रहे हैं
1: जी जी
0: उसमें?
1: जी बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल
0: तो ये चीजें व्यवहार से छूटती कैसे चली गई?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आज रसोई क्या हमारी जो देसी चिकित्सा है, घरेलू चिकित्सा है, वो सब नानी दादी के नुस्खे और जो हम घर में चिकित्सा कर लिया करते थे उस सब को विस्मृत कर दिया है। क्यों कर दिया है कि आज हम पश्चिमी चकाचौंध में कि जो समय कूटने पीसने में लगता था,
0: जी
1: तो व्यक्ति ये सोचता है इतना झंझट कौन करे, मेडिकल स्टोर से गोली
0: ले
1: लाए,
0: आओ।
1: टेबलेट ली और गटक ली और आराम पा गया। लेकिन ये समझना चाहिए कि जो आप एक गोली खाते हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं।
0: जी
1: वो उस समय तो उस बीमारी को कुछ देर के लिए राहत देती है, लेकिन चार पांच नई और जो विकार पैदा कर देती
0: हाँ
1: है।
0: हाँ हाँ
1: स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमें जिसको भुला दिया है उस अपनी जीवन पद्धति पे,

0: चिकित्सा पद्धति पर वापस लौटना होगा और लौटना हमारी व्यवस्था हो जाएगी। अभी आपने पिछले दिनों और इन दिनों भी कोरोना की भयावहता को देखा
1: जी
0: है
1: जी
0: और उसमें सारे आधुनिक बड़ी से बड़ी खोजें, बड़े बड़े बड़े इलाज
1: जी
0: सब धराशायी हो गए। वहां केवल कामयाब हुई तो हमारी भारतीय देसी चिकित्सा पद्धति, जिसका कंसेप्ट है कि इम्यूनिटी बढ़ा

0: मिल करते थे, करते रहे तो हम निरोग बने रहे, और आज से फिर उनकी जरूरत महसूस की जा रही है। भले ही आप उनको दवाई के रूप में लें, रसायन के रूप में लें, अगर मैं मानता हूं कि अगर आप भोजन के ही रूप में लेने लगे तो इन सब की जरूरत नहीं रह जाएगी।
1: जी जी जी
0: आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडीज, इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कि कोरोना जैसी बीमारी होगी जरूर, लेकिन आपके जीवन को खतरा पैदा नहीं कर पाएगी।
1: जी जी तो आप साहित्य के साथ साथ आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, आयुष की बात कर रहे हैं, जीवन शैली की बात कर रहे हैं, एक समग्र तौर पे जीवन को आप देखते हैं। तो क्या लगता है कि अब चलते चलते अपने संवाद के अंत में मैं जानना चाहूंगा कि साहित्य में जो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, जो पात्र आ रहे हैं जीवन में, उनमें कहीं एक दुविधा लिखने वाला भी और जो लिखा जा रहा है वो पात्र भी जीवन में दुविधा में जीवन जी रहा है, तो जीवन से वो दुविधा हट जाए, तो इसमें साहित्य और हमारी चिकित्सा पद्धति सबका योगदान होना चाहिए उसमें, क्योंकि द्वंद्व अगर जीवन में होता है, मन में होता है, तो कहीं सार्थकता पीछे छूट जाती है। तो साहित्य का भी काम है और आयुष का भी काम है, यहाँ अभी काम करने की जरूरत है।
0: जी जी बिल्कुल जरूरत है, और बेहद जरूरत है, क्योंकि द्वंद्व में आदमी न इधर सोच पाता है न उधर, बीच में रहता है।
1: जी जी
0: ठीक है, तो हमें द्वंद्व मुक्त होने के लिए क्या है कि अपने जीवन की उन व्यस्तताओं को कम करें जो अनावश्यक हैं,
1: जी जी
0: जीवन की जो अनावश्यक भाग दौड़ है उसमें कमी लाएं। आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में पैसा काम नहीं आया, बड़ी बड़ी पद पदवी काम नहीं आए, साधन काम नहीं आए, जो आदमी जिनके पीछे भागता है और अपनी जिंदगी को ठीक से नहीं जी पाता है, तो पहले आप जिंदगी जिए, फिर आगे की सोचें, आगे के साधन या जीवन जीने के साधन समृद्ध करें, लेकिन पहले जीना तो सीखें। अब अगर आप जीना सीख जाएंगे तो बाकी सारी चीजें स्वतः ही ठीक होती चली जाएंगी।
1: जी निश्चित तौर पर श्रोता बंधु, जीवन जीने का नाम है, जीवन एक कला है, जीवन जीने के तरीके पे अगर हम ध्यान देंगे, जैसा प्रेमपाल जी ने हमसे इशारा किया, और साहित्य साधना भी हमको यही सिखाती है, धर्म और आध्यात्मिक की जो उपासना है वो भी हमको यही सिखाती है, आयुष भी हमको यही सिखाता है कि हम जीने के तरीके को तराशें, उस कला को पहचाने, और उस कला के साथ अगर हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे अगर द्वंद्व खत्म होगा, विचार में द्वंद्व खत्म होगा, तो व्यवहार में भी वो खत्म हो जाएगा, और ये व्यवहारगत और विचारगत जो द्वंद्व है, जब जो हमारी जीवन की शैली है उसमें से कम होते जाएंगे, तो जो शांति और सुकून का जो माहौल है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा। यही साहित्य का भी उद्देश्य है और यही आयुष का भी उद्देश्य है। प्रेमपाल जी, आप आए और हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े एक इस संवाद के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और निश्चित तौर पर आपके विचारों से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे इसकी हम कामना करते हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस रूप में मौका दिया अपने श्रोताओं से मिलने का, बात करने का, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: जी एक बार पुनः प्रणाम।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेमपाल शर्मा से ली गई ओबी सिंह की बातचीत, विषय था हिंदी भाषा साहित्य और भारतीय जनमानस। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आज हरतालिका तीज का व्रत और ये पर्व सभी सुहागिन स्त्रियों को शुभकामनाएं और माता पार्वती और शिव जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं।

आप अभी सुन रहे थे गंगा जमुना सरस्वती फिल्म के इस गीत को लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीतकार थे प्रयागराज और संगीत अनु मलिक का था।

आप सुन रहे थे अभी लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म सुहागरात के इस गीत को। अगला गीत सुनने से पहले साथियों कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम वनिता लोक में फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण किया जाएगा। आज विषय रहेगा बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं समाधान। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-3013 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विषय ध्यान रखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, बदलते मौसम में नाक कान गला से संबंधित समस्या। श्रोताओं, यदि आप बदलते मौसम में नाक कान गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम, नाक के एलर्जी, नाक का बंद रहना या मास्क का बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना, बहरापन, कान में अजीब आवाज़ें आना और चक्कर आना, टॉन्सिल एडेनोइड की समस्या, गले में खराश या दर्द, गले में संक्रमण, आवाज़ बैठना और निगलने में कठिनाई, स्लिप एपनिया और खर्राटे, थायराइड की असमानताएं और सिर व गर्दन क्षेत्र की गांठें या ट्यूमर आदि के समाधान के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत गुप्ता से। समय याद रखिए दिन में आज 1:15 से। सूचना समाप्ति और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी जोरदार फिल्म के इस गीत को साधना सरगम साथियों और अनु मलिक की आवाज़ों में। लिखा था अंदीवर ने और संगीत अनु मलिक का था। अगला गीत सुनने से पहले सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 से वनिता लोक कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण किया जाएगा। आज विषय रहेगा नाक कान और गला से संबंधित समस्याएं और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। टेलीफोन नंबर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप नोट कर लीजिए 0565, ये स्टूडियो कोड है। 25 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। विषय ध्यान रखिए एक बार फिर से, बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं समाधान। श्रोताओं, यदि आप नाक कान और गला से संबंधित समस्याएं जैसे लगातार सर्दी जुकाम है, नाक की एलर्जी है, नाक का बंद हो जाना है या मांस बढ़ना है नाक में, कान बहना है, कम सुनाई देना है या बहरापन है, कान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आना है, चक्कर आना है, टॉन्सिल और एडेनोइड की समस्या है, गले में खराश है या दर्द है, गले में संक्रमण है, आवाज़ का बैठना है, निगलने में कठिनाई है, जैसे कुछ खा पी रहे हैं तो उसको आप निगलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, या फिर नींद में सांस रुकना, खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएँ और सिर व गर्दन क्षेत्र की गांठें या ट्यूमर आदि, समाधान के लिए आप पूछ सकते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत गुप्ता से अपने सवालों के जवाब। समय ध्यान रखिए आज दिन में 1:15 से। कार्यक्रम से संबंधित सूचना ये समाप्ति और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी आशा भोसले की आवाज़ में डॉन फिल्म के इस गीत को, आनंद बख्शी की शब्द रचना को धुन से संवारा था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब ये अगला गीत।

0: खुदा जिससे डरता है अपन और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन।
1: रफी साहब के साथ ये आवाज़ थी शत्रुघ्न सिन्हा की भी, और इस गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। खूबसूरत है जो FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: प्यार किया जाता है बता दे।
1: प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की।
2: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 25301 मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हाँ सर
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार।
0: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से।
1: गंगाधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: क्या हाल चाल है?
0: अभी तो सर आसमान में बादल छाए हुए हैं
1: ओहो
0: और बारिश हो रही नहीं सर।
1: बहुत अच्छा लग रहा होगा मौसम इस समय।
0: मौसम गर्मी गर्मी हो रही सर।
1: हाँ, उमस हो रही है, बरस जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ भी यही
0: बिल्कुल
1: स्थिति है, काफी गर्मी और उमस भरा माहौल है।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सब
1: और सब अच्छे हैं परिवार में
0: सब
1: आपके?
0: परिवार के सर अच्छे हैं सब। आप सर अच्छे हैं
1: बहुत बढ़िया है सर। आज
0: सर।
1: बताएं क्या फरमाइश रखेंगे आप कार्यक्रम में?
0: दीवार फिल्म का सर,
1: कौन सा गाना?
0: किशोर कुमार और आशा भोसले गाए सर, कह दूं तुझे क्या कुछ कहूं।
1: अच्छा, या चुप रहूं।
0: हाँ राइट सर, ये आप ही के आकाशवाणी से सुनना और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना।
1: गाना बहुत अच्छा है।
0: जी सर, गौतम राय बोले, भगवान सिंह जी, राजेंद्र गंगवार, केसरी सिंह राजपूत जी, सुनील झा, दिलीप पोद्दार और तनुश्री और हमारे सभी दोस्तों सर।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं आप सभी के लिए आपकी फरमाइश का गाना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत बहुत।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं,
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है,
3: क्या है?

0: हेलो,
1: हेलो अकाफड़ी,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: राहुल गोवर्धन
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप? बहुत स्वागत है राहुल जी कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: से। दुकान चलाते हैं पुरानी की गोवर्धन
0: अच्छा, तो प्रॉपर गोवर्धन में ही आपकी दुकान है।
1: से। हाँ
0: कब से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: जी 2-3 साल से।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है कार्यक्रम
1: अच्छा, आगा फाड़ी भी अच्छा लगता है हमको।
0: जी? आज क्या फरमाइश रहेगी बताइए।
1: गाना सुना दो, सुना दो, पूरी फिल्म का। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते
0: ठीक है, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के
1: हैं।
0: लिए।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: हम विपिन कुमार बोलेगा चौधरी से। और बताइए आप, हमारी टीम कैसी है सर?
0: सब बढ़िया है, दुआएं हैं आपकी।
1: अब तो गर्मी बहुत पड़ने लगी है, बारिश का मौसम होने लगा है कम कम।
0: हाँ, बारिश अभी हुई कहाँ अच्छी तरह। हमारे एरिया में तो बरसात बहुत कम होती है,
1: जी
0: गर्मी होने लग गई है फिर से।
1: उमस भरी गर्मी है, मौसम तो है पर पड़ती नहीं है बारिश।
0: हाँ, बारिश पड़नी चाहिए, तभी थोड़ी राहत मिलेगी।
1: आज छतरीन वाला गाना सुना दीजिए।
0: सुनवाते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज।
1: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार जी। नमस्कार, मैं जवाहर सिंह, गांव साहेबपुर से, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर से बात कर रहा हूँ।
1: जवाहर सिंह जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है भाई साहब।
1: जी, कभी कभी ऐसा हो

0: हो जाता है, फोन लग नहीं पाता।
1: बहुत दिन बाद होना काफी है।
0: और स्वस्थ हैं आप, अच्छे हैं?
1: हाँ बढ़िया है साहब, अच्छे हैं वो।
0: जी, फसल ठीक है इस समय?
1: हाँ फसल बढ़िया है। हाँ
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: आपके स्वास्थ्य की कामना करते रहते हैं।
0: जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज बताइए क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में?
1: कार्यक्रम में साहब एक पुरानी फिल्म थी, गीत गाया पत्थरों ने,
0: जी
1: उसका एक गाना था, आइए पधारिए भोलेनाथ की जय जय बोलो।
0: अच्छा ठीक है, जवाहर सिंह जी आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब।
0: नमस्कार।

0: का ये रूप नया है।
1: आंख खोपड़ी पलके भारी, समझा पुरुष जो देखी नारी।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी सर। हाँ
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बिरसो दामन गांव से भजनलाल बोल रहा था सर।
0: भजन लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: और सर प्रसन्न है आप?
0: बढ़िया है सर, आप बताएं
1: सर
0: कैसे हैं।
1: हाँ मैं सर ठीक हूँ,
0: जी
1: कोई बात
0: स्वस्थ
1: नहीं, आप
0: रहिए।
1: प्रभु कृपा है। हाँ मस्त हूँ अभी, कोई बात नहीं है, ठीक
0: जी
1: है अभी
0: जी
1: सर। तो
0: जी जी जी
1: एक गाने की चाहती सर, एक गाना सुना दीजिए।
0: बताइए।
1: मेरी पत्नी कमर लम्बे बाल रे,
0: अच्छा
1: सावरिया
0: अच्छा
1: में खड़ी रहूं के चली जाऊं रे।
0: सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आपका भी सर, बहुत बहुत नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी संजय सारस्वत की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। सभी सुधी श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हिंदी केवल शब्द नहीं, मन का एक उजियारा है। हिंदी में जो बात कही जाए वह सीधे दिल तक जाती है। माटी की खुशबू हिंदी में, गांव की पगडंडी हिंदी में, माँ के आंचल की गर्माहट, बचपन की हर झांकी हिंदी में। हम भाषाओं का मान करें, हर भाषा का सम्मान करें, पर अपनी हिंदी के माथे पर सदा प्रेम का चंदन धरें। एक बार फिर से सभी सुधी श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है रूपक, निज भाषा सुखदायिनी, लेखक ललित कुमार वाजपेयी, प्रस्तुति मनोहर सांडिल्य की।

0: मन सब कुछ हिंदी मेरा परिचय।
1: हिंदी का गौरव गान अपनी राष्ट्रभाषा का जय गान है, अपनी मातृभाषा का सम्मान है, माँ भारती की महिमा का मंगल गान है। हिंदी की 1000 वर्ष की लंबी जय यात्रा अद्भुत है, रोमांचकारी है, महान है। अपनी राष्ट्रभाषा का उद्भव और विकास भारत के सांस्कृतिक इतिहास की युगांतरकारी घटना है, ये महान लोक जागरण है। सही अर्थों में अपनी महिमामयी राष्ट्रभाषा माँ भारती के गले का पावन कंठहार है।
2: अपनी भाषा हिंदी हमारे हृदय की पावन धड़कन है,
1: मन के भावों का उमगता हुआ उत्साह है,
2: आत्मीयता की सुदृढ़ कड़ी है,
1: ये हमारा कर्तव्य बोध है,
2: हमारी ज्ञान गरिमा का प्रकाश है,
1: हमारे शरीर में प्राण फूंकने वाली वंशी है। हिंदी की जय यात्रा का इतिहास बताता है इसकी महिमा को, इसकी गरिमा को, इसके आनंद को।

मैं हूं इतिहास, राष्ट्रभाषा हिंदी का। मैं हूं श्रृंगार, मां भारती की वाणी का। मैं हूं उद्घोष, भावों की अमरता का। कितना प्यार करते हैं लोग अपनी राष्ट्रभाषा को, ऐसा उचित ही है। भाषा मन के भावों का मूर्त रूप जो है, अपने शैशव काल से ही हिंदी कोटि कोटि भारतवासियों में प्राणों का संचार करती रही है। ऐसे अनेक दृष्टांत मैं अपने में संजोए हुए हूं। बात हिंदी के प्रारंभिक काल वीर गाथा काल की है। आपसी फूट और विश्वासघात के शिकार वीरवर पृथ्वीराज चौहान जब शत्रुओं से पराजित घायल होकर गजनी में कैद यंत्रणाओं का जीवन बिता रहे थे, सूर्य और चंद्रमा आज भी साक्षी हैं। ऐसे समय महाकवि चंद्र ने अपनी मातृभाषा में ही ऐसे मार्मिक छंद वीरवर पृथ्वीराज को सुनाए कि उनके घावों से भरे शरीर में पुनः क्षत्रत्व का शौर्य जाग उठा और वे हुंकार उठे। आगे क्या हुआ जमाना जानता है। सदियां बीती, गांवों की चौपाल पर, ढोलक की गमकती ताल पर महाकवि जगनिक के वीर काव्य, आल्हाखंड के छंद, विद्यापति के अमर गीत कोटि कोटि भारतवासियों में आज भी पौरुष और माधुर्य भाव का संचार करते हैं। भाषा के ममत्व का आनंद अकथनीय है। फिर हिंदी तो सदैव से भारत माता के माथे की बिंदी रही है। अपने प्रारंभिक काल से ही हिंदी एक जाति, वर्ण, धर्म के मानने वालों की ही भाषा नहीं रही, अनेक धर्मों और जातियों की कोमल भावनाएं इससे जुड़ी रही हैं। चाहे बौद्ध मुनि सिद्ध संत रहे हो या जैन मुसलमान सूफी संत रहे हो, सब ने हिंदी को सिर माथे लिया। सिख गुरुओं की पुनीत वाणी भी हिंदी में ही मुखरित हुई। हिंदी का हृदय प्रदेश यदि गंगा यमुना की धाराओं से सुशोभित है तो हिंदी साहित्य गंगा यमुनी संस्कृत की अनूठी अभिव्यक्ति है। कबीर, जायसी, रहीम और नानक की वाणी, सूर और तुलसी के काव्य के साथ सुंदर एकत्व के संगम की सृष्टि करती है। नामदेव, रैदास, नाभादास, दादू ये सब हिंदी के ही तो भक्त हैं जो दीर्घ काल से हिंदी काव्य का पावन प्रसाद जन जन में बांट रहे हैं। हिंदी के ऐसे गौरव में दृष्टांतों का महासागर मैं अपने में संजोए हुए हूं। समय व प्रसंग आने पर मैं उपस्थित होता रहूंगा। प्रणाम। जय हिंदी, जय हिंदी।

शक्ति की जय यात्रा कितनी महान, अभी मूर्तिमान होकर स्वयं इतिहास ने इसकी पुष्टि की। लेकिन किसी के वैभव के वर्णन में केवल पांडित्यपूर्ण शब्दावली के प्रयोग से कोई महान नहीं हो जाता, उसके पीछे तो छिपी रहती है विकास की अनवरत साधना, शहीद

0: मनोवृत्ति और लोक मंगल चिंतन।
1: हिंदी के विकास की रेखा मात्र सीधी और समतल नहीं है, उसमें काफी उतार चढ़ाव है। इसके इतिहास में सतत प्रगति ढूंढना उतना ही भ्रामक है जितना इसके सभी कालों में एक से स्तर के श्रेष्ठ साहित्य की अपेक्षा करना। 15वीं-16वीं सदी के भक्ति काव्य में हिंदी ऊंचाई के जिस शिखर पर पहुंची, उस स्तर तक पुनः पहुंच पाना कुछ समय तक असंभव हो गया।
0: धर्मांध शासकों की संकुचित मनोवृत्ति के समक्ष कुछ समय तो उसका विजय रथ डगमगा उठा, किंतु अपनी अद्भुत जीवंत शक्ति और लोक मंगल स्वरूप के कारण हिंदी जीवित रही और 20वीं सदी के तीसरे दशक में छायावादी काव्य तथा प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों ने उसे फिर उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा दिया।
1: अपने प्रसाद गुण, लोक मंगल स्वरूप और अद्भुत समन्वयवादी भावना के कारण हिंदी कोटि कोटि भारतीय जनता का कंठार बन गई। जहां उसमें शक्ति, शील, सौंदर्य और वात्सल्य के महाकवि तुलसी और सूरदास हुए, वहीं धार्मिक विद्वेष और ऊंच नीच के भेदभाव पर चोट करने वाले प्रखर चेतना के कवि कबीर का प्रादुर्भाव हुआ।
0: जायसी, रहीम, रसखान, ताज आदि अनेकों मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी और छंद इसी भारती की आरती में समर्पित कर दिए। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदी के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम का प्रश्न व्यर्थ है। ये हिंदी की विशालता, उदारता और उसकी समन्वयवादी महत्ता है। कविवर नवीबख्श फलक ने तो अपने परिचय में यहाँ तक कह दिया।

0: जाता हूँ।
1: इन मुसलमान कवियों के हिंदी प्रेम को देखकर हिंदी के आधुनिक युग के मनीषी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। स्वदेश का स्वतंत्रता संग्राम तो हिंदी की जय यात्रा की अमर कहानी है। पराधीनता हमारा राष्ट्रीय कलंक थी, स्वाधीनता हमारा राष्ट्रीय स्वप्न थी, और हिंदी स्वतंत्रता के उद्घोष की वाणी थी। भारतीय स्वतंत्रता के विजय अभियान के पीछे हिंदी के स्वर गूंजते थे।
2: स्वागत स्वतंत्रते, पूजन स्वतंत्रते, वंदन स्वतंत्रते। सुनो सुनो स्वतंत्रता के स्वर, विजयिनी के स्वर।

मैं स्वतंत्रता हूं, भारत की स्वाधीनता हूं, मैं हिंदी का जयगान हूं। मेरी जय यात्रा में हिंदी के स्वर मेरी वाणी थी, हिंदी के स्वर मेरी पीड़ा थी, हिंदी के स्वर मेरे दिल की धड़कन थे। हिंदी के सपूत कवियों ने

0: मेरी पीड़ा और महिमा को देश के कोने कोने में पहुंचाया और नव जागरण की लहर पैदा कर दी।
1: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
2: भारती की आरती उतारते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ललकार उठे।
1: मानव भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती।
2: और देशभक्त कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी ने बड़ी ही मार्मिक काव्य लड़ियां मुझ पर न्यौछावर की।
1: जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है।
0: इस प्रकार जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे और बनारसी दास चतुर्वेदी आदि अनेक हिंदी के वरद पुत्रों ने मुझ स्वतंत्रता की महिमा का देश के कोने कोने में शंखनाद किया। आजादी के महासमर में हिंदी सुनो, हमारी ब्रज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सांसद ठाकुर चकलेश्वर सिंह के स्वर में।
3: जब जब हिंदी के बारे में सोचता हूँ तो भारत माँ का चित्र आंखों के समक्ष आ जाता है। मैं सोचता हूँ क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है इसलिए, या भारत की सहज सरल आत्मा है? ये तो भाषाविद ही जाने कि तो पराधीनता की उन गहनतम यातनाओं में सुषुप्त भारत को जागृत करने वाली वाणी हिंदी ने दी। उस युग के स्तब्ध मौन वातावरण पर हिंदी के प्रलय प्रेरित मंत्र जागे, मुक्त हो परतंत्र जागे, चेतना के प्राण छूकर सुप्त जीवन यंत्र जागे। हिंदी ने समग्र राष्ट्र को अपने अंक में भर लिया। हिंदी साहित्य सम्मेलन देश की एकता अखंडता के लिए एक सशक्त माध्यम था। राष्ट्रपिता बापू ने जिसकी अध्यक्षता की, गांधी जी ने हिंदी ही कभी देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है संभावना पर प्रकाश डाला। इस प्रकार अनेक राष्ट्रभक्त सेनानी हिंदी साहित्य की सेवा से अपने को गौरवान्वित समझते रहे। महामना मदन मोहन मालवी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनेक महान पुरुषों द्वारा हिंदी साहित्य जगत को अध्यक्षता एवं सेवा प्राप्त होती रही। लाखों सेनानियों ने देशभक्ति के तराने गाए, शहीद इनकलाबी गीतों के आगोश में बलिदानी हो गई। महाराष्ट्र में हिंदी का उद्घोष तो मानो प्रलयंकारी था, जब महाराज तिलक ने भरी अदालत में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। पंजाब के केसरिया पहनकर फांसी झूलते झूम झूम गा रहे थे मेरा रंग दे वसंती चोला। बंगाल सीमा ऐलान कर मांग रहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बापू मर्मा थे, उन्होंने करो या मरो से राष्ट्र को सचेष्ट किया और देश आजाद हुआ। स्वर्गीय जवाहरलाल जी का आराम हराम है, स्वर्गीय शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा, स्वर्गीय इंदिरा जी के गरीबी हटाओ संकल्प की वाणी प्रेरणा सभी राष्ट्रभाषा का संचार है। तो आओ राष्ट्रभाषा हिंदी को पल्लवित पुष्पित होने तक हम सब अपना योगदान करें।
2: और इस निस्वार्थ समर्पण त्याग कुर्बानी की बदौलत मुझे अपने महान देश में पुनः प्रतिष्ठा मिली। देश के कोने कोने से हर क्षितिज से कलरव गूंज उठा, जय स्वतंत्र।

0: स्वतंत्रते, जय स्वतंत्रते, जय स्वतंत्रते।
1: हमारी आजादी के लिए अर्पित ये है हिंदी और हिंदी के सपूतों का योगदान, जिसे देशवासी कभी नहीं भूलेंगे। हिंदी और उसके सपूतों को हमारा शतशह प्रणाम है।
0: हिंदी हमारी अभिव्यक्ति की धुरी है, राष्ट्र के नव जागरण का सुनहरा प्रकाश। इस सत्य का अवलोकन कर राष्ट्र के कर्णधारों ने आजादी मिलने के बाद इसे राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। सारे राष्ट्रभक्त हर्ष से झूम उठे।
1: अब मुक्त धरती पर उन मुक्त भाषा को खूब पनपने का अवसर आया। स्वतंत्र भारत में हिंदी की स्थिति और उसके प्रसार के बारे में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त हिंदी निदेशक आचार्य प्रयागनाथ चतुर्वेदी का कहना है,
2: भारत एक विशाल देश है, यहाँ विविधता में एकता के दृश्य अनेक स्थलों पर अनेक रूपों में देखे जा सकते हैं। साधारण में लोग राजभाषा, राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर नहीं समझते। भारत में अनेक भाषाएं हैं जो विकसित और सक्षम हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की 15 प्रमुख भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी है। उन्हीं भाषाओं में हिंदी भी एक राष्ट्रभाषा है। इन 15 राष्ट्रभाषाओं और देश के सभी राज्यों में संपर्क स्थापित करने तथा अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिए भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इस घोषणा के पीछे हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ अथवा प्राचीन है, बल्कि इसलिए कि उसका ही देश में सबसे अधिक प्रचार और प्रसार है और इसके बोलने और समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। भारत सरकार ने इसके विकास के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके पारभाषिक शब्दावलियां तैयार कराई है। राजभाषा के इस विकास और निर्माण में यह लक्ष्य रहा है कि राजभाषा हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने से प्रशासनिक कार्यों में असुविधा और अकुशलता न हो, इस बात को ध्यान रखते हुए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि हर एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी एक भाषा में कर सकता है। अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। संशोधित अधिनियमों के अनुसार केंद्रीय सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का इस्तेमाल तब तक किया जाएगा जब तक इसके प्रयोग को खत्म करने के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल उस प्रकार का संकल्प पारित करें और उन संकल्पों के आधार पर संसद के दोनों सदन भी ऐसा ही करें तथा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। हमें विविधता में एकता लानी होगी और किसी एक भाषा द्वारा आम भाषाओं को अवदस्त करने के स्थान पर उनमें सामंजस्य और समन्वय प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। फलस्वरूप जहां राज्यों में उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, वहाँ संपूर्ण भारत को की एक कड़ी में जोड़ने तथा राष्ट्रीय एकता को लक्ष्य को साधते हुए हिंदी का क्रम प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रभाषा या राजभाषा या राज्य भाषा से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है, राष्ट्रीय एकता है। हो सकता है हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ समय लगे, लेकिन ऐसे मामलों में जल्दबाजी शायद घातक सिद्ध हो सकती है। यदि हमारा लक्ष्य निश्चित है, हमारी दिशा सही हो और कदम मजबूत, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे जरूर।
1: हिंदी हमारी कुटियों से लेकर महलों की भाषा है। इसका भूतकाल महान रहा है तो इसका भविष्य भी उज्जवल है। यह भारतवर्ष के सबसे बड़े भूभाग की भाषा है। आवश्यकता है इसे यथोचित आदर देने की।
0: हिंदी को राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित हुए काफी समय बीत गया, लेकिन अभी भी इसे उचित स्थान नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों? इस संबंध में देश के प्रमुख भाषाविद डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी ने संकेत करते हुए बताया,
3: यदि हिंदी को कामकाज की भाषा

0: बनानी है तो सरल हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता नहीं रहती, मात्र कठिन शब्दों से ही भाषा जटिल नहीं होती, वरन जटिल, उलझे, अस्पष्ट व लंबे वाक विन्यास से भी भाषा में जटिलता आ जाती है। आजकल अनुवाद की भाषा और भी बेतुकी होती जा रही है, जिसे आम आदमी आसानी से नहीं समझ पाता। जब किसी अनुच्छेद का आशय समझ में नहीं आता तो भाषा कठिन कही जाएगी। आचार्य द्विवेदी सीधी, सरल तथा स्पष्ट भाषा के पक्षपाती थे। उन्होंने अपनी इसी नीति से अनेक लेखकों को भाषा लिखनी सिखाई। इसी नीति को आगे पंडित देवीदत्त शुक्ल ने चलाया। सरल हिंदी के नाम पर बड़ा विवाद सन 1962 में चल पड़ा, जब इस वर्ष के जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री गोपाल रेड्डी के कारण रेडियो की भाषा नीति में परिवर्तन किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा करने का उद्देश्य नागरिकों के अतिरिक्त समस्त भारत की ग्रामीण जनता को लाभान्वित करना है। सरलीकरण के नाम पर दोपहर 1:40 वाले बुलेटिन की भाषा में अरबी फारसी शब्दावली को बलात् ठूंस कर उसे विकृत करने का प्रयत्न किया जाने लगा। जगह जगह रेडियो की भाषा नीति के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। संसद में दिनकर जी ने इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप पंडित नेहरू ने घोषणा की कि भाषा को आसान तो होना चाहिए, लेकिन सरल बनाने की कोशिश में भाषा की प्रकृति जीनियस का बिगाड़ना ठीक नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भाषा का पंडित तो नहीं हूं, फिर भी मुझे भाषा के सौंदर्य से, उसके शब्दों से, संगीत से और शब्दों में भरे हुए जादू और ताकत से प्रेम रहा। मेरा विश्वास है कि लगभग हर चीज की वनस्पत भाषा किसी राष्ट्र के चरित्र की ज्यादा बड़ी कसौटी है। अगर भाषा शक्तिशाली व जोरदार होती है तो उसके बोलने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं। अगर वह छिछली, लच्छेदार व पेचीदा है तो उससे बोलने वाली प्रजा में वही लक्षण देखने को मिलेंगे। उड़ीसा में सन 1939 में कटक की विराट सभा में जब कुछ व्यक्तियों ने आवाज लगाई कि अंग्रेजी में बोलिए, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करें। वे एक घंटे तक हिंदी में बोले। काफी भीड़ थी, लेकिन श्रोताओं में से एक भी ने नहीं कहा कि हम पंडित जी का भाषण नहीं समझ सके, यह सरल हिंदी के कारण ही हुआ। वे अन्य लोगों को भी प्रेरित करते थे कि बातचीत में हिंदी का ही प्रयोग करें। कोरिया जाते हुए भारतीय सैनिकों से उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि हिंदुस्तानी आपस में विदेशी भाषा बोलें। कोरिया में जो सैनिक गए उनसे मैंने कहा कि वहां अंग्रेजी में ना बोलें। उन्होंने निश्चय किया कि वहां अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे और नहीं बोले।
1: हिंदी हमारे मन के भावों की वंशी है, हमारी सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, हमारी एकात्मकता की जननी है। इसकी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। भारत की अति समृद्ध सांस्कृतिक संपदा का यह गौरवशाली कोष है।
2: यही कारण है कि आज भी हिंदी साहित्य में रचना करने वाले हिंदीतर लेखकों की संख्या बहुत काफी है।

अभी आपने सुना रूपक निज भाषा सुखदायिनी, आलेख पंडित ललित कुमार वाजपेयी कथा, सह प्रस्तुति श्री कृष्ण शर्मा।

की, प्रस्तुति मनोहर शांडिल्य की और संपादन त्रिभुवन शर्मा का। आकाशवाणी मथुरा पर तैयार इस रूपक में जिन कलाकारों ने भाग लिया उनके नाम हैं श्रीमती दीपा रानी श्रीवास्तव, श्री दुर्गेश माथुर, श्रीमती बेमल अरोरा और श्री सत्येश पाठक।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, निज भाषा सुखदायिनी। लेखक थे ललित कुमार वाजपेयी। प्रस्तुति थी मनोहर सांडिल्य की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

साथियों, आज का दिन हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा तीनों के उत्सव का दिन है। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि हर शुभ कार्य का आरंभ मंगल और बुद्धि के साथ हो। हरतालिका तीज माता पार्वती की अटूट श्रद्धा, प्रेम और संकल्प की कहानी सुनाती है और हिंदी दिवस हमें अपनी मातृभाषा के उस गौरव का एहसास कराता है जो हमारी भावनाओं को सबसे सहज शब्द देता है। कहते हैं, भाषा केवल शब्दों का संसार नहीं, यह संस्कारों की पहचान होती है, और पर्व केवल उत्सव नहीं, हमारी संस्कृति की मुस्कान होती है। तो आइए, गणपति बप्पा के आशीर्वाद, तीज की पवित्रता और हिंदी की मिठास के साथ आज की इस खूबसूरत यात्रा का शुभारंभ करें। बढ़ते हैं आपके संदेशों की ओर, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर गजानन महाराज के स्वागत में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता प्रकाश रंभाड़े, भारती जानवी वैष्णवी हर्षल रंभाड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है हमारे अगले फरमाइशकर्ता का, जो कि हमसे जुड़े हैं नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, अकरम हुसैन उर्फ प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम रुबीना, आरिज नदीम, शमीम ममता रानी, पूनम कुमारी, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। संदेश मिल चुका है सौरव निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका श्रीनिजा का, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमारे पास आया है शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति का, जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से आप हमसे जुड़े हैं। संदेश भेजकर हमसे जुड़ चुके हैं पीएस हांवकर, निर्मला, विशाल, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र के नारायण इंगले, सोपान, आशीष मुनहेकर का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। संदेश भेजकर हमसे जुड़ चुके हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, निवान शर्मा, मैंडी, सौरव और साइना शर्मा। राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी का संदेश मिल चुका है। ये हमसे जुड़े हैं शाहू नगर यवतमाल से। अगला संदेश हमें भेजा है अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, ये हमसे जुड़े हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, भाटापारा छत्तीसगढ़ के सोहन जोशी का संदेश भी प्राप्त हुआ, मोताला नगर महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर का संदेश मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं गणेशपुर गंजडुडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। ग्राम चांदूर बिस्वा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र के किशोर बानखेड़े, उषा विशाल का संदेश भी मिला। राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अक्षय लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश मिला है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से। संदेश मिल चुका है पाकुड़ झारखंड के उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सूतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद का, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत और गुड्डी भगत भी हमसे जुड़े। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा दीव, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम सहारनपुर से हमसे जुड़े। संदेश प्राप्त हुआ स्टेशन रोड जमशेदपुर के हरजिंदर सिंह भाटिया।

एंजल सोनू पप्पी और तमन्ना भाटिया का। उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, अंबेडकर चौक बाकोडी से हमसे जुड़े हिंगोली महाराष्ट्र के साहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे का संदेश भी प्राप्त हुआ। साथियों, आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है कोहिनूर, आवाज है मोहम्मद।

संदेश मिला है हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा के चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल का। हमसे जुड़ चुके हैं जमानिया जिला गाजीपुर के सुरेश जायसवाल और मिला दीपक स्वाति, और साथ ही गमरिया जमशेदपुर से विपिन स्वाति देव कुमार आर्य कुमार जायसवाल का भी संदेश प्राप्त हुआ। हरदेव मीका बलविंदर विर्क जयतेग विर्क और मीका विर्क का संदेश हमें गांधी चौक रूपर पंजाब से प्राप्त हुआ। हमसे जुड़ चुके हैं लल्लन मिश्रा नूतन मिश्रा अमन पारासर बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। फुटानी चौक नरहन स्टेट से आप हमसे जुड़े उत्तम कुमार बघेल रुकमणी साहिल भारती लगान पढ़रिया छत्तीसगढ़ से संदेश भेज रहे हैं। संजय मुरंग बेकर संजय थोरात एआर परवेज भाई परभड़ी जिला मोठा मारुति से संदेश भेज रहे हैं। संदेश प्राप्त हुआ।

चंडीगढ़ के सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। अगले फरमाइशकर्ता रिंगनी छत्तीसगढ़ से जुड़े दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, कोटवा, नारायणपुर, बावा पट्टी, बलिया से हमसे जुड़े दुबिया नेवादा, जिला गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय का भी संदेश हमें मिल चुका है। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग का संदेश भी मिला, हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश भेजकर मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद जाहिद अली, मोहम्मद शाहिद अली संदेश मिला। खमरिया छत्तीसगढ़ के साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा भी हमसे जुड़ चुके हैं। ढाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र के श्रीकृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव हमसे जुड़ चुके हैं, गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से। बत्ता परिवार का संदेश मिला, कनीरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। फरमाइश करता हमारे अगले ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ के दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा, बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक, झज्जर हरियाणा से हमसे जुड़े। अगले फरमाइश करता हैं राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से ये संदेश भेज रहे हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, उमेश, राजेंद्र और प्रमिला बंछोर, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप हमसे जुड़े। आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

साथियों अपना संदेश भेजकर हमसे जुड़ चुके हैं पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। संदेश मिल चुका है करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना के कानोगुला गोपाल माहेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश का, बड़िंगखेड़ा पंजाब के मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी हमसे जुड़े, मीनाकारी पुंजराज, आरती आकर्षण, जय श्री हमसे जुड़े हैं समस्तीपुर बिहार से। अगला संदेश भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू का हमें संदेश भेजा है। बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के योगेश सारवा, आशा नीरज, नीलेश, अंजनी, रोशनी सारवा का, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा का संदेश भी मिला। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी का संदेश भी प्राप्त हुआ। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाई जान भाई, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप का संदेश भी प्राप्त हुआ। हमसे जुड़ चुके हैं अगला संदेश भिलाई छत्तीसगढ़ के उत्तम सिंह जंघेल, मुरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल का मिला। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल का संदेश आया हमारे पास। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का संदेश भी हमें मिल चुका है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश से हमसे जुड़े हैं। नांदेड़ से प्रकाश जैन, संगीता जैन, लातूर से सूरज जैन, पीआर जैन का संदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ के दिग्दर्शन गौड़, कविता कर्ण, शक्ति, रिया जया और दर्शन भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं। अगला संदेश नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल और उषा पाटिल का मिला। शिवागो, प्रेमगोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली हमसे जुड़े हैं पश्चिम सिंहभूम चाईवासा झारखंड से। पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान के मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा का संदेश भी हमें मिल चुका है। उत्तम नगर दिल्ली के कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल का संदेश भी हमें प्राप्त हुआ। आइए साथियों कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत आपकी फरमाइश पर सुन लेते हैं।

साथियों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, आपसे अनुमति लेने का। चलते चलते बस यही कहेंगे कि आज की इस खूबसूरत यात्रा में हमने महसूस किया कि गणपति बप्पा की भक्ति, हरतालिका तीज का प्रेम और हिंदी की मिठास। गणेश जी से यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हों। माता पार्वती से यही कामना है कि हमारे परिवारों में प्रेम, सौभाग्य और सुख बना रहे। हिंदी से यही वादा है कि हम अपनी भाषा को केवल बोलेंगे नहीं बल्कि उसका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, संस्कृति की खुशबू, रिश्तों की मिठास। हिंदी में ही तो हिंदुस्तान है। इसी दिल की बात के साथ, इसी मिठास के साथ, साथियों अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत राझा गायन। आज के कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।
1: अभी तो चनुआ भतीजे की याद आई है, थोड़े आगे चलेगो तो मैया की याद आवेगी, और आगे चलेगो तो भैया छेव भैया और छेव भौजाइन की याद आवेगी। तो मैं तेरो पीछो ना छोड़ूंगो, मैं तेरे संग चलूंगो। बोले बा रांझो बोलो चल बाबा, मुंह पे का फर्क पड़ रहो भैया, अपने पामनते चलेगो। तो बाबा ने अपने कमंडल में और उस नदी में से जल भर लिया, और भर करके चलते चलते चनुआ के पास आए तो बेहोशी की हालत में चनुआ की नार लटक रही। राजे ने जो सेला से चनुआ को बांधो भैया, वो सेला खोलो तो फड़ाक देसी ना बेचारो गोदी में गिर पड़ो। बाबा ने पढ़ करके बिस्मिल्ला और चनुआ के मुंह पे जो छींटा मारे, सोई चनुआ फड़फड़ा के बैठो है गयो। बाबा बोलो चनुआ। हाँ बाबा। बोले का बात है बेटा? बोले बात कछु ना है बाबा, मैं तो चाचा के कंधा पे बैठो और मोई नींद आ गई, और मैं का देख रहा हूँ कि एक नदी पड़ी है। बाप है बाबा, तुम बजू कर रहे हो और मेरे चाचा ने मोई उतार दियो है, और जब यहां आंख खोली है तो मैं दगरे में और वो ही बंधो बंधायो यहीं पड़ो भय हूं बाबा। तो बाबा रांझे से बोलो। बोले रांझे ये पहले ही कह चुका है कि काट के फेंक दे जंगल के बीच में, सुन चाचा मेरे, और जिंदा रहा तो संग तेरा छोड़न का नहीं। तो रांझे इसके दिल में जो भय है डर है तो ऐसो कर जाकू कछु दे दे। तो सात पीर तो फकीर महाराज ने दिए हैं और पांच पीर रांझे ने दिए हैं, और बोले रांझे जाए महल तक छोड़ या। रांझो चनुआ को लेकर के बारह पीरन को ओलिया बना करके और महल को लेके चल दियो, और महल के गेट पर दरवाजे पर जा करके और चनुआ छोड़ दियो। दरवाजे पे चनुआ को छोड़ करके जब वापिस आवे तो बाबा भाई कहूं नजर ना आवे। रांझो बोलो हमें बाबा ते का लेनो देनो भैया, हमें तो अपने जब परवाने और हीर से मतलब है, अपनी मंजिल चलो सीधे। रांझोबा नदी पे आयो तो एक मल्ला की ढोंगा लेके खड़ी भई। तो सज्जनों मैं आपको बताओ चाहूं कि ये

0: बेहतर हुरन में से ही और बाने बाकू नाविक बनायो कि जब रांझो आवे तो बइये पार करियो और काउए पार मत करियो। रांझो मल्लाकी के पास पहुंचो और पांच असरपी निकार के और क्या कह रहो है,
1: क्या कह रहो है।

0: सज्जनों मल्ला की ने बात जवाब दियो के जे तो जा में और कोई पारी ना होगो तो रांझे को क्रोध आयो और जंगल में आकर के बाने घास फूस इकट्ठो करके और एक छोटी सी नाव बना ली नी। वह नाव को लेकर के आयो और बाने नदिया में नाव डार दी नी और नाव डार के भैया पंचो का हुए।
1: हाँ, क्या हुए साहब।

सुन लो, मल्लाकी से रांझो बोलो कि देख, नाभिक का धर्म होता है कि जो कोई इधर से उधर और उधर से इधर आवे, भाई पार लगावे। हीर ने तो तुझसे कही कि केवल रांझो ही पार करियो, मगर रांझो तो से कह रहो है कि कोई भी हो, अमीर गरीब, सबको पार लगाइयो।

नो एक हूर को और बाने बीच जंगल में प्याऊ लगा के बैठार दियो के रांझो जई रस्ता ते आवेगो और प्यास लगेगी तो प्याऊ पे पानी पी लेगो। रांझो प्याऊ के पास आ जाए तो बा बुढ़िया देखी सफेद भूरे बार है रे, गालन पे चेहरा पे झुर्री पड़ रही, तो रांझो बुढ़िया के पास जाकर के क्या कह रो है।

राजे ने बुढ़िया से पानी पीवे की आकांक्षा जताई भैया, तो बुढ़िया ने राजे की तरफ देखो तो तर बतर पसीना में है रहो। बुढ़िया बोली, बेटा नेक देर तू बैठ जा, पसीना सुखा ले, और है सके अगर पसीना में पानी पियो तो बेटा तो कु जुखाम खांसी है सके।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत कलाकार भगवान दास अज्ञानी के द्वारा गाए हुए रांझा गायन का।
9: इससे हमें बड़ी जो है सीख लेनी चाहिए कि बड़े बूढ़ों को कहनो माननो चाहिए। रांझे ने कहनो मान लियो और बैठ गयो तो बुढ़िया प्याऊ से बाहर आकर के रांझे के पास बैठ गई है और रांझे से कहा कह रही है, भैया
10: कह रही है भैया।

श्रोताओं से मेरा निवेदन है और मैं उन महापुरुषों को दंडवत करता हूं, क्या शब्द लिखे हैं, सुनना, शब्द सुनने लायक है।

बुढ़िया बोली, लाला तू तो नाराज है गो भैया, अरे पानी तो कम से कम पी जा, ऐसी गर्मी पड़ रही है। रांझो बोलो, अरे बुढ़िया डोकरी, जब तेरी बातन में ही मिठास ना आए तो तेरे पानी से का प्यास मेरी बुझेगी। गुड़ नहीं दे कम से कम गुड़ की सी बात तो कर दे। रांझो बिना पानी पिए चल देता है,

0: एक बात श्रोता आपको बता दे वो चाहूं कि एक बगीचा बगीची और खेत जो है गांव से बाहर होए। जब राजे की नजर एक बगीचा पे पड़ी, बड़ो सुंदर बगीचा, हरे भरे पेड़ लग रहे, फूल लग रहे, और वहां दरवाजे पे एक मालिन पहरेदारी कर रही। राजा बोलो चलो जईते चल के पूछनी चाहिए भैया जे कौन को बगीचा है, हम आराम कर लें का 5 मिनट। तो राजो जब मालिन के पास पहुंचो तो मालिन से का कह रो,
1: कहा करो भैया

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत के अंतर्गत रांझा गायन। कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा

हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर

0: ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर श्रोता साथी सुनेंगे संवेद स्वरों में देशगान। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय होगा बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। कार्यक्रम में साथी होंगी दीप्ति शर्मा। दोपहर 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग श्रोता साथी सुन सकेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी कार्यक्रम के साथ संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आप हिंदी दिवस, गणेश चतुर्थी एवं इंजीनियर्स दिवस के ऊपर सुनेंगे चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे कहानी जिंदा दिली। कहानीकार होंगे शैलेश कुमार वर्मा। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज वार्ता के अंतर्गत ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग, वार्ताकार होंगे अजय कुमार तेलंग।

भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:30 पर आप सुन सकेंगे। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में होगी चर्चा सरसों की बुवाई पूर्व तैयारी एवं पशु पोषण में खनिज लवण, और साथ ही आप सुनेंगे वार्ता डेयरी उद्योग को लाभकारी कैसे बनाएं, जानकारी देंगे डॉक्टर विकास पाठक। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे रूप किशोर शर्मा। कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा संध्या 6:50 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी पेश किया जाएगा रात्रि 7:31 पर। रात्रि 8:00 श्रोता साथी फिल्म संगीत का ले सकेंगे आनंद। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर प्रस्तुत किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10:00 श्रोता साथी सुन सकेंगे ढोला गायन, कलाकार होंगे सुभाष चंद्र और साथी। प्रसंग होगा भंवर ताल की लड़ाई एवं किशन लाल का ब्याह पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 10:30 पर विदुषी मीनाक्षी वाजपेयी के सितार वादन के साथ। राग होगा झिंझोटी, तबला पर संगत देंगे गुलाम साबिर। अभी आप सुन रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेलो सहेली में इस सोमवार यानी 14 सितंबर 2026 यानी कि आज दोपहर 1:15

मिनट पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। श्रोताओं, यदि आप बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं जैसे लगातार सर्दी, जुकाम, साइनस, नाक की एलर्जी और नाक का बंद रहना, मांस बढ़ना, कान बहना, कम सुनाई देना, बहरापन, कान में अजीब आवाजें आना, टिनिटस और चक्कर आना, टॉन्सिल के एडेनोइड की समस्या, गले में खराश और दर्द, गले में संक्रमण, आवाज़ बैठना, हॉर्सनेस और निगलने में कठिनाई, स्लीप एपनिया, नींद में सांस रुकना, खर्राटे, थायराइड की असामान्यताएं व सिर और गर्दन क्षेत्र में गांठें, ट्यूमर आदि के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 14 सितंबर 2026 यानी कि आज समय दिन में 1:15 से सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वनितालोक। कार्यक्रम वनितालोक के अंतर्गत आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय है बदलते मौसम में नाक कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। हमारे साथ आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ, और साथ में साथी हैं दीप्ति शर्मा। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: स्वागत है आप सभी का आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में। वक्त ने सिखाया है बदलना भी ज़रूरी है, हर मोड़ पर खुद को संभालना भी ज़रूरी है। जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दो, आने वाले कल को सजाना भी ज़रूरी है। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी श्रोताओं का आज के हेलो सहेली फ़ोन इन कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, समय का पहिया यूं ही घूमता रहता है, कभी खुशी और कभी गम आते ही हैं। बस हमेशा उम्मीद का दामन हमें थाम कर रखना चाहिए। समय के बदलाव और जीवन की करवटें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं समय और मौसम हमेशा परिवर्तनशील होता है। बदलता मौसम अपने साथ हमेशा कुछ नफ़ा और कुछ नुकसान लेकर ही आता है। तो बदलते मौसम, बढ़ता प्रदूषण, तेज आवाज़, एलर्जी और हमारी बदलती जीवन शैली का असर अक्सर हमारे नाक, कान और गले पर पड़ता है। लेकिन कई बार हम इन समस्याओं को सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम।
0: और हमारे साथ उपस्थित हैं,
2: मैं इनकी साथी उषा पांडे, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमारी साथी बता रही हैं कि इस समय वायरल का समय चल रहा है और सबसे पहले अटैक होता है व्यक्ति के नाक, कान और गले पर, और व्यक्ति परेशान हो जाता है। और ये आम समस्या कब खास बन जाती है हमें पता है।

0: भी नहीं चलता। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा ये जो हेलो सहेली कार्यक्रम है, ये प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे सोमवार को प्रसारित होता है दोपहर में 1:15 से। तो श्रोता साथियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे विशेषज्ञ से फ़ोन पर बात करके पा सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, जिसके लिए आपके पास होना चाहिए हमारा टेलीफोन नंबर, जो कि है 0565 कोड लगाकर 2530135, और हमारा मोबाइल नंबर है 9412225575, जिस पर आप मैसेज भेज करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे साथ में जो उपस्थित होते हैं हमारे विशेषज्ञ, उनसे पा सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। हमारी साथी ने बताया, जैसा कि आज का हमारा विषय है, बदलते मौसम में नाक, कान और गला संबंधी समस्याएं और समाधान। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। इस समय जैसा कि मौसम बदल रहा है और वायरल की समस्या चारों तरफ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नाक, कान और गले का इस वायरल से क्या संबंध है और कैसे बचाव किया जा सकता है?
1: मैम, पहली चीज़ तो आज जैसे ही मौसम बदलता है, एक बारिश का भी मौसम है और मौसम में बदलाव आ रहा है, गर्मी से सर्दियां हो रही हैं, इस समय थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ती है
0: जी,
1: तो उसकी वजह से वायरल इन्फेक्शंस का संक्रमण बढ़ जाता है। और हमारा नाक, कान, गले, हम जो हवा ले रहे हैं वो सीधे नाक, कान, गले में ही जाती है, वो इस चीज़ से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, तो वायरसेस बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करते हैं हमारे नाक, कान, गले को, तो उसकी वजह से। और थोड़ा आजकल इम्यूनिटी भी कम हो रही है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ठंडी चीज़ों का सेवन हो रहा है, और नॉर्मली भी बदलते मौसम में वायरल संक्रमण बढ़ जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, हम आपसे आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, उससे पहले एक श्रोता साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं।
2: हेलो सहेली कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार, आप अपना परिचय दे दीजिए।
3: सर,
2: हेलो,
3: नमस्कार।
1: नमस्ते, नमस्ते सर।
3: मैं जितेंद्र दोसारिया बोल रहा हूँ, ग्राम मऊ, तहसील खैर जलालीगढ़ से।
2: जी, अपना प्रश्न पूछिए।
3: हाँ, प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ तो डॉक्टर साहब, ये है मेरा क्वेश्चन, जैसे मौसम बदल रहा है,
1: हाँ,
3: तो अब सबको पता है कि सुबह शाम तो ठंडा मौसम हो जाता है,
1: हाँ,
3: और फिर कपड़े ओढ़ते हैं तो फिर गर्मी लगती है, फिर मच्छर काटते हैं, तो इसका डेंगू का प्रकोप बढ़ने के चांस अधिक होते हैं,
1: हाँ।
3: तो इसका प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, पहला। और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि पपीता के पत्ते, बकरी का दूध, कीवी का फल, इन्हें खाने के लिए बताते हैं, जैसे प्लेटलेट डाउन हो गया, इन्फेक्शन हो गया ब्लड में, ये कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अब ये मौसम बदल रहा है,
1: हाँ,
3: तो फल भी बदलेंगे, सब्जियां बदलेंगी, तो नई नई सब्जियों की बजाय उन पुरानी सब्जियों को ही फोकस करते हैं, जैसे ठंडा मौसम है तो खाना चाहिए पालक वगैरह, करेला या लौका का यूज ज्यादा करते हैं लोग, ये क्रेज ज्यादा बढ़ रहा है भारत के अंदर, ऐसे इन पे प्रकाश डालिए सर। नमस्कार।
1: नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दवाइयों से, डॉक्टर से आने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी डाइट को ठीक करना, मौसम के हिसाब से जो भी फल हैं, जो भी सब्जियाँ हैं, जो मौसम के हिसाब से हैं वो कंज्यूम करना, और ऐसी चीज़ें लेना इस मौसम में जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तुलसी और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, प्राथमिक वही है। दवाइयाँ तब लेनी है, डॉक्टर के पास तब आना है, आपको पहले तो यही देखना है कि डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ आपने कही कि अभी मच्छर, अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, मच्छर हैं, सबसे पहले मच्छरों से बचाव करना है, थोड़ा गर्मी भी लग रहा है तो ठीक है, बट ओढ़ के सोना है, मच्छरदानी का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें हैं, डेंगू मलेरिया इन सब चीज़ों से बच के रहना है। और जो भी आपने अभी चीज़ें बताई, पपीता और प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट्स डाउन होता है डेंगू जब हो जाए, तो तब आपको ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते

0: सकते हैं, और जो भी सारे घरेलू नुस्खे आपने बताए सब अच्छे हैं, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको फीवर है या ये सब चीज़ें हैं, आप बीमार हैं, तो एक बार आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि घरेलू नुस्खे ठीक हैं प्रिवेंटिव मेजर के लिए, बट आगे चीज़ें ना बढ़े, संक्रमण ना बढ़े, उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से मिलिए।
1: डॉक्टर साहब, थैंक यू
0: हाँ
1: सर। गणेश चतुर्थी की आपको शुभकामनाएं।
0: हाँ थैंक यू,
1: जी,
0: आपको भी
1: आपको भी
0: आपका।
1: गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रश्न बहुत सार्थक थे। सबसे पहली बात कि यदि हम अपने घर के आसपास और घर में साफ सफाई रखेंगे, तो सबसे बड़ा उपचार है स्वच्छता के बचेंगे,
0: द्वारा, उपचार है बचाव। ठीक है,
1: भी बचेंगे मैम।
0: हाँ, मौसम के अनुसार खान पान पहन पहनाव का यदि आप ध्यान रखेंगे, तो ये परेशानियां आपके आगे बिल्कुल नहीं आएंगी। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे नाक कान और गले की परेशानी के बारे में, और बदलते मौसम में किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए। तो कई लोग वायरल होते ही खुद एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, तो इसकी ज़रूरत किस हद तक है और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? पहली चीज़, जो भी अभी सोर थ्रोट, गले में चुभन, या फिर जो भी अभी गले के इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो वायरल इन्फेक्शन से हो रहे हैं। वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: जो भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं है। प्राथमिक आप सबसे पहले गार्गल कीजिए, गर्म पानी पीजिए, गार्गल कीजिए, और बुखार अगर है तो उसकी दवाई लीजिए। अगर वायरल बहुत ज़्यादा दिन तक बढ़ जाता है, तब उसके लिए हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, बट स्टार्टिंग में आपको एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करना है। और सेकेंड चीज़, आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आते हैं एंटीबायोटिक, एक या दो डोज ले लेते हैं। अगर आपको एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं, तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है।
1: जी
0: तो जो पहले, जो 20 साल 30 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स थी, वो बहुत बेसिक एंटीबायोटिक्स थी, वो बहुत आसानी से काम कर जाती थी। अब वो बिल्कुल असर नहीं कर रही हैं, और एंटीबायोटिक्स, नई एंटीबायोटिक्स इतनी जल्दी से बन नहीं रही हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है, बट लास्ट के 15-20 साल में कोई अच्छी नई एंटीबायोटिक नहीं आई है।
1: जी
0: इसीलिए हमें वो चीज़ बचा के रखनी है, एंटीबायोटिक्स का कम से कम यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना ही है,
1: जी
0: बट एक बार डॉक्टर से सलाह लेके।
1: बिल्कुल, डॉक्टर से
0: हाँ
1: सलाह लेकर के ही करें। डॉक्टर साहब, एक श्रोता साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं।
2: हेलो, स्वागत है आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए अपना।
1: अरे मैं पवन बोल रहा हूँ, बड़सू गांव से, रिफाइनरी के पास बड़सू गांव है।
2: अच्छा, अपना
1: पवन नाम
2: प्रश्न
1: है।
2: पूछिए।
1: अरे परेशानी है, मैं कानों से नहीं सुन पा रहा हूँ।
2: अच्छा, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, आप अगर कान से नहीं सुन पा रहे हैं, क्या आपको कान से पानी या ऐसी पानी आता है, या ऐसी और कोई समस्या है?
1: नहीं सर, कुछ आज से 2004 में एक्सीडेंट हो गया था, जब से यानी कम सुनने लग गया था। अब तो मैं बहुत, एक कान से तो बहुत ही कम सुनता हूँ, यानी सुनता ही नहीं हूँ।
2: हाँ, समस्या
1: एक,
2: तो गंभीर है
1: हाँ
2: फिर।
0: नहीं, वही, इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप एक बार किसी डॉक्टर को दिखाएं, पहले कान की नॉर्मल जांच करवाएं, एंडोस्कोपिक जांच करवाएं, पर्दा कैसा है वो देखें, उसके बाद बस एक, हाँ बताइए।
1: को दिखाया था, प्रमोद गोयल जी है कृष्णा नगर में, उनको दिखाया था मैंने।
0: अच्छा, नहीं वो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आप किसी
1: अच्छा
0: भी ENT डॉक्टर को दिखाएं, बट आपको सबसे पहले हम बस कान का पर्दा देखते हैं, बट कान के पर्दे के अंदर 3 हड्डियां भी हैं, और उसके अंदर हमारे कान की एक नस भी है जो दिमाग तक जाती है। तो हम एक बार, एक PTA करके टेस्ट होता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, उससे आपको अंदर की चीज़ें पता चलेंगी, बस पर्दे के अलावा और अंदर हड्डियाँ कैसी हैं और नस कैसी है। जब वो चीज़ें पता चलेंगी, उसके बाद एक बार हम उसका उपचार कर सकते हैं, या तो हियरिंग एड लगा सकते हैं, या आपके कान का ऑपरेशन हो सकता है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो एक बार आप जहाँ भी दिखा रहे हैं वहाँ पे दिखाइए, जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, और पूरा इलाज करवाइए जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है आपको।

0: जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, ये सामान्य वायरल में कितने दिन तक ऐसा रहता है और इसे कितने समय के बाद हम गंभीरता से ले सकते हैं?
1: मैम, मैं दो चीज़ प्रकाशित करना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे हम

0: होना, तो दोनों के सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते हैं, इसीलिए जब तक हम जांच नहीं करवाते हमें पता नहीं चलता। बहुत सी बार हम बार बार नाक से पानी आना, ये सब चीज़ें होते हैं उसको मिस कर देते हैं। तो एलर्जी एक बार चेक करवाइए कि एलर्जी तो नहीं है, और वायरल इन्फेक्शन है तो स्टार्टिंग में आप घर पे ही गर्म पानी पीजिए और घर के नुस्खे 2-4 दिन तक ले सकते हैं। बट अगर फिर भी बुखार है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे साइनस बीमारी का एक लक्षण सिर में दर्द और चेहरे पे भारीपन, ये भी है एक इसका लक्षण, तो इसका मतलब क्या है कि ये साइनस बीमारी ही है? अगर किसी को जैसे सिर में दर्द बराबर रहता है और फिर चेहरे पे भारीपन भी है और नाक भी उसकी बंद हो रही है, उसे छींकें आ रही हैं बार बार या पानी भी बह रहा है, तो सामान्यतः ये सारे लक्षण साइनस के हैं या फिर किसी और बीमारी से भी जुड़ सकते हैं, जैसे सामान्य बुखार में भी ऐसा होता है?
0: साइनस मैं आपको ये पहली चीज़ ये समझा देता हूँ, हमारे नाक के ऊपर नीचे दाएं बाएं छोटी खाली खाली जगहें होती हैं जिसमें हवा भरी होती है, उनको साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, सबके होते हैं, कोई नॉर्मल प्रॉब्लम, जस्ट उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या कोई ब्लॉकेज हो जाता है हमारी हड्डी में, पहले से होता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, रुकाव हो जाता है, उसकी वजह से साइनसाइटिस हो जाता है, नाक साइनसिस का इन्फेक्शन। उससे चेहरे में पेन आना, हैवीनेस रहता है, पेन से ज़्यादा हैवीनेस रहता
1: हैवीनेस
0: है
1: रहता
0: हेड में। तो अगर सिर दर्द है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, साइनस की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन की भी इश्यू हो सकती है। तो एक बार वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से एक बार जांच करवाइए।
1: जी। डॉक्टर साहब, एक श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, कौन बात कर
2: मैम,
1: रहे हैं?
2: हम गोवर्धन राधा कुंड से बोल रहे हैं।
1: राधा कुंड से कौन साहब?
2: मैं ब्रजेश्वरी बोल रही हूँ।
1: ब्रजेश्वरी जी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मैम, मेरा कान में दर्द है और कान से पानी बहता है ठंडी लगने से। मैम,
1: जी, आपकी उम्र कितनी है?
2: 16।
1: कितनी है?
3: 16 साल।
1: 16 साल की हैं आप, और ये कब से है समस्या?
2: ये तो अगले साल 1 साल से ही है।
1: 1 साल से ही। डॉक्टर साहब से बात कीजिए।
0: हाँ, कान से पानी, पहली चीज़ तो कान से पानी आना, इसका मतलब है कि कान के अंदर छेद है, छोटा या बड़ा। अगर ये बहुत काफ़ी पहले से हो रहा है तो अंदर से हड्डियों में भी गलाव आ सकता है। अगर कान से अगर पानी आ रहा है, नाक से बार बार एलर्जी की, जो मैंने पहले आपको एलर्जी की दिक्कत बताई, साइनस की दिक्कत बताई, कान और नाक के बीच में एक ट्यूब होती है, उसको स्टेशन ट्यूब बोलते हैं। अगर नाक में बार बार एलर्जी है तो उसकी वजह से कान में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है।
1: जी
0: इस चीज़ में आपको सबसे पहले कान को सुखाना है, देखना है पर्दे का साइज़ कितना, पर्दे में छेद का साइज़ कितना है, फिर उस हिसाब से इलाज होगा। अगर कान के पर्दे का साइज़ छोटा है तो खुद से भी 2-4 महीने देख सकते हैं, पर्दा भर जाता है। अगर कान के साइज़ वो पर्दे का साइज़ बड़ा है, छेद का साइज़ बड़ा है, तो उसके लिए ऑपरेशन लगता है। बट उसके लिए भी पहले आपको जांच करवानी पड़ेगी कि कान के नस कैसी है और हड्डियां कैसी हैं अंदर।
1: आशा है आपको जानकारी मिल गई होगी और आप चिकित्सक की परामर्श के अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराएंगी। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़ते हैं और प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर से, तो ये अंकिता शर्मा मथुरा से हमसे जुड़ी हैं। उम्र है इनकी 45 वर्ष। इनका प्रश्न है, गले के नीचे दर्द होना, क्या यह थायराइड के लक्षण हैं?
0: यूजली थायराइड में मोस्ट केसेस में गले में दर्द नहीं होता है, कुछ ही कंडीशंस में गले में दर्द होता है और भारीपन ज़्यादा रहता है। अगर गले में दर्द है तो एक बार एंडोस्कोपिक जांच करवाएं कि किस वजह से दर्द है।
1: जी, छाता से अनिल कुमार जी हमसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पर। उम्र है 36 वर्ष। वो प्रश्न कर रहे हैं कि कान में अगर खुजली होती है तो क्या हम

0: स्वयं ही उसकी सफाई कर सकते हैं, जैसे आजकल ईयरबड आते हैं।
1: हाँ
0: कुछ लोग तो ये लिख रहे हैं कि माचिस की तिल्ली का प्रयोग भी हम कभी कभी कर लेते हैं, या कोई और उपाय आप हमें बता दें।
1: नहीं, अगर कान में खुजली, पहली चीज़ तो बहुत सारे केसेस आते हैं ओपीडी में, जो कान में पिन और तीली डालते हैं, ईयरबड से भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा कर देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा घाव बना देते हैं क्लीन करके लोग,
0: जी
1: उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कान की जो स्किन है वो बहुत नाजुक होती है, आप अंदर नहीं देख पाते हैं बट वो अंदर घाव हो जाता है। नॉर्मली जो ईयर वैक्स भी होता है आपका, वो खुद से निकल जाता है, वो बाहर की साइड बनता है, खुद से निकल जाता है। अगर आप और सेल्स हैं वो बार बार वो धीरे धीरे बाहर की साइड मूव करते हैं, अगर आप उस चीज़ में थोड़ा सा घाव बना देते हैं तो वो चीज़ तो वैक्स अंदर ही अटक जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ भी ना करें, वैक्स खुद से बाहर आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
0: जी डॉक्टर
1: और
0: साहब, यदि
1: अगर
0: समस्या
1: हाँ
0: ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाएं।
1: हाँ और कान में आजकल जो ह्यूमिडिटी हो रही है उसकी वजह से कान में ओटोमाइकोसिस हो जाता है, जिसको फफूंद बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन है। अगर वो है तो उसके बाद कान की सफाई होना ज़रूरी है, कान की सफाई और सही ड्रॉप लेना ज़रूरी है।
0: जी
1: तो बट वो पहले एक बार चेक करके, और खुजली होना एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, तो आप एलर्जी की दवाइयाँ लें, उसमें कान को खुजाने से कुछ नहीं होगा।
0: जी एक श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
2: हेलो, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
3: मैं वृंदा बोल रही हूँ, वृंदा विशे।
2: जी, अपनी उम्र बता दीजिए।
3: मैं 16-17 के आसपास होगी।
0: जी, क्या
2: और प्र...
0: समस्या है आपको?
3: तो मैम, मेरे कानों में खुजली होती है।
0: जी, और कोई परेशानी?
3: नहीं, और ये बताओ, ये अपने फेस पे डार्क सर्कल्स होते हैं, आईओ के नीचे, और ये पिंपल्स होते हैं, इसके लिए स्किन साइन क्रीम कैसी होती है?
0: जी, आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए। बेटा, आज हमारे साथ में जुड़े हैं ENT विशेषज्ञ, कान नाक गला स्पेशलिस्ट, लेकिन फिर भी वो बताएंगे तुम्हें।
3: प्लीज थोड़ा बहुत तो आप बता सकते हो।
0: जी,
3: हाँ
0: बिल्कुल।
1: नहीं, सबसे पहले अगर कान में खुजली हो रही है उसके लिए एक बार कान चेक करवाइए। अगर फफूंद है कान में तो उसका सही इलाज होना चाहिए, क्योंकि वो कान का पर्दा भी गला देती है अगर बहुत ज़्यादा समय तक हो। तो सबसे पहले वो, और अगर नॉर्मली एलर्जी से है तो थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा नारियल का तेल, एक बूंद नारियल का तेल लीजिए अपनी उंगलियों पे और बाहर ही लगाइए। कान के अंदर कोई तेल नहीं डालना है, कोई गर्म करके सरसों का तेल या कोई भी तेल नहीं डालना है, जस्ट कान के बाहर की जो स्किन है वहाँ पे थोड़ा सा एक बूंद तेल लेना है और लगाना है, कान के अंदर कुछ भी नहीं डालना है।
3: कोकोनट ऑयल सर?
1: हाँ, कोकोनट ऑयल इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक, वो थोड़ा बैक्टीरिया आपका कम करता है, बट कान के अंदर नहीं डालना है। ठीक है?
3: हाँ तो
1: हाँ,
3: सर, प्लीज मुझे एक क्वेश्चन बता दो, ये स्किन साइन क्रीम कैसी होती है?
1: मुझे क्रीम के बारे में अंदाज़ा नहीं है, बट डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करिए, टाइम पे सोइए, अपना स्क्रीन टाइम, फ़ोन पे स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिए, वही सबसे बढ़िया इलाज है, दवाइयाँ कम से कम।
0: बेटा, आजकल बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं और उनका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा होता है कि नींद कम ले पाते हैं।
3: मोबाइल तो मैम मैं हैंड में, हाथ में भी नहीं लेती मोबाइल, तो मैं फिर
0: अच्छा,
3: भी।
0: बहुत अच्छी बच्ची हैं, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच, हैव अ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उम्र से कोई लेना देना है, जैसे कि खर्राटे आना, और इसके लिए कोई ज़्यादा गंभीर समस्या है स्वास्थ्य के लिए, या फिर उम्र से भी कोई लेना देना है इसका?
1: उम्र से ज्यादा
2: तो ये कोई गंभीर समस्या है?
1: खराटे आना, ऐसे मैं आपको एक थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ।
2: जी
1: खराटे क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे मांसपेशियाँ होती हैं गले में, स्लीप, जब हम सोते हैं तो वो रिलैक्स करती हैं, ठीक है? वो जब रिलैक्स करती हैं तो वो टकराती हैं, उसकी वजह से खराटे आते हैं।
2: अच्छा
1: अगर बट एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल है वो स्लीप एपनिया की है। उसमें क्या होता है कि आप सोते सोते उठ जाते हैं, आपको सांस

0: नहीं आती है, गले में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो पेशेंट को पता नहीं चलता, वो जो घर वाले हैं जो आसपास जो उनके साथ सो रहे हैं उनको पता चलता है, तो उनको ऑब्जर्व करना है कि कितनी बार उठ रहे हैं ऐसे। वो पेशेंट सांस नहीं आएगी, पेशेंट उठ जाएगा, फिर से सांस आएगी, फिर पेशेंट सो जाएगा,
1: तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा।
0: पेशेंट को पता नहीं चलेगा। उसको अगले दिन बहुत नींद आएगी, डेली बहुत नींद आना दिन में, और वीकनेस रहना, यही सब सिम्टम्स हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो तीन चीज़ें, एक तो अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल बंद करना है, दूसरा वेट रिडक्शन, जो हमारी नेक है, गला है, उसके पास जो चर्बी एक्यूमलेट हो जाती है, चर्बी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत ज़्यादा होती है। वेट सबसे पहले कम करना है। एक स्लीप स्टडी होती है जो
1: जी
0: टेस्ट है वो, उससे एक बार आपको पता चलता है कि ये एपनिया के एपिसोड्स कितनी बार हो रहे हैं हमें। अगर ये 3 4 बार 5 बार हो रहे हैं तो ठीक है, अगर ये 10 से ज़्यादा बार हो रहे हैं तो एक दिक्कत की बात है। बहुत सी बार दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
1: जी
0: ठीक है, और नॉर्मली भी लाइफ में मतलब दिन में प्रॉब्लम होती है, काम में प्रॉब्लम होती है, मन नहीं लगता कान में, ये सब चीज़ें होती हैं, तो एक बार स्लीप स्टडी करा सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं आजकल जिससे सही चीज़ क्या है, क्या दिक्कत है, वो पता चल जाती है इससे बहुत
1: तो
0: ईजीली।
1: फिर इसके लिए हमें जरूर परामर्श लेना
0: एक बार
1: चाहिए।
0: परामर्श लीजिए, बिल्कुल परामर्श लेना पड़ेगा।
1: जी
0: और सबसे पहले घर में थोड़ा वेट रिडक्शन, एक तो हमारे यहाँ फेस्टिवल का सीज़न है, मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है, थोड़ा
1: बिल्कुल
0: कम करना है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, एक साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: राधे राधे बहन,
1: राधे राधे, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं घाटोली से बोल रहा हूँ, नारायण सिंह।
1: नारायण सिंह जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने 15 दिन में कभी एलर्जी से कभी कभी नाक चलती है,
1: जी
2: महीने 2 महीने में।
0: वही अभी क्या है, एलर्जीज हमें इस सीज़न में थोड़ा ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और एयर में पॉलन ज़्यादा होता है,
1: जी
0: ठीक है, उसके लिए अगर एलर्जी है उसकी वजह से अगर ज़्यादा टाइम तक उसका इलाज ना करवाएं तो हमारे लंग्स में भी सेम एक ही एयरवे है हमारा, लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं और जो हमारी नाक है वो एक ही एयरवे है,
1: जी
0: एक ही नली है,
2: हाँ
0: तो
1: सही
0: उसकी वजह से अगर इलाज नहीं होता लंबे समय तक तो अस्थमा की भी प्रॉब्लम हो जाती है, नाक में छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, पॉलिप भी हो जाते हैं, अगर एलर्जी का सही इलाज ना हो तो सही इलाज करवाइए। नेजल स्प्रे आते हैं उससे एलर्जी काफ़ी कंट्रोल में रहती है, और थोड़ा मास्क भी पहन सकते हैं क्योंकि हमारा एयर क्वालिटी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो अगर जो ज़्यादा धूल में काम करते हैं तो मास्क भी पहन सकते हैं।
1: जी नारायण जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत
2: मुझको
1: धन्यवाद।
2: धूप और धूल से होती है एलर्जी।
0: हाँ, तो धूल से बचाव थोड़ा रखिए, धूल से थोड़ा बचाव रखना है, और नेजल स्प्रे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जो भी कान नाक गले के डॉक्टर हैं उनको एक बार दिखाइए, वो एक बार आपकी नाक देखेंगे फिर नेजल स्प्रे स्टार्ट करेंगे वो।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि अस्थमा भी हो सकता है, तो ये जेनेटिक्स भी है?
0: जेनेटिक्स भी है मैम, बट आजकल काफ़ी प्रेवलेंट है,
1: तो इसके
0: ठीक
1: लिए
0: है,
1: प्रदूषण
0: प्रदूषण
1: वगैरह भी जिम्मेदार?
0: तो ज़िम्मेदार है, हाँ
1: डॉक्टर
0: बहुत
1: साहब,
0: ज़्यादा।
1: अक्सर गले में खराश, दर्द और गले में संक्रमण, और खासकर आवाज़ का बैठना, जिनका बोलने का काम होता है, जैसे शिक्षक हैं, उनका अक्सर गला खराब हो जाता है, तो ऐसे में क्या बचाव किया जाए?
0: मैम आजकल मैं काफ़ी पेशेंट्स देख रहा हूँ जिनके गले में वोकल नोड्यूल या वोकल पॉलिप हो जाता है, उससे जो हमारी जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, जो सांस की नली होती है उसकी एंट्री पॉइंट है,
1: जी
0: तो वहाँ पर ज़्यादा सिंगर्स या फिर टीचर्स हैं या एक्टर्स हैं, इनको वहाँ पर छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, उससे आवाज़ में भी चेंज आता है, हॉर्सनेस आ जाती है, ठीक है, तो
1: जी
0: वो उसके लिए एक बार एंडोस्कोपिक जांच करवाएं, उसके लिए फिर इलाज कराएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें वॉइस रेस्ट, कि थोड़े दिन वो नहीं बोलना है, कम बोलना है,
1: जी
0: तो ये उनके प्रोफेशन के हिसाब से ये चीज़ मैच नहीं करती है, बट फिर भी उस
1: फिर भी
0: चीज़ का
1: बचाव
0: हाँ

0: तो करना
1: बचाव
0: ही होगा।
1: करना
0: और डॉक्टर साहब, ये कान में सीटी और घंटी बजने जैसी आवाज, ये क्या समस्या है?
1: इसको टिनिटस बोलते हैं, और ये काफ़ी परेशान करने वाली चीज़ है। कान के अंदर जो नस है उसमें कमजोरी की वजह से, और एज के साथ भी और ये चीज़ बढ़ रही है, और हम आजकल ईयरफोन का यूज़ बहुत कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये चीज़ बहुत बढ़ रही है। तो एक बार पहली चीज़ तो जांच करवाइए, उसके बाद बहुत सारे मल्टी विटामिन्स हैं, या बहुत आजकल टिनिटस के लिए थेरेपी आ रही हैं जिससे काफ़ी इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हाँ, ये काफ़ी बड़ी समस्या है।
0: जी, एक साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं।
2: हेलो,
3: हेलो मैम,
2: नमस्ते। कौन बात कर रहे
3: नमस्ते।
2: हैं, परिचय दे दीजिए।
3: मैं, मेरा नाम सरकार है, बिल से। मैम,
2: अच्छा, आप कितने साल की हैं?
3: मेरे पापा को बहुत सारा पसीना आता है,
2: 5 मिनट
3: में पापा की पूरी बुशत गीली हो जाती है।
2: इतना सारा पसीना आता है? अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप?
1: पहली चीज़ तो ये मौसम में भी थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है, इसको हाइपर हिड्रोसिस बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा पसीना आना। एक बार बहुत सी थायराइड की समस्याओं में भी ज़्यादा पसीना आता है, तो वो भी एक बार जांच करवाइए। और नॉर्मली पानी ज़्यादा पीजिए अगर पसीना आ रहा है। पहली चीज़ तो उमस बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को नॉर्मली ही पसीना ज़्यादा आता है, तो इससे पानी ज़्यादा पीजिए और ये सब तरल पदार्थ ज़्यादा लीजिए,
2: तो
1: उससे
2: पसीना
1: थोड़ा।
2: आने के लिए थायराइड या फिर कुछ और भी है?
1: हाँ, थायराइड की समस्याओं की वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है, और भी हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है। बट यूजुअली नॉर्मली देखा जाता है कि एक सामान्य सी चीज़ है ज़्यादा पसीना आना, क्योंकि हमारा अभी का मौसम ऐसा है, बहुत ह्यूमिडिटी है। तो
0: तो ऐसे में डॉक्टर साहब, बचाव और सावधानी
1: और एक थोड़ा तरल पदार्थ थोड़ा ज़्यादा लीजिए।
0: जी
1: हाँ
0: इस मौसम में।
1: हाँ
0: जी डॉक्टर साहब, ये टॉन्सिल की समस्या, इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी आपसे हासिल करनी चाहिए थी। टॉन्सिल
1: हाँ
0: की जो समस्या है, ये क्या सर्द गर्म के प्रभाव की वजह से बार बार किसी को रिपीट होता है, या फिर ये किसी व्यक्ति विशेष को एक समस्या हो जाती है?
1: टॉन्सिल, पहली चीज़ तो ये समझना है कि टॉन्सिल एक नॉर्मल टिश्यू है
0: जी
1: जो सबके ही होते हैं। ये बचपन में हमें इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए होते हैं। अडल्ट्स में एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बट कुछ लोगों में देखा जाता है कि बहुत बच्चों में और बहुत सी बार अडल्ट्स में भी ये देखा जाता है कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन बहुत बार बार जल्दी हो जाता है। और कुछ लोगों में क्रिप्ट्स, टॉन्सिल के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें खाना फंस जाता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब ये दिक्कत है, अगर क्रिप्ट्स बहुत बड़े हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पहली चीज़ तो ये देखना है कि अगर साल में 1, 2 या 3 बार हो रहा है तो हम दवाई से मैनेज कर सकते हैं, और ऑपरेशन कराने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। हम गार्गल कर सकते हैं,
0: जी
1: खाने का सोडा और नमक के पानी से गार्गल कीजिए, और गर्म पानी पीजिए, और ऐसी चीज़ें लीजिए घर में, तुलसी और ये सब, जिंजर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे
0: जी
1: आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो। अगर ये 4 से 5 बार हो रहा है साल में और लगातार 2-3 साल तक हो रहा है, तो फिर आप ऑपरेशन इस चीज़ को, टॉन्सिल निकलवा सकते हैं। कोई उसमें अलग से कोई आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा, बट आपकी जो बच्चे को स्कूल में बड़ी दिक्कत आती है और बार बार एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है, उस चीज़ से आप बच सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, समय हो रहा है, चलते चलते एक श्रोता साथी से और बात कर लेते हैं।
2: हेलो सहेली कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
4: नमस्कार जी,
2: नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए और नाम बता दीजिए।
4: मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं चंद से बोल रहा हूँ जी।
2: जी
4: तो मेरे प्रश्न यही है कि मैं अपना गाना बजाने का काम करता हूँ जी,
2: जी
4: तो मैं गाते गाते मेरी आवाज बैठ जाती है।
1: वही मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया कि टीचर्स, जो हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे म्यूजिशियन हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, जिनको बार बार बोलने का काम होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं जहाँ पे जहाँ

0: से हमारी आवाज़ निकलती है वो जब वो मांसपेशी टकराती हैं तो हमें छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं उस पे, तो उस चीज़ का इलाज है, ठीक है, इलाज भी है। अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रही तो ऑपरेशन भी है, बट पहले एक बार इसका इलाज करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉइस रेस्ट,
1: जी
0: थोड़ा सा बोलने में कमी लानी है। और थोड़ा सा मुझे पता है आप म्यूजिशियन हैं तो ये चीज़ बोलना बहुत आसान है मेरे लिए, बट फिर भी थोड़ा अपने से ट्राई करना है कि थोड़ा बोलना कम करना है।
1: जी आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वक्त हो गया है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। चलते चलते 1-2 मिनट में आप हमारे श्रोता साथियों से क्या कहना चाहेंगे, इस बदलते मौसम में वो कैसे अपना ख्याल रखें, या हमेशा सालों साल कैसे अपना ख्याल रखें?
2: और एक चीज़ और, एक दिन में हमें कितनी कितना टाइम मतलब हेडफोन वगैरह का यूज करना चाहिए, जो बच्चे और युवा आजकल बहुत अधिक कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी दीजिए।
0: मैम वही सबसे पहली चीज़, तो अगर आपका काम है यूज़ करने का, पहली चीज़ तो ईयरबड्स यूज़ कम कीजिए,
2: जी
0: ओवर द ईयर हेडफोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और
2: जी
0: थोड़ा लाउडनेस कम कीजिए उसका, जितना कम से कम लाउडनेस हो सकता है। टाइमिंग कम करिए, बट उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाउडनेस कम करिए,
2: जी
0: कम तेज़ी पे सुनिए।
2: तो 1 दिन में कितने टाइम हम यूज कर सकते हैं तो नुकसान नहीं है?
0: आपका काम तो मैम बहुत ज़्यादा यूज़ करने का है, बट नॉर्मली हाँ 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करना, उससे भी कम यूज़ करना है, बट कुछ प्रोफेशंस में या कुछ
2: जी
0: जगहों पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए ओवर द हेड यूज़ कीजिए,
2: जी
0: ईयरबड्स का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए और लाउडनेस कम कीजिए।
2: जी बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे आज के कार्यक्रम में। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता साथियों को अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे श्रोता साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, समय देने के लिए, हमारी स्वास्थ्य चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और श्रोताओं, आज की बातचीत से एक बार ज़रूर याद रखिए कि नाक को सिर्फ सांस लेने का रास्ता न समझें, कान को सिर्फ सुनने का माध्यम न समझें, और गले को सिर्फ आवाज़ निकालने का जरिया न समझें। ये हमारे स्वास्थ्य के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सांसों में सुकून रहे, आवाज में मिठास रहे, सुनने की शक्ति बनी रहे, हर दिन स्वास्थ्य का एहसास रहे, छोटी सी तकलीफ को यूं ही न टालें, सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह लें, सेहत अनमोल है, इसका ख्याल रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, अपनों को भी स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ विदा दीजिए, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता लोक के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय था बदलते मौसम में नाक कान और गले संबंधी समस्याएं और समाधान। हमारे साथ विशेषज्ञ थे डॉक्टर निशांत गुप्ता, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। साथ में साथी थी दीप्ति शर्मा। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म तेरे मेरे सपने के इस गीत को। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत था विजू शाह का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: की और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है।

0: बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के

0: वे चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
3: जो जो

0: एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
6: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
7: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्ट्रोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
5: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस

0: इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया।
1: बधाई
2: हो, धन्यवाद,
3: बहुत बहुत बधाई,
2: धन्यवाद।
3: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है,
1: बहुत बहुत बधाई हो।
4: अठारह सौ सत्तानवे में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
5: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
6: आइए मारिया जी।
2: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ? कुछ उदास लग रहे हो।
6: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
2: और बुरी?
6: जी।
2: अब भला वो कैसे?
6: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
2: हाँ हाँ जरूर।
6: जी
5: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
7: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
2: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
5: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
8: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
5: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
8: महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षा विधि में

0: निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
1: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
2: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
2: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
4: धन्यवाद
5: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
4: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
3: जी,
4: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
3: जी जी, धन्यवाद
4: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
2: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल

0: गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
1: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
0: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
0: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
1: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जरा सोचिए, हमारे मन में पहली आहट किस भाषा में होती है? माँ की ममता हमें किस भाषा में पुकारती है? दादी नानी की कहानियां

लोकगीतों की मिठास और अपने अपन की अनुभूति आखिर किस भाषा में सबसे अधिक सहज लगती है? निस्संदेह वो भाषा है हिंदी, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा भी है। और आज जब हम हिंदी दिवस का जिक्र कर रहे हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो ये केवल एक दिवस मनाने का अवसर नहीं, बल्कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति,

केवल कार्यालयों और सरकारी पत्रों की भाषा नहीं है। हिंदी तो हमारे संवाद की भाषा है, हमारे रिश्तों की भाषा है, हमारे साहित्य की भाषा है और हमारे सपनों को शब्द देने वाली भाषा है। आज का युवा हिंदी में सोचता भी है, रचता भी है और डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान भी हिंदी बना रहा है। ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, सिनेमा और साहित्य, हर क्षेत्र में हिंदी अपनी नई संभावनाएं तलाश रही है। तो आइए हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि हिंदी का सम्मान केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा। हम हिंदी में शुद्ध, सहज और प्रभावशाली संवाद करेंगे, नई तकनीकी में हिंदी का प्रयोग बढ़ाएंगे और अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपनी भाषाओं का भी, अन्य भाषाओं का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि दूसरी भाषाएं सीखना हमारी क्षमता है लेकिन अपनी भाषा को भूल जाना हमारी कमजोरी बन सकती है। और दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति का दूसरा विषय है गणेश चतुर्थी। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणेश का स्मरण होते ही मन में श्रद्धा, उत्साह और शुभारंभ की भावना जाग उठती है। गणेश चतुर्थी हमें याद दिलाती है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हमें अपने भीतर के अहंकार, आलस्य और नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। भगवान गणेश का विशाल मस्तक हमें व्यापक सोच का संदेश देता है, बड़े कान अधिक सुनने की प्रेरणा देते हैं और छोटी आंखें एकाग्रता का महत्व समझाती हैं। दोस्तों, क्या ही सुंदर संदेश है। देखिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो सोच बड़ी रखिए, सुनने की आदत विकसित कीजिए और अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहिए। गणेशोत्सव केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक उत्साह और सामूहिक सहभागिता का भी पर्व है। ये पर्व हमें सिखाता है कि मिलजुल कर किया गया प्रयास समाज में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। हाँ, उत्सव मनाते समय पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मिट्टी की प्रतिमाएं, प्राकृतिक रंग, कम ध्वनि प्रदूषण और विसर्जन के लिए पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था, ये छोटे छोटे कदम हमारे पर्व को और अधिक पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। तो आज की बात का सार यही है, हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाता है और गणेश चतुर्थी हमें बुद्धि, विवेक, विनम्रता और शुभ कर्म का संदेश देती है। एक ओर हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है तो दूसरी ओर गणेश जी का आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए आज हम दो संकल्प लें। पहला, हिंदी को सम्मान, व्यवहार और सृजन में स्थान देंगे। दूसरा, अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत सकारात्मक सोच, अनुशासन और पर्यावरण सम्मत आचरण से करेंगे। और इसी मंगल कामना के साथ आइए हम आपको सुनवाते हैं संगीत फिल्म से पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये गीत।

0: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में संगीत फिल्म से ये रचना आप सुन रहे थे। दोस्तों, कार्यक्रम जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है सभी युवा दोस्तों का। कथाक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी, शीर्षक है जिंदा दिली, कहानीकार हैं शैलेश कुमार वर्मा।
3: आज रवि बहुत प्रसन्नचित दिखाई दे रहा था। उसके बचपन का दोस्त संदीप उससे मिलने आया था। संदीप ने उससे हालचाल पूछते हुए गले से लगाया तो रवि भावुक हो उठा। जब संदीप ने उसे अपने सीने से अलग करके रवि के चेहरे की ओर देखा तो उसकी आँखें छलछलाई हुई थी। संदीप ने पूछा, अरे रवि, ये खुशी और गम एक साथ मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बात है, तुम ठीक तो हो? रवि ने संदीप का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, संदीप अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संदीप ने कहा, अब तो शब्द का क्या मतलब है? संदीप के यह पूछते हुए ही रवि के मस्तिष्क में उसके बचपन से लेकर युवावस्था तक का समय एक चक्र की तरह घूम गया। संदीप के हाथ को पकड़े हुए वह पार्क की ओर एक बेंच की ओर गया और बैठते हुए कहने लगा, तुम जो जानना चाहते हो वो मैं बताता हूँ। तुम्हें याद है कि बचपन में हम साथ साथ खेला करते थे, स्कूल में दाखिला भी साथ साथ हुआ ही था। संदीप ने कहा, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, वो भी क्या दिन थे, हम कितनी मस्ती किया करते थे, किसी बात की चिंता जो नहीं थी। हाँ, कबड्डी में तुम जरूर पिछड़ जाया करते थे पर पढ़ाई में तो होशियार थे। रवि बोला, हाँ तुम्हें यह भी याद होगा कि 8वीं कक्षा में पढ़ाई तक हम साथ साथ पढ़े और अच्छे अंकों से पास होते गए। गांव का वह स्कूल 8वीं कक्षा तक ही तो था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए तुम शहर चले गए थे। संदीप बोला, हाँ लेकिन तुम्हारा तो अचानक पढ़ाई से मन उचट गया था और तुम आगे की पढ़ाई के लिए न जाकर अपने घर में ही पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे। रवि ने कहा, संदीप ये जो तुम कह रहे हो सच बात नहीं थी, तो फिर सच्चाई क्या थी और तुमने मुझसे छुपाया क्यों? ये दोनों सवाल संदीप ने एक साथ किए और प्रश्नवाचक नज़रों से रवि की ओर देखा। रवि बोला, तुम तो शहर चले गए थे और मैं तुम्हारे बारे में सुनता रहता था कि तुम अच्छे अंकों से BCA तक की पढ़ाई करके किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे पर पहुँच गए हो, लेकिन मैं तो जितना पढ़ाई में रुचि रखता था वो रही सही रुचि भी गांव में रहते हुए जाती रही थी। पढ़ाई से मन उचट जाने की बात मैंने गलत कही थी, सच्चाई यह थी कि मेरे पिताजी आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, कारण था घर की आर्थिक स्थिति। मैंने पिता से, माता से, चाचा ताऊ तथा अन्य सगे संबंधियों से बहुत मिन्नतें की थी कि मुझे कैसे भी करके पढ़ने दीजिए, किंतु किसी का दिल नहीं पसीजा। मेरी माँ ने पिता को जरूर कहा था कि इसे शहर भेज दो, कुछ काम मैं भी करूँगी और पैसा कमा कर लाऊँगी, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया था कि बड़े स्कूल की पढ़ाई पर खर्चा, साथ ही साथ रहने सहने, स्कूल की ड्रेस, जूते, बस्ता इत्यादि का खर्चा हम वहन नहीं कर पाएंगे। रही जहाँ तक तुम्हारे भी काम पर जाने की बात, तो यहाँ काम है ही कहाँ, मैं भी जो मजदूरी करता हूँ उसका पैसा समय पर नहीं मिलता है, जैसे तैसे करके घर के 6 सदस्यों की रोटी का प्रबंध कर पाता हूँ। जब तक ये रवि गांव के स्कूल में था तो कैसे भी कपड़े पहनकर घर के बने झोले में किताब कॉपी रखकर नंगे पैर ही चला

0: जाता था, लेकिन शहर के स्कूल में तो ऐसा एक दिन भी नहीं चलने वाला। इसलिए अच्छा होगा कि ये गांव में ही रहकर बढ़ईगिरी अथवा लोहार का काम सीख ले, जो आगे इसके काम आएगा। संदीप बोला, रवि तेरी कहानी तो वास्तव में बड़ी भावुकता भरी है, लेकिन आज तो मुझे नहीं लग रहा कि तू बढ़ईगिरी का काम करता है। रवि बोला, हाँ तुम ठीक अनुमान लगा रहे हो। पिताजी की इच्छानुसार मैं पास के बड़े गांव के बढ़ई मिस्त्री के पास काम सीखने जाने लगा था। वह मिस्त्री मुझसे दिन भर काम करवाता, बात बात पर डांटता था, कभी कभी थप्पड़ भी मार दिया करता था। मुझे अपने आप पर रोना आता था, किंतु मैं बेबस था। मन ही मन सोचता था कि मैं भी अपने मित्र संदीप के जैसे घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। फिर तुरंत सोचता, नहीं नहीं, अरे मेरा सोचना गलत है, आखिर सब लोगों को तो एक जैसा घर नहीं मिल सकता। मैं अपने कामों में लगा हुआ था। तभी गर्मियों की छुट्टी में मेरे रिश्ते के ताऊ गांव में आए, जो किसी दूर के शहर में प्रधानाचार्य थे। मैं जब उनके चरण स्पर्श करने गया तो मुझे जैसे पहचानते हुए कुछ सोचकर बोलने लगे, तुम सोहनलाल के बेटे रवि हो ना? मैंने नीची नज़रें करके कहा, जी। वह बोले, अरे शर्माने की क्या बात है, बताओ कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मेरे बोलने से पहले वहीं खड़े मेरे चाचा बोले, भाई साहब ये पढ़ता नहीं है, ये तो बढ़ईगिरी का काम सीख रहा है। अच्छा हुनर है इसके पास, किसी दिन बड़ा मिस्त्री बनेगा। ताऊ जी बोले, दस्तकारी में ही हुनर रखता है तो काम कोई बुरा नहीं है, किंतु किसी अच्छे व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई क्यों नहीं कर लेता? अब तक मेरे पिताजी भी वहाँ आ गए थे और उन्होंने अपनी सारी वस्तुस्थिति ताऊ जी को बता दी थी। ताऊ जी ने कहा, हारिए न हिम्मत, पिसारिए न नाम, उन्नति के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। मेरे पिताजी से उन्होंने कहा कि तुम इसे ओपन स्कूल से 10वीं कराओ, उसके बाद आगे का रास्ता स्वयं ही खुल जाएगा। ताऊ जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे तपते रेगिस्तान में बारिश हो गई हो। मृत प्राय हो चुकी मेरी इच्छा जागृत हो गई। मैं अंदर ही अंदर खुश हुआ, क्योंकि ताऊ जी ने ऐसा रास्ता सुझाया था जिसमें मेरे घर की विपन्नता आड़े नहीं आ रही थी। ओपन स्कूल से 10वीं पास कर लेने का जो खर्चा था, उसके लिए तो मेरी माँ ने ही व्यवस्था करने की बात कह दी थी। अतः मैंने निर्धारित समय में ओपन स्कूल बोर्ड की परीक्षा का फॉर्म भरकर अपना मन फिर पढ़ाई की ओर लगा दिया। अब मैं पिताजी के बताए हुए काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। तभी संदीप बोला, तो क्या तुमने कोई बड़ा व्यावसायिक कोर्स भी किया था? रवि बोला, नहीं, मैंने अच्छे अंकों से 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद ITI की थी। ITI करने के तुरंत बाद सौभाग्य से मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई थी। आज मैं अच्छा वेतन प्राप्त करता हूँ। ITI करने का जो खर्चा मेरे घर वालों पर हो गया था, वो भी ब्याज सहित, मैंने बहुत जल्दी चुकता कर दिया है। आज तो कितने ही लड़की वाले मेरे घर पर शादी का रिश्ता लेकर आते रहते हैं। घर वाले बहुत खुश हैं, खास तौर पर मेरी माँ तो फूल ही नहीं समाती है। आखिर मेरे घर की दयनीय स्थिति बीते जमाने की बात जो हो गई है। यह सब सुनकर संदीप ने रवि को अपनी भावों में भरकर उठा लिया। रवि, जिंदगी का सफल व्यक्ति तो तुम्हें ही कहा जाएगा, क्योंकि हताशा में से प्रायः जीवन नैया को किनारे तक ले आए और अब तो वह दौड़ रही है। तुम्हारी प्रसन्नता का राज समझ में आ गया है। अब ये तो बता दो, इतने रिश्ते आ रहे हैं तो शादी कब करोगे? भाई मुझे भी बारात में ले जाओगे या नहीं? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।
1: जिंदगी जिंदा दिली। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। कहानीकार थे शैलेश कुमार वर्मा।

दोस्तों, ज़रा सोचिए, हमारे आसपास जो पुल हैं, सड़कें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिजली की रोशनी है, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया है, इन सब के पीछे किसकी कल्पना, परिश्रम और तकनीकी दक्षता काम करती है?

जी हाँ, हमारे इंजीनियर साथियों की आज की बात के क्रम में हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्स दिवस के बारे में। दोस्तों, ये दिन महान अभियंता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, और उन्होंने अपने ज्ञान, अनुशासन, दूरदृष्टि और राष्ट्र निर्माण की भावना से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अमिट योगदान दिया। दोस्तों, इंजीनियर केवल मशीनें या इमारतें बनाने वाला व्यक्ति नहीं होता। इंजीनियर वो होता है जो समस्याओं को पहचानता है, समाधान खोजता है और असंभव लगने वाली कल्पनाओं को संभव बनाता है। कभी बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाते हैं, कभी गांवों तक पानी पहुंचाने की योजना तैयार होती है, कभी किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण विकसित किए जाते हैं, तो कभी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी तैयार होती है। और इन सभी प्रयासों में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और युवा साथियों, आज का इंजीनियर्स दिवस हमें ये संदेश भी देता है कि तकनीकी ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए किया जाए। आज के इंजीनियर्स के सामने केवल निर्माण की चुनौती नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत विकास जैसी अनेक जिम्मेदारियां भी हैं। तो यदि आप में गणित, विज्ञान, तकनीकी और नई चीज़ें बनाने की जिज्ञासा है, तो इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए एक शानदार क्षेत्र हो सकता है। लेकिन याद रखिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए केवल डिग्री नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच, ईमानदारी, अनुशासन और मानवीय संवेदना भी आवश्यक है।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए सिकंदर ए आज़म फिल्म के इसी गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण पर, मुझे यानी अरविंद कुमार को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:59 और 51 सेकंड हुए। ठीक 6 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक

0: विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संध्या 6:15 पर किसान क्षमा करें श्रोता सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज ब्रजवार्ता प्रसारित की जाएगी। ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग, वार्ताकार होंगे अजय कुमार तेलंग। संध्या वंदन कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा संध्या 6:30। संध्या 6:50 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे सरसों की बुआई, पूर्व तैयारी और पशु पोषण में खनिज लवण। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, डेयरी उद्योग को लाभकारी कैसे बनाएं, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर विकास पाठक। साथ ही आनंद लेंगे आप कुछ ब्रज लोकगीतों का। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:15 पर। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे पद्मावत फिल्म के कुछ गाने। पब्लिक स्पीक रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 10 बजे ढोला गायन सुनिएगा, जिसमें कलाकार होंगे सुभाष चंद्र और साथी, और प्रसंग होंगे भंवर ताल की लड़ाई और किशन लाल का ब्याह। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत विदुषी मीनाक्षी वाजपेयी का सितार वादन।

रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी इस दूसरी सभा का।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिलाते, आज रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज की फिल्म होगी फिल्म पद्मावत।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम धवन की ये देशभक्ति परक रचना समवेत स्वरों में।

इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ब्रजवार्ता, ठाकुर की सेवा में भोग राग। वार्ताकार हैं अजय कुमार तैलंग।

ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग को महत्व। ठाकुर जी ब्रज मंडल में हमारे संप्रदाय के अनुसार ब्रज में ठाकुर जी की सेवा में भोग राग को नित्य क्रम होवे है। बल्लभ कुल संप्रदाय और ब्रज मंडल में ठाकुर जी की ब्रज भाव की सेवा होवे है। प्रभु के नित्य प्रतिदिन अष्ट साप की सेवा को क्रम बताया हुआ वह है। हमारे यहाँ प्रातकाल चार दर्शन सुबह और चार दर्शन शाम को क्रम अनुसार होवे हैं। प्रथम मंगला श्रृंगार ग्वाल और राजभोग की सेवा

ठाकुर जी की करी जावे है। तत्पश्चात सायंकाल उत्थापन भोग, संध्या आरती और सायंकाल शयन आरती को क्रम होवे। प्रभु की नित्य प्रतिदिन सेवा में अलग अलग दर्शन में ठाकुर जी को विभिन्न तरह के वस्त्र धराए जावे हैं, विभिन्न तरह की सामग्री भोग राग के द्वारा उनको आरोग्याई जावे है। ब्रज में सखा भाव की सेवा से प्रभु को नित्य प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोजन इत्यादि आरोग्याए जावे हैं। प्रथम मंगला में ठाकुर जी को घंटा ध्वनि करके शंखनाद करके उठाया जावे है। तत्पश्चात ठाकुर जी को मंगला में माखन मिश्री दूध और मंगलवक के ठौर भोग में आवे हैं। ता पीछे प्रभु के सिंगार में बेसन के नग थपड़ी आदि को भोग आवे है। दोपहर साय ठाकुर जी के क्रम अनुसार तृतीय दर्शन में ग्वाल भाव में प्रभु के मठरी मोहनतार पूरी साग को भोग आवे है। ठाकुर जी के प्रातकाल के चौथे दर्शन में राजभोग में प्रभु को राजा भाव से समस्त भोजन सकड़ी में दाल चावल खीर बांसौदी दही बड़ा रोटी पापड़ पूरी खाशा पूरी और विभिन्न तरह के साग प्रभु को भोग धराय जावे है। ठाकुर जी को प्रात कलेहू से खीर खाण माखन मिश्री भी धरे जावे है। हमारे यहाँ कहवे हैं कलेहू कीजे नंद लाल, खीर खाण और माखन मिश्री लीजे परम रसाल। ओठुओ दूध संग थोरी को तुम्हो देहूं गोपाल, बैनी भड़े होए बल्कि सी पीजे मेरे बाल गोपाल। ओहों बारी या बदन कमल पर चुम्बन देहूं गाल, गोविंद प्रभु कलेहू कियो जननी बचन प्रतिपाल। सांझ को प्रभु को ब्यारू कराई जामे ब्यारू में, कहवे हैं कि ब्यारू करत है घनश्याम। ब्यारू करत है घनश्याम मधुमेवा पकवान मिठाई पिस्ता दाख बदाम। धूत दूध भात खोवा वासौदी ले आई ब्रजधाम, आसकरण प्रभु मोहन नागर अंग अंग अभिराम। दूध पियो मन मोहन प्यारे, बलबल जाऊं गेहूं जिन कीजे कमल नैन अखियन के तारे। कनक कटोरा भर पीजे सुख दीजे संग लेहूं बलभद्र भैया रे, परमानंद मोही गोधन की सो उठता ही प्रात करो गैया रे। ब्रज में प्रभु की बाल स्वरूप की सेवा को बड़ा भारी महत्व बताया गया है। यहाँ प्रभु को नित्य प्रतिदिन लीला भाव की सेवा करी जावे है। हमारे बल्लभ संप्रदाय में प्रभु को बाल सेवा से भोग राग कराए जावे है। कहवे हैं राजभोग में माँ यशोदा अपने गोपाल को याद करे हैं और उनको राजभोग धरावे हैं। कहवे हैं देखो री गोपाल कहाँ गयो है खेलत, कहो जाए बाबा तो ही बोलत। भोजन को नंदराय तुमहु भोजन कर लेऊ आए, जब माता की जानी प्रीत आए गए गोपाल समीप। बैठे आए कनक आसन पर नंद राय पकरे कर सो कर, कनक बरन झारी जमुना जल भर दैनी जा समुति मन उज्ज्वल। पनवारो जोरो विस्तार थापर धारो कनक को थार, बेला मोटे छोटे धरे चमचा रत्न जड़ित तहा खरे। अगर धूप कीनो ताठोर हित सो प्रभु जी लीनो कोर, अधि सुगंध चावर को भात आन धरे हो जसुमती बात। ठांडी मूंग और दार बनाई ताके पास कढ़ी ले आई, माँ यशोदा भाव में प्रभु को राजभोग धरावे। ता पीछे झारी से प्रभु को आचमन करावे। राजभोग में ठाकुर जी को सकड़ी भाव की सेवा से
चांदी।

0: के थार में ठाकुर जी को दाल चावल पूरी साग बैठ के अपने हाथ से भोजन करावे हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी को आचमन करावे, मुख मार्जन करावे, बीड़ा धरावे, पान को बीड़ा होवे तो ठाकुर जी को पान को बीड़ा धरावे हैं। सायंकाल प्रभु को उत्थापन करके आवे सो प्रभु की संध्या आरती को क्रम होवे है। कहवे हैं, संध्या भोग है जाको नाम, सो तो लीनो वाई ठाम, नंद भुवन में ठाड़े आए, प्रभु दित भई जा सुमिति माए। अति हित सो आरती उतारी, कर्मे लिए कनक की धारी, भीतर भवन पधारे लाल, आए जुरी सब ब्रज की बाल। कोहे बड़े सिंगार करावे, कोहू तेल फुलेल लगावे, कोहू गर्दन मंजन करे, विविध मनोरथ मन में धरे। कोहू जल के स्नान करावे, अंग बसन करी अति सुख पावे, इच्छा भोजन करी सुख पायो, तब रानी आचमन करायो। अति सुगंध बीरी मुख धरी, पुष्पमाल श्री कंठ धरी, करी आरती श्री मुख देखयो, अपनो जन्म सफल कर लेव्यो। जा ठाकुर जी की सेवा में जो नित्य प्रतिदिन अपनी ठाकुर की बाल सेवा करे, उनको ब्रजमंडल में भोग राग की सेवा से जीवन उनको सफल होवे है। ब्रज में जाको बड़ो भारी महत्व है, ठाकुर जी की बाल सेवा को राग के अनुसार ही ठाकुर जी को भोजन आदि कराव जावे है। ठाकुर जी के सभी भोजन राग में कीर्तन आदि भी संग में होवे है, जासू ठाकुर जी की सेवा में कोई अड़चन नहीं आवे है। ठाकुर जी की सेवा में भोग राग को बड़ा भारी महत्व बताया गया है। ठाकुर जी के पल पल में हमसे दोष होवे हैं, ठाकुर जी को बार बार आज्ञा लेके उसको क्षमा प्रार्थी कहो जावे है। ठाकुर जी के ब्रज में ठाकुर जी की बाल सेवा के रूप में या प्रकार यह सेवा भोगराग को महत्व होवे है। ग्वाल बाल के संग में नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी विहार करे हैं और विहार करवे से ठाकुर जी जो है चारों ओर आनंद फैलावे हैं। या प्रकार जो नर नारी ठाकुर जी की सेवा में भोगराग की सेवा के अनुसार नित्य प्रतिदिन कार्य करे हैं, उनको जीवन सफल होवे है। यही प्रकार भोग राग को होवे है। जय श्री कृष्ण।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रजवार्ता, ब्रज की ठाकुर सेवा में भोग राग। वार्ताकार थे अजय कुमार तैलंग और अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये ब्रज लोकतान, स्वर है विनोद चतुर्वेदी का।

विनोद चतुर्वेदी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये ब्रज लोकतान, और इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या वंदन में ब्रजभूमि की पावन महिमा से ओतप्रोत ये भजन आपने सुना। फिल्म ब्रजभूमि के इस भजन को स्वर दिया है था रविंद्र जैन और साथियों ने, स्वर दिया है चंद्राणी मुखर्जी ने। तो आइए भक्ति के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आपने सुना चंद्रानी मुखर्जी के स्वर में फिल्म गोपाल कृष्ण का भजन, जिसमें मन की सरलता, निश्चलता और प्रभु के प्रति समर्पण का अत्यंत मधुर भाव उभर कर सामने आया। भक्ति का मार्ग मन को निर्मल करते हुए धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाता है जहां भक्त अपने आराध्य के प्रेम में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है। इसी भावभूमि को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं गीता रॉय की मधुर स्वर में फिल्म जोगन का ये प्रसिद्ध भजन। रचना मीराबाई की है, बुलो सिरानी का संगीत निर्देशन।

अभी आप सुन रहे थे जोगन फिल्म से गीता रॉय के स्वर में ये भजन, और अब सुनिए काला बाजार फिल्म से गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के युगल स्वरों में ये अंतिम रचना।

गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के स्वरों में काला बाजार फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र की ये भक्ति रचना। संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का था। इसी रचना के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय संध्या के 6:50 में हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं रूप किशोर शर्मा।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनो विवारे, सभी भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम। भैया मौसम का हाल तो आप जान ही रहे हो, अब इतनी गर्मी ना पड़ रही और गर्मी के संग ही संग दिन छोटे है रहे हैं और रात बड़ी है रही हैं। और भैया इन दिनान में हमारी खेती बाड़ी में काम काज फैल जाए करे, क्योंकि हमारी जो सरसों की बुवाई को समय नज़दीक होए, क्योंकि अगेती सरसों की बुवाई 20-23 सितंबर तक हमारे किसान भैया करो करें, पर सरसों बुवाई से पहले हमको कछु तैयारी करनी पड़ें। तैयारी के काजे भैया, जब हम अपनी सरसों की बुवाई करें तो सरसों की बुवाई बा खेत में अच्छी होए, जहाँ में बलुई दोमट या दोमट माटी होए, उस सबसे बढ़िया होवे और खेत में जल निकास अच्छा होए। सरसों के बीज बहुत छोटे छोटे होवें, जाके काजे हमको माटी को बिल्कुल भुरभुरी और अपने खेत को समतल करना चाहिए। बीजन को अंकुरण अच्छो है सके, जाके काजे हमको खेत की पहली जुटाई माटी पलटवे वाले हल जो हैरों क्यों करें बातें करनी चाहिए। पहली जुताई में जो हमारी पुरानी फसल के अवशेष हों, खरपतवार हों, वो सब नष्ट है जामें। वाके बाद फिर खेत में उचित नमी को देखते हुए कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करके वहाँ में मेज लगा दें। मेज लगावे के बाद 1-2 दिना पीछे नमी देखते हुए, मौसम देखते हुए और शाम के समय वहाँ में बुवाई करें। भैया सरसों की बुवाई के काजें हमें हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह, माटी की जांच के आधार पर उचित उर्वरक प्रबंधन करें। और भैया जब

0: बात को विशेष ध्यान रखें कि बीज प्रमाणित ही खरीदें और जा दुकान से बीज खरीदें, वापस बिल अवश्य लें, रसीद लें और बीज को उपचारित करके ही बाकी बुवाई करें। और जब बुवाई करें तो ये ध्यान रखें कि बुवाई करते समय पंक्ति ते पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा ते पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। इन सब सामान्य सी जो बात होएं, इन सब बातन को उपयोग हम अपनी सरसों की बुवाई में करेंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। और जब फसल अच्छी होगी तो भैया हमारे जो पशु हों उन पशुओं को भी खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके पोषण में खनिज लवण, इन सब बातों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संतुलित आहार शरीर के काजें बहुत ही जरूरी हुए, चाहे पशु हुए और चाहे मनुष्य। संतुलित आहार खिलाते शरीर स्वस्थ हुए और हष्ट पुष्ट हुए। भैया पशु पोषण में खनिज लवणन को बड़ो ही महत्व हुए, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस, जो हमारी पशुन की हड्डी और दांतन को मजबूत बनावे। खनिज लवण ते हमारे दुधारू पशुन में दूध की मात्रा व की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे और प्रजनन क्षमता में सुधार होवे, संग ही संग पशुन की पाचन शक्ति ठीक बनी रहे। खनिज लवण हमारे पशु पोषण के विकास, दुग्ध उत्पादन में मुख्य भूमिका निभावे। खनिज लवण को हम मिनरल मिक्सचर भी क्यों करें और भैया जा में हम सभी प्रकार के तत्वों को शामिल करो करें और या मिनरल मिक्सचर को बाजार में भी अनेक कंपनी के द्वारा बनाया जावे। और कहवे को आशय मारो जी है कि मिनरल मिक्सचर जो हम सामान्य अपने पशुन को खान पान रखो करें कि भैया दरिया बना दो, बरसी मिला दो, कि भूस की सानी दे दो, खर की बिनोरी की सानी दे दो, इन सब चीज़न ते हटकें जो हमारे पशुन की प्रमुख आवश्यकता होए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें खनिज लवण। तो ये तो चर्चा रही भैया पशु पोषण में खनिज लवण। और जब बात पशु पोषण में खनिज लवण की है और खनिज लवण ते का बढ़े दूध, पशु को शरीर स्वस्थ रहे, और जब बात दूध बढ़वे की चल रही है तो आज हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं, डेयरी उद्योग को लाभकारी कैसे बनाएं, जहाँ में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विकास पाठक और इनते बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। तो भैया सुनो जा भेंट वार्ता को।
1: किसान भाइयों, डेयरी उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। यह पशुपालन से जुड़ा एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसके वास्ते गाय भैंसों, बकरियों, कुछ एक अन्य प्रकार के पशुधन के विकास की भी बात की जाती है, तभी डेयरी उद्योग सफल हो सकेगा। तो इसी विषय को लेकर के आज हम अपने स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज का बातचीत का विषय है हमारा डेयरी उद्योग को लाभकारी कैसे बनाएं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय से हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास पाठक। डॉक्टर साहब का स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, डेयरी उद्योग कहें या डेयरी फार्मिंग कहें, ये क्या है, इसको किस तरह हम लोग इस पर बातचीत करेंगे?
2: डेयरी उद्योग आज की डेट में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि सभी भारत की जनसंख्या और सभी लोग दूध का सेवन करते हैं। दूध हमारी डाइट का एक अभिन्न अंग है जी। और बच्चे से लेके वृद्धों तक दूध जो है सभी इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त दूध की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है
1: जी,
2: वो भी

0: बहुत अच्छी मानी जाती है, इसे एक बैलेंस्ड फूड के रूप में जाना जाता है, तो इसकी आवश्यकता हमेशा बरकरार रहती है
1: जी, संपूर्ण संपूर्ण आहार या संपूर्ण फूड के रूप में इसको मान सकते हैं।
0: माना जा सकता है, और मतलब इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि बचपन में बच्चे के लिए आवश्यक है सबसे पहले, चाहे माता का दूध हो, उसके बाद गाय का दूध, भैंसों से दूध मिलता है, और वृद्ध अवस्था में भी, और खासकर नारियों के अंदर, मतलब ये दूध की आवश्यकता बहुत पड़ती है, हड्डियां हमारी स्वस्थ रहती हैं दूध से, तो इसलिए दूध का हमेशा से डिमांड रहती है।
1: जी
0: और दूध भारत आज की डेट में विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है,
1: जी
0: और फिर भी दूध जो है हमें मतलब कम पड़ता है, और अभी इसकी जो डिमांड है
1: जी
0: वो बहुत अधिक है। और
1: जी
0: इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये आ जाती है कि जैसे जैसे हमारी आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही दूध की डिमांड, दूध के पशु से बनने वाले सभी उत्पादों की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत अधिक हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपने जैसा कहा कि भारत में दुग्ध उत्पादन की स्थिति के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन अपने यहाँ पर होता है, और इससे बने हुए प्रोडक्ट की क्या स्थिति है, और प्रति जानवर क्या हमारे यहाँ उत्पादन की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी इस जोड़ते चलिएगा।
0: ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम बेशक आज की डेट में विश्व में नंबर एक दूध उत्पादक के रूप में उभर के आए हैं, लेकिन हमारे जो ये स्थिति है वो हमारे जानवरों की जनसंख्या के कारण है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है दूध की, जानवरों की, वो अभी भी काफ़ी कम है,
1: जी
0: जो कि बहुत ही कम है, और हमें बहुत ज़्यादा इस पे अभी प्रयास करने पड़ेंगे कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है।
1: जी तो डेयरी उद्योग को लाभकारी कैसे बनाएं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि दुग्ध उत्पादन बेहतर हो, प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़े।
0: सबसे पहले तो यह है कि हमारी जो जानवर हैं, दूध चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, हमें ऐसे जानवर रखने चाहिए जिनकी जो प्रोडक्शन है अधिक हो। और धीरे धीरे भारत सरकार कार्यरत है, स्टेट गवर्नमेंट भी कार्यरत है कि जानवरों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई
1: बढ़ाई
0: जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि किसान के जो जानवर हैं कितना दूध दे रहे हैं। अगर वो दूध ही कम देंगे
1: जी
0: तो उसको बेचना किसान के लिए और कठिन हो जाता है, क्योंकि यह भी एक स्थिति है कि दूध की प्रोडक्शन, वो अधिकतर दूध की प्रोडक्शन गांव में है
1: जी
0: और डिमांड जो है शहर में है, जबकि शहर में प्रोडक्शन नहीं है
1: जी
0: और
1: डिमांड
0: डिमांड
1: शहर
0: शहर।
1: में है।
0: तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो गांव में दूध प्रोडक्शन है और वो गांव में उसको बेचना बहुत मतलब कम कीमत मिलती है,
1: जी
0: इसलिए उनको जो दूध है शहर में आके बेचना पड़ता है। और हमारी कोऑपरेटिव है, भारत सरकार की भी कोऑपरेटिव हैं, ये कार्य कर रहे हैं इस चीज में। तो सबसे महत्वपूर्ण है दूध को इकट्ठा करना किसान
1: हाँ
0: से।
1: जी
0: दूध को आज की डेट में भी कई बिचौलिए जो है दूध को मतलब कि किसानों से कम पैसों पे खरीद के
1: जी
0: और बाजार में अधिक पैसों में देते हैं।
1: बेचते हैं।
0: तो सबसे पहले जानवरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, वो जानवर रखे जाएं जिनकी प्रोडक्शन बढ़िया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जानवरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बाद हमारा कलेक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे कलेक्शन सिस्टम पे जो बढ़िया होगा तो हम किसानों से मतलब कि दूध को इकट्ठा कर पाएंगे, किसान कम कीमत पे दूध बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक जगह के किसान, डेयरी फार्मर, वो एक समूह बना के भी अपने कोऑपरेटिव चला सकते हैं। डेयरी फार्मिंग एक ऐसी चीज है कि मेरा ये पर्सनल मानना है कि कम जानवरों से हम बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते,
1: जी
0: लेकिन अगर हम एक संगठन के रूप में कार्य करेंगे, किसान एक संगठन के रूप में कार्य करेंगे,

0: और उनकी जो प्रोडक्शन है अधिक हो जाएगी, क्योंकि सपोज कर लीजिए 50 किसान जुड़ जाते हैं, 100 किसान जुड़ जाते हैं, तो उनके पास एक भारी मात्रा में दूध होगा। वो दूध इकट्ठा करके आसपास के गांव से, वो क्योंकि दूध एक बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज भी है, खासकर मतलब गर्मियों में
1: जी
0: दूध आप देखते हैं 2 घंटे के अंदर ही फट जाता है।
1: जी ज्यादा समय नहीं
0: तो
1: रख सकते।
0: हाँ, इसलिए महत्वपूर्ण है कि दूध को कम से कम तापमान पर रखा जाए, और ये एक कहा जाता है कि 5 डिग्री से तापमान कम होना चाहिए दूध को, जब तक कि प्रोसेस ना कर दिया जाए या उसका प्रसंस्करण ना कर दिया जाए।
1: जी
0: तो उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, और किसान जब कोऑपरेटिव बना के दूध को ज्यादा मात्रा में रखेंगे तो वो इसके विभिन्न प्रोडक्ट बना पाएंगे। और जो वैल्यू एडिशन हम कह देते हैं,
1: जी
0: प्रोडक्ट से बहुत जो आय है उसकी वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात, हमारे साथ एक चीज और समस्या ये है कि जो दूध है, दूध से बनाए हुए प्रोडक्ट काफी अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन एक शब्द होता है बाई प्रोडक्ट।
1: जी
0: बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्रीम निकालते हैं,
1: हाँ
0: क्रीम बेच के तभी मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। क्रीम तभी बेच के मुनाफा कमाया सकते हैं जब उसके साथ आप सेपरेटा दूध या स्किम मिल्क बेचा जाए। और दूध की, स्किम मिल्क की भी डिमांड काफी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सभी लोग जो
1: बीमारियों से
0: हैं
1: ग्रसित हैं।
0: बीमारियों से ग्रसित हैं, और दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह
1: जी
0: हाई, तो लोग जो है कम सेवन
1: लो
0: का
1: फैट
0: प्रोडक्ट,
1: वाला दूध लेना ज्यादा
0: हाँ,
1: पसंद करते
0: तो
1: हैं।
0: वो उसकी डिमांड भी बहुत अधिक है। और कंपनियां भी निकालती हैं, डबल टोन दूध निकालते हैं, सिंगल टोन दूध निकालते हैं,
1: जी
0: स्किम्ड मिल्क भी निकालते हैं जिसमें फैट पूरा रिमूव हो गया हो।
1: अच्छा
0: तो उस तरीके से जैसे पनीर बना रहे हैं, पनीर बनाएंगे तो हम पूरे दूध का पनीर बनाते हैं, तो ये फैट अधिक हो जाता है। तो हम उसमें से कुछ फैट को यूज कर सकते हैं अलग से निकाल के, या जो उसमें से छाछ निकलती है
1: जी
0: वो छाछ का प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा हो, तभी ये उद्योग जो है
1: आगे बढ़ सकता
0: आगे
1: है
0: बढ़ सकता है।
1: और लाभकारी
0: सबसे
1: बन
0: पहले
1: सकता है।
0: तो मतलब वही मैं कहूंगा जो मेरा मानना है कि संगठन बनाना बहुत अधिक है, और इसकी चिलिंग की फैसिलिटी, आजकल बल्क कूलर आते हैं, चिलिंग प्लांट्स आते हैं, बड़े सस्ते आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते,
1: जी
0: तो उनको आप एक जगह पे रख सकते हैं, और किसानों को मतलब सीधा जो कोऑपरेटिव्स हैं हमारे स्टेट में उपलब्ध, उनसे बात करनी चाहिए, या और भी अमूल वगैरह हो गए, तो वो मतलब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह पे है। जैसे हमारा क्षेत्र है वो मतलब दिल्ली के बहुत पास
1: नजदीक
0: लगता
1: में
0: है, दिल्ली की डिमांड को भी हम केटर करते हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा दूध की क्वालिटी अच्छी हो, दूध की प्रोसेसिंग हो जाए, दूध का तापमान ना बढ़े, और दूध तभी मतलब कि स्थिर रह सकता है अगर हम इन चीजों की क्या कहते हैं लापरवाही नहीं करेंगे। तो
1: तो क्वालिटी अच्छी क्या होनी चाहिए दूध की?
0: दूध की क्वालिटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आज की डेट में प्रश्न है कि दूध में आपको पता है एडल्ट्रेशन बहुत होती है,
1: जी
0: सबसे ज्यादा इसमें लोग पानी मिलाते हैं, पानी के अलावा कई लोग इसमें सोडा डाल देते हैं।
1: जी
0: सोडा इसलिए डालते हैं कि दूध अगर कम तापमान पे नहीं रखा तो वो दूध फट जाता है, जब उसमें हम सोडा डाल देते हैं तो वो दूध नहीं फटता। तो ये कई लोग इसका सोडे का इस्तेमाल करते हैं और वो तापमान में कम नहीं रखते, तो उससे दूध फटेगा नहीं, और हम लेकिन उसकी क्वालिटी तो खराब हो ही चुकी है।
1: जी
0: और दूसरी चीज है कि कहीं भी हम कोऑपरेटिव को देते हैं, या आपने देखा होगा हलवाई भी अगर दूध खरीदते हैं तो उसका खोया या पनीर बना के
1: हाँ
0: देते
1: बना
0: हैं,
1: करके देखते हैं
0: तो
1: उसका।
0: वो यही देखते हैं कि इसमें टोटल सॉलिड कितने
1: जी
0: पड़े हैं। और एक और मैं आपको बताऊंगा, आज की रेट में यह भी एक प्रचलन चल गया है कि ऑर्गेनिक मिल्क जिसको कहते हैं, या
1: जी
0: नेचुरल मिल्क कह देते हैं।
1: जी
0: अगर आप देखेंगे गुड़गांव और दिल्ली के आसपास कई ऐसी दूध प्रोसेसिंग वाली कंपनियां हैं जो एक पॉपुलेशन को टारगेट करती हैं, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसको कैसे हम लाभकारी बनाएं। तो आप कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि पशु पालन उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण है पशु प्रबंधन।
1: जी
0: अगर आपका प्रबंधन

0: बढ़िया है, स्वच्छता है, तो पशु के बीमार होने के संभावना काफी कम रहती है।
1: डॉक्टर साहब, आपने जो कहा ना दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें, ये पशुओं पर दवाइयों का इस्तेमाल करना है या पशु चारे के ऊपर दवाइयों का इस्तेमाल कम करने की बात कर रहे हैं आप?
0: देखिए, सबसे पहले दो चीजें, पहले तो दवाइयों का इस्तेमाल जो है, अगर पशु बीमार हो गया तो
1: हाँ,
0: उसे एंटीबायोटिक लगेगी, उसे दवाइयां देनी
1: देनी
0: पड़ेंगी।
1: पड़ेंगी।
0: अगर आपने स्वच्छता मेंटेन कर रखी है और प्रॉपर उसका टीकाकरण है, या ऐसे जोन में रखा हुआ है जहां पे वो बीमारी नहीं है, क्योंकि कई जगह में, मतलब आज की डेट में जैसे FMD एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो जहां पे वो बीमारी नहीं है, या तो वो हो या उनका प्रॉपर टीकाकरण हो, ऑर्गेनिक की बात नहीं करते हम,
1: जी
0: और कम से कम मतलब उनको दवाइयों को मतलब इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात है फीड की बात करते हैं हम, अगर जो जानवर का चारा है, आज की डेट में आपको पता है कि बहुत अधिक क्या कहते हैं, यूरिया भी मिलाते हैं, पेस्टिसाइड भी मिला देते
1: जी
0: हैं, तो इनका भी इस्तेमाल जो होता है। और एक आपको और यह भी देखने वाली बात है कि जो ये चारे में या पेड़ पौधों में इंसेक्टिसाइड और इसका यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो वो दूध में उसका लेवल और अधिक हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है।
1: जी
0: तो आपने देखा होगा कई किसान भी ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी जो खेती करते हैं घर के लिए, उसमें ना यूरिया डालते हैं ना कुछ डालते हैं, तो उसको कम करना पड़ेगा, मतलब मिनिमाइज करना पड़ेगा यूज को। और आप एक टारगेट को लेके चलोगे तो दूध आज की डेट में बड़े शहरों में 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक मतलब बहुत कंफर्टेबली
1: गुणवत्ता,
0: बिकता है।
1: हाँ बिकता है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाला दूध
0: हाँ,
1: होगा।
0: गुणवत्ता का दूध होना चाहिए, वो पॉपुलेशन है।
1: एक सर गायों की बात होती है, देसी गाय है, जर्सी गाय है, उनके दूध में भी कोई फर्क होता है क्या?
0: देखिए जी, कई ये भी बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपने विगत वर्षों में सुना होगा A1 मिल्क, A2 मिल्क,
1: जी
0: देसी गाय, विदेशी गाय, ये काफी प्रचलन उठा, और इस पे ये उठा था न्यूजीलैंड से। बेसिकली
1: अच्छा
0: न्यूजीलैंड ने एक कंपनी ने इसे उठाया गया, और उन्होंने कहा कि A2 दूध जो है वो बेहतर है। तो फिर यहाँ पे जैसे NDRI करनाल है हमारे यहाँ भी, तो इस पे काफ़ी मतलब शोध किया गया, और इसमें बहुत ज़्यादा अधिक फर्क नहीं है कि A1 और A2 सिर्फ प्रोटीन का एक फर्क है। तो अभी तक मतलब उसकी सुपीरियोरिटी जो A2 की है वो बेहतर माना जाए A1 से, ऐसा मतलब पूरे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। महत्वपूर्ण है कि गाय की प्रोडक्टिविटी अधिक हो। अगर 2 लीटर गाय के दूध दे रही है, 3 लीटर दे रही है, 4 लीटर दूध दे रही है, तो हम उससे फायदा कैसे उठाएंगे? आज की डेट में मिनिमम कम से कम 200 से लेकर 300 रुपए तक तो सिर्फ फीड पे खर्चा है। प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है चाहे हमारे, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ये भी तरीके हैं कि जो हमारे देसी जानवर हैं उनमें से अच्छे जो बुल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए उनके, क्योंकि AI बड़ी कॉमन हो गई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन
1: जी
0: जो है वो काफ़ी कॉमन हो गई है, तो हम उनकी जो है ब्रीड की अपग्रेडेशन कर सकते हैं,
1: जी
0: लेकिन उसमें समय लगेगा। तो हमें ऐसे जानवर चाहिए जिनकी प्रोडक्टिविटी, जैसे हमने जर्सी की बात की, जर्सी भी बहुत अधिक दूध नहीं देती है। जर्सी विदेशी गाय तो है, लेकिन उसमें उसका बस ये है कि उसमें फैट कंटेंट बहुत अधिक होता है जर्सी के दूध में। ज़्यादातर आप देखोगे कमर्शियल फार्म जो है उन्होंने HF रखी हुई है, फर्स्ट इन फ्रीजन, तो उसमें फैट की मात्रा तो बेशक कम होती है, और इनके मानक होते हैं बेसिकली, गाय और भैंस के दूध के अलग अलग मानक है फैट और SNF के रूप में, 3.5% फैट और 8.5% SNF, और भैंस के दूध में 6%, मतलब बाकी जगह तो 5 और 9 है, 5% फैट और 9% SNF, लेकिन हमारे यूपी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 6% फैट और 9%, तो उन मानकों पे भी उतना आवश्यक है, क्योंकि अगर आज की डेट में आप गाय या भैंस का दूध बोल के बेचते हो और उनके मानक पूरे नहीं होते, तो भी मतलब यह एक प्रश्न चिन्ह है, और इस पे सरकार कार्रवाई भी कर सकती है।
1: जी तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बताया कि डेयरी उद्योग को हम लाभकारी कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि प्रति पशु की उत्पादकता,

0: को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें अच्छी नस्ल के पशुओं की ज़रूरत पड़ेगी और तमाम तरह की उनकी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह के उन पर रोग वगैरह ना आए। और हो सके तो हमें प्रयास करने चाहिए कि ऑर्गेनिक दुग्ध उत्पादन की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि आपको रेट, दूध का जो रेट है वो अच्छा मिल सके। दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और तभी आपको उसके दूध के रेट मिल सकेंगे। तो डेयरी उद्योग काफ़ी बड़ा उद्योग है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये भी बात कही डॉक्टर साहब ने कि चूँकि हमारे जो दुग्ध उत्पादक भाई हैं, ग्रामीण भाई हैं विशेष करके, और उसमें भी सीमांत कृषक हैं या भूमिहीन कृषक हैं जो कि थोड़ा थोड़ा दुग्ध उत्पादन करते हैं, एक एक दो दो चार चार भैंस रखते हैं, उसके लिए एक कोऑपरेटिव के रूप में, एक समूह के रूप में आपको अपने यहाँ विकसित करना पड़ेगा, एक कलेक्शन सेंटर बनाना पड़ेगा दूध का। और वो दूध या तो बड़े शहरों में जाए या उसके जो बायो प्रोडक्ट बन करके उसका इस्तेमाल करना होगा, तभी हम डेयरी उद्योग को लाभकारी बना सकते हैं और जिससे कि आपकी आय में वृद्धि हो सकेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी अपने हमारे श्रोताओं के संग शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

आलू की अगेती किस्म जैसे कुफरी चंद्रमुखी तथा कुफरी अशोका की बुवाई प्रारंभ कर सकें। बुवाई के 7 से 10 दिन पहले शीत भंडार से आलू के बीज को बाहर निकाल लें। कोल्ड स्टोर में जो भंडारित बीज होए वामे यदि अंकुर निकल आए हों तो उनको छांट के अलग कर दें और कोल्ड स्टोर में भंडारण करवे ते पहले आलू के बीज को उपचारित अगर तुमने न किए गए होए तो आलू को कोल्ड ते निकाल के छांटवे के बाद आलू के कंद को बोरिक एसिड के 3% घोल ते 30 मिनट तक उपचारित करके बाकू छायादार स्थान में सुखाए के तब बाकी बुवाई करें। जिन भैया ने तिल की फसल लगाए रखी है, तिल की फसल में पत्ती और फली की सूढ़ी कीट को प्रकोप आपको दिखाई देवी की संभावना है तो बाकी रोकथाम के काजें ऑक्सीडिमेटान मिथाइल 50% ईशी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में वाको घोल बनाए के साफ मौसम में छिड़काव कर दें। और भैया अब बता दें आज को तापमान, तो आज को जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। और यही के संग ही संग आज को ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब संपन्न हुए। सब भैया बहनान को रूप किशोर की राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: किधर है?
1: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदल
1: और बाकी चेंजेस,
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: आरबीआई कहता है,
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5,00,000 रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया ऐलान। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट की। संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह की शिरकत। कहा, संवैधानिक संस्था में नागरिकों का विश्वास है लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर में सजाए गए भव्य पंडाल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5,00,000 रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। इसका लाभ हाईकोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने 400 राज्य विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट देने की भी घोषणा की।
5: आधुनिक तकनीक आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि उन्हें जानकारी मिल सके कि कौन से शासन से जुड़े हुए मामले माननीय न्यायालय के पास आ रहे हैं, इसके लिए 400 ऐसे राज्य विधि अधिकारियों को हम लोग टैबलेट की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो यहाँ पे सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सभी अधिवक्ताओं को हम लोग कैशलेस की 5,00,000 रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा भी उपलब्ध करवाने के लिए यह भी हम आज यहां पे घोषणा कर रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवैधानिक संस्थाओं में सामान्य नागरिक का विश्वास है। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास और गौरव की अनुभूति करे, यही लोकतंत्र की कसौटी है।
6: लोकतंत्र के जो सबसे बड़ी ताकत है वह किसी भी संवैधानिक संस्था में एक सामान्य नागरिक का विश्वास। गुड गवर्नेंस एक पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं पर उसी विश्वास के साथ गौरव की अनुभूति कर सके।
4: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में 33 जनपदों के निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी सुपरवाइजरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी मौजूद रहे। कार्यशाला में अधिकारियों को ईवीएम की

0: से लेकर मॉक पोल और एफएलसी की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
1: इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि अब यहाँ से जाने के बाद कुछ ही दिनों में इन जिलों में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं जिससे चुनाव होता है उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी शुरू हो रही है। फर्स्ट लेवल चेकिंग पहला कदम है चुनाव की तैयारी का, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का सवाल है। एक एक मशीन का, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो या वीवीपैट हो, विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निकली देखा जाएगा, सारे पैरामीटर्स सही है कि नहीं।
0: प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की अध्यक्षता में आज जौनपुर में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल के दौरान किए गए जन कल्याणकारी कार्यों, नीतिगत सुधार का विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना है।
2: जो व्यक्तिगत लाभार्थी वाली योजनाएं हैं उनका, आज इसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, अनाथ आश्रमों की सेवा है, गौशालाओं की सेवा है, ऐसे तमाम जो हमारे समाज के ऐसे वर्ग हैं जिनकी सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए, उन तक पहुंचने का भी पूरे अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: उधर वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांग जोशी ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा। यात्रा के दौरान वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, लाभार्थियों से संवाद, अस्पतालों में फल वितरण, पोषण किट वितरण और क्षय रोग उन्मूलन से जुड़े सेवा कार्य किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने भारत आई युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: युगांडा के उपराष्ट्रपति के आगरा पहुंचने पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युगांडा की उपराष्ट्रपति ताजमहल परिसर पहुंची, जहां उन्होंने स्मारक की खूबसूरती को निहारा और डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। इस दौरान गाइड ने उपराष्ट्रपति को ताजमहल के इतिहास, स्थापित कला और संगमरमर पर की गई बारीकी पच्चीकारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने ताजमहल की खूबसूरती और स्थापित कला की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति के आगरा दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी।
0: हिंदी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुनीश कुमार ने हिंदी के महत्व और वर्तमान में उसके प्रयोग पर जानकारी साझा की। संगोष्ठी में आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख सुमोना एस पांडे उपस्थित रहीं। हरहाल का तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए व्रत रख रही हैं। हमीरपुर में कजरी तीज पर

0: पर सुमेरपुर कस्बे में 176 वर्ष प्राचीन तीजा मेले का शुभारंभ मनमोहक झांकियां निकालकर किया गया। गणेश चतुर्थी के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की है। वहीं गणेश चतुर्थी पर विभिन्न जनपदों में भव्य पंडाल सजाए गए हैं। इन पंडालों में भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों की स्थापना की गई है। प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 14 और 15 सितंबर को कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस चिकित्सा सुविधा का किया ऐलान। 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने की भी की घोषणा। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन के स्वर्ण जयंती समारोह में की शिरकत। कहा, संवैधानिक संस्था में नागरिकों का विश्वास है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका रोज एपल अलूपो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की खूबसूरती और स्थापत्य कला को सराहा। और श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है हरतालिका तीज का पर्व। गणेश चतुर्थी पर प्रदेश भर में सजाए गए भव्य पंडाल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत?
1: पता है कौन दे रहा है,
2: ब्याज कितना है?
1: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
2: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
6: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी। शाम सुहानी प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। श्रोतो, शाम का ये सुहाना वक्त, दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ पल ठहरने का वक्त, और इन्हीं खूबसूरत पलों में अगर किसी अपने की पसंद का कोई मनपसंद गीत सुनाई दे तो शाम की रंगत ही कुछ और हो जाती है। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर अरविंद कुमार, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से आपका अपना लोकप्रिय फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। श्रोताओं, आपकी भेजी हुई व्हाट्सएप फरमाइशें ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। किसी ने अपने खास दोस्त के नाम गीत भेजा है तो किसी श्रोता ने अपने जीवन साथी के लिए, कोई गीत बीते दिनों के खूबसूरत यादों को फिर से ताजा कर देता है तो कोई गीत दिल की अनकही बात कह जाता है। तो आइए आज की इस शाम को और भी खुशनुमा बनाते हैं। आपकी फरमाइश, आपकी पसंद और आपकी भावनाओं को अपने साथ लेकर बढ़ते हैं शाम सुहानी की इस संगीत यात्रा पर। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हो सकता है अगला गीत आपके नाम, आपकी फरमाइश पर हो और आपकी किसी खूबसूरत याद को आवाज दे रहा हो, हो सकता है। तो चलिए संगीत की पहली कड़ी से शुरुआत करते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में पारसमणि फिल्म के इस गीत के साथ।

मेरा देवी सोनाली विश्वकर्मा सोनम और आशीष विश्वकर्मा, शेख चांद, शेख अदनान, शेख नुमान जाकिया और इनके परिवारीजन बीड शहर महाराष्ट्र से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर और डॉक्टर अमंती, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज कालका से, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और इनके परिवारीजन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी सौरभ और शाइना शर्मा, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले, मोतेरा महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती और ओम कुमार सुरलकर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश, राजीव, संजय, ओम कुमार कुंजेश, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, श्वेता, रजनीश, आनंद, आशुतोष, अमिताभ कुमार, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना चाहिए, बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े और विशाल वानखेड़े, राज गवई, राजवीर गवई, मोतेरा महाराष्ट्र से, बीड शहर से किशन, सबकाल आशा, सबकाल सोनिया और विशाल, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजिल भाटिया, सोनू और पप्पी, तमन्ना इनके साथ, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और डीकेश कुमार, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित और राहु इनके परिवारीजन, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, शिगांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस और लोकेश काले, नवाशहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, प्रीतिशा, सुरेश ग्रोवर और बेबी ग्रोवर और मैक्स, बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खुदाबख्श, रामदेवरा से दिनेश चौहान, नेत्रहीन, डांगरी से बाबू राम जयपाल और अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्र, रुचिक और इनके परिवारीजन। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सुर और शब्द नहीं होते बल्कि किसी रिश्ते की पूरी दुनिया सिमटी होती है, सुहाग, प्रेम और जीवन साथी के साथ, जीवन भर के साथ का विश्वास। इन भावनाओं को बहुत खूबसूरती से अपने भीतर समेटे हुए है कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का गीत। अजद भोपाली की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, सुरेश जायसवाल और रिमिला दीपक स्वाति और इनके परिवारजनों का। नरवेल महाराष्ट्र से पीए सुनवानकर, निर्मला विशाल, नारायण इंगले, सोपान तायडी और आशीष मुर्रेकर। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा।

लता मंगेशकर, आशु भोसले और साथियों की आवाजों में मांग भरो सजना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गांव गोपी की नगरिया मथुरा से मिठन लाल, सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा का संदेश में प्राप्त हुआ है। गांव नगला पोला से विजय सिंह, पवन, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, भोला, करण, नमन, अनुराधा और इनके परिवारजन। गांव नौधरा मथुरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज और इनके परिवारजन जुड़े हुए हैं इसी संदेश में। और गांव कमोद वन से मथुरा के श्रोता हैं सुनील, गव्वर, रचना और इनके मम्मी पापा। पुरानी बागपत से इलियास मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी और बाबा जेत कुरैशी। पैंठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद, आरती और सिया जाधव। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नू लाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अनंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और श्रव्या रामटेके। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, प्रतीक, रोशनी और प्रांचल। पंजाब के श्रोता हैं वर्णिंग खेड़ा से, उन्होंने संदेश भेजा है। मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णो, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांकी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, निषाद, प्रकाश, निषाद, बल्लू, निषाद, तरुण और श्रीनिका, श्रीनी जैन के साथ हैं। चंपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मेरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मेरी। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी तानिया नारंग, मजनू का टिल्ला।

दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। खंडवा मध्य प्रदेश से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी कामेश्वर, भारती यादव।

बक्सर के श्रोता मंजू गुप्ता, पूनम, कविता, संजना और सभी गुप्ता, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, श्रोताओं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। बस एक आवाज, एक धुन और एक गीत ही दिल की पूरी बात कह जाता है। और जब बात हो किसी ऐसे साथी की जो सुख दुख की हर राह में हमारे साथ रहा हो, तो दिल से बस यही आवाज निकलती है, ओ साथी रे।

आशु भोसले की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मुजफ्फरपुर बिहार से इस गीत को सुनना चाहा था आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठ्ठल सुरोशी, सुषमा परिधि और मायरा। असालतपुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, बिलाल अंसारी, जुबैद अंसारी, तनवीर आलम अंसारी। कविता मानसी और इनके परिवारजन दिल्ली के श्रोता हैं। उमाली से अनूप कुमार, उद्धव पाटिल। पलसी से वीएस नानकर, शेख कुगार, जयश्री। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, राहुल खुराना, रजिता किशोरी धान खुराना, पंचकुला चंडीगढ़ से। बलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। बिजनौर शहर के श्रोता हैं गुलाम हसन, निषाद बानो, साबिरा खातून, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, नजमीन परवीन, शाहजाती, शराफत अली। और इन श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपके नाम कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम है। आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन।

0: श्रोताओं, अब वक्त होता चला है आज की शाम सुहानी से विदा लेने का। लेकिन इससे पहले हम बताते हैं, जो गीत आपने सुना उसमें आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। आपकी फरमाइशें, आपके संदेश और आपके पसंदीदा गीत हैं इस कार्यक्रम की खूबसूरती हैं। उम्मीद है आज की संगीत यात्रा ने आपकी शाम को कुछ और सुरीला बनाया होगा। इसी वायदे के साथ कि फिर मिलेंगे आपकी नई फरमाइशें और नई संगीत यादों के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर अरविंद कुमार को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी दिवस के उपलक्ष में आयोजित कवि गोष्ठी, जिसमें प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, उमा शंकर राही, नीतू गोस्वामी, जितेंद्र सिंह विमल और दीपचंद वर्मा। कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र सिंह विमल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं ओम प्रकाश सिंह।
1: मित्रों नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम राजभाषा हिंदी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को जब देश आज़ाद हो गया, तो बहुत सारे प्रतीकों की, बहुत सारी संज्ञाओं की और बहुत सारे विधानों की और संस्थाओं की आवश्यकता हुई। ऐसा हम मानते हैं कि उस समय के जो सुधी लोग रहे तो उन्होंने सोचा होगा कि राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। तो उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के लिए अगर कोई भाषा हो सकती है तो वो हिंदी ही है। राष्ट्रभाषा तो हम सब की भावना है हिंदी, लेकिन हम उसको राजभाषा के रूप में मान्यता देते हैं। जो लिखा गया है, जो पढ़ा गया है, वो राजभाषा हिंदी का आज हम दिवस 14 सितंबर मनाने जा रहे हैं। आकाशवाणी के इस परिवार के साथ आज के हमारे जो कवि लोग हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में माना गया है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती माँ के चित्र पर माल्यार्पण करके करते हैं और दीप प्रज्वलन के साथ, तो मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत में निवेदन करता हूं हमारे केंद्राध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी और हमारे आज की इस कवि गोष्ठी में आए हुए सभी वरिष्ठ कविगण, जिसमें डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी, डॉक्टर उमाशंकर पारासरी जी, हमारे दीपचंद वर्मा जी रिफाइनरी से हैं, तो विज्ञान के शोधार्थी लेकिन विद्यार्थी हिंदी के हैं, साहित्य के हैं, और हमारा डॉक्टर नीतू गोस्वामी और छोटा भाई जितेंद्र विमल। इसके साथ साथ हमारे परिवार के सभी साथीगण और हमारे कुछ वरिष्ठ साथी भी आए हैं। नौलखा जी का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं कि आज के परिवार में आए हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी मिलकर के मना रहे हैं, तो हमारे दूरदर्शन की जो कमान संभाल रहे हैं सत्र सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं और आमंत्रित करता हूं कि एक एक करके माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करें और पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्री वेद प्रकाश जी और सभी कवि साथियों का। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे मैं आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी

0: पीजीएफ के प्रभारी भाई सत्वर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आमंत्रित हमारे जो कविगण हैं उन सब का पटका पहना करके स्वागत करें सर। सबसे पहले डॉक्टर रमाशंकर पांडे, डॉक्टर उमाशंकर पारासरी, श्री दीपचंद वर्मा जी, भाई जितेंद्र बिमल, मैडम अफसा अंसारी से मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ हो उससे पहले मैं केंद्र के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी कविगणों का स्वागत करके हमको अनुग्रहित कर
1: इस कार्यक्रम में पधारे हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सभी कविगण और अधिकारीगण, आज के इस पावन पर्व पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी जैसी हमारी राजभाषा, कामकाज की भाषा और सबसे बड़ी जन जन की भाषा है। इस समय पर कुछ हमारे डिपार्टमेंट के और कुछ केंद्र सरकार के बड़े लोगों ने हिंदी के बारे में कुछ दो शब्द कहे हैं, तो कवि गोष्ठी शुरू हो कि हिंदी दिवस पर आज हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने क्या कहा है हिंदी को लेकर के। आप कहते हैं कि हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं। उन्होंने भारत की भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा है कि अलग अलग भारतीय भाषाएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी साझा विरासत और शक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्येक भाषा अपने साथ सदियों का इतिहास, लोक परंपराएं और दुनिया को देखने की एक अलग नज़रिया लेकर के चलती है। यही विविधता देश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है और नई पीढ़ी के संस्कारों को आकार देती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने लिखा है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान की सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की भाषाई विविधता हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के अनुरूप अन्य भारतीय भाषाओं के समृद्ध योगदान को आत्मसात करते हुए हिंदी का विकास करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। प्रसार भारती के CEO जो गौरव द्विवेदी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लें। साथ ही कार्यालय में ई ऑफिस के माध्यम से पत्राचार, टिप्पणियां, प्रतिवेदनों तथा अन्य कार्यों में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें। आइए हम सभी मिलकर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सरल, प्रभावी और जन सुलभ बनाने का संकल्प लें तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को और अधिक सशक्त करें। इस कड़ी में अंत में जो हमारे महानिदेशक हैं राजीव कुमार जैन जी, आप लिखते हैं कि आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आकाशवाणी के लिए राजभाषा हिंदी महज एक भाषा नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों से संवाद का माध्यम है, भावनाओं को जोड़ने वाली शक्ति है और हमारी कार्य संस्कृति की पहचान है। हमारे समाचार, कार्यक्रम आदि विचार, ज्ञान और अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं और इन्हें जन जन तक पहुँचाने में राजभाषा की अग्रणी भूमिका रही है। आवश्यकता है कि जिस राजभाषा को हम प्रसारण के माध्यम से सम्मान देते हैं उसी राजभाषा को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में भी सम्मान और स्थान दें। राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल नियमों का पालन नहीं अपितु यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी, हमारी कार्यनिष्ठा और हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का भी परिचायक है। आइए हम सब मिलकर ऐसी कार्य संस्कृति का निर्माण करें जहाँ राजभाषा हिंदी का प्रयोग औपचारिकता बस नहीं बल्कि स्वाभाविकता, आत्मविश्वास और गर्व से हो। हम राजभाषा का सम्मान करें, राजभाषा में कार्य करें और राजभाषा की शक्ति को नई ऊंचाई और स्थान प्रदान करें। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कविगोष्ठी में मैं आमंत्रित करता हूं

0: भाई जितेंद्र बिमल जी को, और माइक भी उन्हीं को देता हूँ।
1: मथुरा वृंदावन आकाशवाणी की ओर से आइएगा, हमारे श्रोता आज सुने एक सरस काव्य गोष्ठी जो हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आप तक पहुंचना चाहती है। आज की इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी। आप पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग किशोरी रमण महाविद्यालय मथुरा में रहे। हमारे दूसरे कवि साथी हैं डॉक्टर उमा शंकर राही जी, आप वात्सल्य ग्राम में सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ एक और माँ वाणी के वरद पुत्र हैं श्री दीप चंद जी वर्मा, आप महाप्रबंधक सूचना प्रणाली इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा से संबंध रखते हैं। बहन डॉक्टर नीतू गोस्वामी, आप गायत्री तपोभूमि में संपादन का कार्य देख रही हैं। और आज की इस काव्य गोष्ठी का संचालन दायित्व निभा रहा हूं मैं, आपका अपना जितेंद्र सिंह विमल। तो बंधुओं, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कविता की पहली प्रस्तुति आप तक पहुंचवाना चाहता हूं। माँ बागेश्वरी की बेटी जो है वही उस कविता का प्रारंभ करें, इस मनोवांछा के साथ मैं सबसे पहले आवाज़ दे रहा हूं बहन डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी को, वे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें।
2: हम सब की अभिव्यक्ति का आधार है हिंदी।
1: वाह
2: हम
1: वाह
2: सब

राजभाषा भारत की पद पर ये आसीन है, राजभाषा भारत की पद पर ये आसीन है, स्वयं में प्रखर है कहीं भी नहीं दीन है, स्वयं में प्रखर है कहीं भी नहीं दीन है, भारत की निज थाती, भारत की निज

इकतालीस व्यंजन अच्छा चार संयुक्त हैं, जैसा जिसका उच्चारण वैसे ही प्रयुक्त है, जैसे जिसका

0: निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। भाषाएं हैं मासी मगर हिंदी है माँ मेरी, भाषाएं हैं मासी मगर हिंदी है माँ मेरी, कविता कहानियों में अटकती है जा मेरी,
1: क्या
0: मेरी
1: बात।
0: नहीं औकात में एक शब्द भी लिखूं, माँ शारदे की हाँ में ही शामिल है हाँ मेरी,
2: बहुत
0: माँ
2: सुंदर,
0: मा
2: बहुत खूब,
0: शारदे
2: बहुत
0: की हाँ में ही
2: सुंदर।
0: शामिल है हाँ मेरी। तो माँ बागेश्वरी हम पर कृपा करती हैं तो कुछ आप तक पहुंच जाता है। आइएगा दूसरे कवि स्वर के रूप में आप तक पहुंचना चाहते हैं आपके अपने श्री दीप चंद वर्मा जी। आप इंडियन ऑयल रिफाइनरी से संबंध रखते हैं और कविताओं में ईश्वर कृपा से दखल रखते हैं, आप तक पहुंचेंगे।
2: नमस्कार, सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले चार लाइनें माँ भारती के चरणों में समर्पित करता हूं।
0: स्वागत स्वागत।
2: संस्कृत की प्यारी सी बिटिया
0: आहा,
2: सोंधे साहित्य की खान है।
1: वाह, क्या बात।
2: संस्कृत की प्यारी सी बिटिया सोंधे साहित्य की खान है, सूर कबीर मीरा तुलसी की वाणी का अभिमान है, और
0: वाह,
2: सरल सरस सहज सर्वव्यापी यह भारत की शान है।
1: क्या बात,
2: राष्ट्र एकता प्रगति
1: बहुत
2: वाहक,
1: शुक्र,
2: माँ हिंदी बड़ी महान है।
0: वाह
2: माँ
0: वाह
2: हिंदी बड़ी
0: वाह,
2: महान
0: माँ
2: है।
0: हिंदी बड़ी
2: और
0: महान
2: इसी
0: है।
2: में दो लाइन आह्वान की है कि वट वृक्ष ही बढ़े सदा, वट वृक्ष ही बढ़े सदा, यह अपना अभियान है, आओ मिलकर करें पल्लवित यह भारतीयता की
0: क्या
2: जान
0: बात
2: है।
0: है, क्या
2: माँ
0: वाह वाह
2: हिंदी
0: वाह
2: बड़ी
0: वाह,
2: महान है, माँ हिंदी बड़ी महान है।
0: क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर।
2: और माँ से माँ भारती की तरफ, देश के उन सैनिकों की तरफ जिनकी बदौलत हम यहाँ सब सुरक्षित रहते हैं।
0: क्या बात,
2: और शीर्षक है, मैं वर्दी कहलाता हूँ।
0: वाह।
2: जब नदियां हूं उफान पर, बन जाए किसी की जान पर, जान मैं बचाता हूँ,
0: वाह,
2: हाँ मैं वर्दी कहलाता हूँ,
1: क्या बात है, वाह।
2: मैं वर्दी कहलाता हूँ। दिल्ली हो या पटना, कोई हो जाए दुर्घटना, मैं दौड़ वहां पे जाता हूँ, सबको राहत पहुंचाता हूँ, हाँ मैं वर्दी कहलाता
0: क्या
2: हूँ।
0: बात,
2: कहीं जा रही हूँ बेटिया, बड़ा कष्ट होता जब 3 साल से 13 साल की, 23 साल की और 63 साल की माँ को कोई छूता है। कहीं जा रही हो बेटियां, खतरे में उनकी अस्मत, कुछ पैर पड़े हों पीछे, लंगड़ा उन्हें बनाता हूँ, हाँ
0: वाह
2: मैं
0: क्या बात
2: वर्दी
0: है, वाह वाह
2: कहलाता
0: वाह वाह,
2: हूँ, मैं वर्दी कहलाता हूँ। उद्योग रहे सुरक्षित, बढ़ता रहे मेरा देश, दिल से ड्यूटी निभाता हूं, हाँ मैं वर्दी कहलाता हूं।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या
2: तुम
1: बात
2: मना सको दिवाली, तुम मना सको दिवाली, सजी रहे खुशी की थाली, मेरा वार न जाए खाली, मैं सीमा पर डट जाता हूं, हाँ मैं वर्दी कहलाता
1: बहुत अच्छा,
2: हूं।
1: बात है, बहुत अच्छा,
2: दूध का कर चुकाता हूं, दूध का कर चुकाता
1: चुकाता हूँ,
2: हूं, कभी ना पीठ दिखाता हूं, सीने पर गोली खाता हूं, हाँ मैं
1: मैं
2: वर्दी
1: बदलाव
2: कहलाता
1: बहुत
2: हूं।
1: अच्छा,
2: खूबसूरत हो वादियां, कोई धर्म पूछ मारे,
0: हाँ
2: खूबसूरत हो वादियां, कोई धर्म पूछ मारे, मैं सिंदूर बन जाता हूं, हाँ मैं वर्दी
0: क्या बात
2: कहलाता
0: है,
2: हूं,
0: क्या
2: हाँ
0: बात है,
2: मैं
0: वाह वाह
2: वर्दी
0: वाह वाह वाह,
2: कहलाता
0: बहुत
2: हूं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा,
2: जब खतरे में हो मां, दुश्मन छू ले उसका आंचल, जब खतरे में हो मां, दुश्मन छू ले उसका आंचल, जिंदा सबक सिखाता हूं या लिपट तिरंगा आता हूं,
1: वाह क्या
2: हाँ
1: बात है,
2: मैं
0: बहुत
2: वर्दी
1: अच्छा,
2: कहलाता
0: वाह
2: हूं,
0: वाह,
2: हाँ मैं वर्दी कहलाता हूं।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह,
2: और एक बिल्कुल ताजा कविता है, बाल
0: जी
2: कविता।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत
2: डॉक्टर साहब
0: सुंदर,
2: की
0: पढ़िए
2: इजाजत हो
0: पढ़िए
2: तो
0: पढ़िए,
2: मैं आगे बढ़ूंगा। खिड़की वाले कुब्बी भाई। मेरे ख्याल से आप बचपन की तरफ लौटेंगे तो हमने अक्सर खिड़कियों पे पक्षियों को बैठे देखा होगा, तो एक बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में। खिड़की वाले कुब्बी भाई, कुबी मतलब कबूतर का बच्चा।
0: कबूतर, आहा,
2: उठ बिस्तर से सुबह सवेरे, उठ बिस्तर से सुबह सवेरे, आया खिड़की के पास में धीरे, देखा प्यारा एक कबूतर बैठा था अंडे के ऊपर, देखा प्यारा एक कबूतर बैठा
1: बैठा
2: था अंडे के ऊपर, खुश हो कुड़क कुड़क वो करता, खुश हो कुड़क कुड़क वो करता, जोर जोर से सांसें भरता, कभी धीमे से पंख उठाता, कभी चोंच होले सहलाता, थी शायद अंडे की माता, थी शायद अंडे की माता, आने वाला था कोई भ्राता, मैंने भैया को बतलाया, भैया दाना लेकर आया, मिलकर हमने रोज खिलाया, फल फूल गई वो माता, फल फूल गई वो माता,

0: तो प्यारी
1: बहुत
0: है।
1: बहुत
2: क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी को, जिन्होंने कवियों की रसना है उसमें जो रस निष्पत्ति करती है ऐसे उसका आधार हिंदी को बताया,

0: बीते दिन खुश हुए विधाता, अंडे से कुछ बाहर आया, अंडे से कुछ बाहर आया, कुब्बी कुब्बी मैं चिल्लाया, अचरज में सब भरे पड़ोसी, चुन्नू रामू चाचा मोसी, फोड़ी गुल्लक केक मंगाया, फोड़ी गुल्लक केक मंगाया, गली भर में धमाल मचाया, खिड़की पर तख्ती लटकाई, फिर खिड़की पर तख्ती लटकाई, यहाँ रहते हैं
1: बहुत सुंदर।
0: धन्यवाद।
2: बिगड़ैल हो जब जवां मर्दी बोलती है, बिगड़ैल हो जब जवां मर्दी बोलती है, या शहर में गुंडा गर्दी बोलती है, अपराध जब भी सर पर चढ़ के नाचता है, मैं मेरा तेवर और वर्दी बोलती है, मैं मेरा तेवर और वर्दी बोलती है। वर्दी तक बात पहुंची, वो चाहे सरहदों पे खड़े हुए हों, चाहे हमारे देश प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर संकल्पबद्ध हमारे नौजवान हों, उन सभी को प्रणाम करते हैं। हिंदी दिवस में ये भी एक अच्छा सत संकल्प है। आइएगा, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ मेरे अग्रज आदरणीय उमा शंकर जी राही, जो वात्सल्य ग्राम में अपनी वाग सेवा देते हैं और यहाँ आपके हृदयों तक दस्तक देने के लिए आए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। आदरणीय उमा शंकर जी राही।
3: धन्यवाद विमल जी, हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आभारी हूँ आकाशवाणी का कि आप सब तक हिंदी की पीड़ा और हिंदी का हर्ष पहुंचाने के लिए।
2: क्या बात है।
3: और जैसे हम भारत माता, गौ माता, गंगा माता कहते हैं, वैसे हमारी हिंदी माता भी है। हिंदी तन है, हिंदी मन है, हिंदी तन है, हिंदी मन है, हिंदी ही मेरा जीवन है।
2: क्या बात।
3: हिंदी तन है, हिंदी मन है, हिंदी ही मेरा जीवन है। मन यदि कभी व्यथित होता है, हिंदी मेरी संजीवन है। मन यदि कभी व्यथित होता है, हिंदी मेरी संजीवन है। और हिंदी के कुछ स्वरूपों का वर्णन करता हूं कि हिंदी हृदयों का सेतु बनी, हिंदी हृदयों का सेतु बनी, मन से मन को जोड़ा करती, और हिंदी हृदयों का मूल भाव सतपथ पर है मोड़ा करती।
2: क्या बात है।
3: हिंदी भारत का प्राण तत्व, जीवन मूल्यों का सार तत्व, मैं काले की संतान है, क्या जाने हिंदी का महत्व। मैं काले की संतान है, क्या जाने हिंदी का महत्व। संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक हिंदी ही बोली जाती है, और केवल संप्रेषण नहीं है, भावों से तोली जाती है। केवल संप्रेषण नहीं है, भावों से तोली जाती है। अरे बड़े बड़े विद्वानों ने हिंदी का लोहा माना है, नाथों सिद्धों संतों ने इस हिंदी को पहचाना है। दुनिया में सबसे है विराट अपनी हिंदी का शब्द कोश, फिर भी तो हिंदी पिछड़ी है, बस इसी बात का रहा रोष। फिर भी तो हिंदी पिछड़ी है, बस इसी बात का रहा रोष। हिंदी ने नव परिवर्तन के सहज रूप स्वीकार किए, इस कंप्यूटर के युग ने भी है सफल नए आयाम दिए। लगता है हिंदी का वर्तमान पहले से अधिक सुहावन है, और सत्ता का मिला समर्थन तो भावी भविष्य भी पावन है। सत्ता का मिला समर्थन तो भावी भविष्य भी पावन है। हिंदी समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया ने भारत में जब से पांव पसारे, अपनी हिंदी भाषा के भी हो गए बारे ने आ रहे।
2: अच्छा है।
3: पहले अंग्रेजी की होती थी सभी जगह मनमानी, फेसबुक और व्हाट्सएप में उसने चादर तानी, लेकिन अब हिंदी का भी अपना वर्चस्व बढ़ा है, इसीलिए सोशल मीडिया से जन जन आज जुड़ा है। गूगल को भी विश्व पटल पर छाना बहुत जरूरी था, इसीलिए हिंदी को उसको लाना भी मजबूरी था। आज विश्व में तीसरे नंबर इंटरनेट है भारत, और फेसबुक में पाया है नंबर एक महारत। इंटरनेट ने हिंदी से है जब से हाथ मिलाया, सोशल मीडिया का परचम भी जगभर में फहराया।
2: अच्छा है।
3: लिखा पढ़ी संवाद सभी कुछ इस पर ही निर्भर है, कहीं हैक ना हो जाए, बस इसी बात का डर है। शासन और प्रशासन ने भी जब हिंदी को मान दिया, सोशल मीडिया ने हिंदी की जगभर में संदा मान दिया, और जो मैं भविष्य देख रहा हूँ हिंदी का, वो कह सकता हूँ कि पर किए सख्त ने

0: भारत की सभ्यता नष्ट कर डाली थी। परकीय शक्ति ने भारत की सभ्यता नष्ट कर डाली थी। सोने की चिड़िया को लूटा छीनी हमसे खुशहाली थी। भारत ने करवट बदली है खोया गौरव लौटाने को। दासत्व लिए प्रतीकों का नामोनिशान मिटाने को। जिस दिन भारत का धर्मदंड संसद में जाकर खड़ा हुआ खुल गया देश की किस्मत का सत्ता का ताला पड़ा हुआ। और जिस दिन भारत के राजा ने संसद की चौखट चूमी थी स्वाभिमान के रथ चढ़कर भारत माँ उस दिन घूमी थी। भारत की नीति के आगे हर कद बौने हो जाते हैं। सरस्वती की प्रतिमा भी सम्मान सहित लौटाते हैं। अरे वंदे मातरम को संसद ने गरिमामयी सम्मान दिया। राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान समतुल्य पूर्ण है मान दिया। अरे तुष्टिकरण की नीति का अब बादल छटने वाला है। लगता है अपनी हिंदी से भी संकट हटने वाला है। वह दिवस शीघ्र ही आएगा। निज भाषा का स्वर गहरेगा। अपनी हिंदी का परचम भी संपूर्ण राष्ट्र में फैलेगा। अरे भारत का गौरव फिर से सम्मान जगत में पाएगा। अपने भारत का संविधान हिंदी में लिखा जाएगा। अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंजेगा एक ही नारा। हम हिंदी हैं, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। और इसके साथ ही मैं हिंदी के बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता संचालन में जिनको महारत हासिल है बहुत ही सम्मान के साथ हम सब कवियों को उन्होंने बुलाया। मैं चाहता हूं कि इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे भाई जितेंद्र बिमल जी और आए हिंदी पर अपने विचार रखें।
1: स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। कहना यह चाहता हूं शंका शमन न हो तो निराशाएं नहीं मरती। अपनों के संग में अपनी आशाएं नहीं मरती। हिंदी का कल है सुंदर। दो चार तोतलों से भाषाएं नहीं मरती। रिश्तों की आधारशिला है ये वाणी। अपराजित अद्भुत एक किला है ये वाणी। सोच समझ कर वाणी का उपयोग करें। मन हर्षित हो ऐसे शब्द प्रयोग करें। वाणी स्तर से उत्पीड़न मत करिए। वाणी को बस सृजन कार्य में रत करिए। एक दिन वाणी चमत्कार दिखला देगी। तुमको यश के अंबर पे बिठला देगी। सूर कबीरा मीरा की वाणी अनुपम तुलसी के मानस को पूज रहे हैं हम। मैं भी उस मानस की एक चौपाई हूं। मैं शब्दों की अर्जित पुण्य कमाई हूं। भावों की माला का एक धागा हूं मैं। सोच रहा हूं कितना बड़ भागा हूं मैं। अरे वीणा धरणी की वीणा का तार हूं मैं। शब्दों की मर्यादा का किरदार हूं मैं। अक्षर का निर्माण न दुनिया कर पाई। शब्दों के निर्माण में होती कठिनाई। अरे जिनके शब्द सुरीले मन से कृष्णा है। जिनके अंदर केवल यश की तृष्णा है। आंखों की भाषा को पढ़ना सीख गए या कविता की प्रतिमा गढ़ना सीख गए। वो जो मुस्कानों से झोली भरते हैं अरे देव तलक फिर उनका वंदन करते हैं। गुप्त मैथिली शरण निराला दिनकर में। जय शंकर महादेवी धूमिल के स्वर में। भारतेंद्र कवि हो या फिर कवि भूषण हो। प्रेमचंद हो पंत हो सांकृत्यायन हो। करुणा का स्वर हो या व्यंग का

0: तेवर हो या मुझ जैसे कवि का कोई नवल स्वर हो, सबने भारत माँ को श्रद्धा अर्पित की, श्वास श्वास कविता की सदा समर्पित, श्वास श्वास कविता की सदा समर्पित की, शब्द शक्ति की साक्षी वेद रचाए हैं, शब्द शक्ति की साक्षी वेद रचाए हैं, जो हर एक मानव का मान बढ़ाए हैं, वाणी मानव के मन की अव्यक्त रही, वाणी संस्कार की अर्जित शक्ति रही, वाणी वो हथियार है जिसकी काट नहीं, वाणी के क्रय विक्रय की कोई हाट नहीं, अरे जिसकी वाणी में मृदुता और सरसता है, उनकी खातिर ये संसार तरसता है,
1: बहुत सुंदर,
0: उनकी खातिर ये संसार तरसता है, उनकी खातिर ये संसार तरसता है। बात हिंदी की होती है तो मैं कहना चाहता हूं कि भाषाएं जीवन में उतर जाती हैं, भाषाएं जीवन में उतर जाती हैं, संस्कार बन मन में ठहर जाती हैं, जब तक जीते हैं तब तक जीती हैं, तुमको क्या लगता है मर जाती हैं?
1: बहुत सुंदर,
0: तुमको क्या लगता है मर जाती हैं? अरे उसमें भी हिंदी तो वो भाषा है जिसमें रस है, भाव है, जिज्ञासा है, कवियों की आशा है हिंदी भाषा, इसीलिए कवियों से भी आशा है, जब हिंदी बोले तो हिंदी बोले, जब हिंदी बोले
1: तो हिंदी बोले,
0: तो हिंदी बोले, उसमें आंग्ल भाषा के शब्द ना घोले, उसमें आंग्ल भाषा के शब्द न घोले, अरे बीच का रहना ठीक कदापि नहीं है, 100% होना हो जिसका हो लें, 100% होना हो जिसका हो लें, यह शानदार है जबरदस्त रहेगी, हम हैं ये आश्वस्त ये स्वस्थ रहेगी, हम हैं ये आश्वस्त ये स्वस्थ रहेगी, और वक्त पड़ा तो हिंदुस्तानी जनता कुछ भी हो पर हिंद परस्त रहेगी।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर।
0: आइएगा अपने आज की इस काव्य गोष्ठी के शिखर कवि तक पहुंच रहे हैं, बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि सत्य सत्य है, सत्य सत्य है, पक्ष विपक्ष नहीं होते, तर्क कभी उसके समकक्ष नहीं होते, बेहतर जीवन जीने को संघर्ष करो, इन बातों के कक्षा कक्ष नहीं होते। जो स्वयं में एक विश्वविद्यालय है, कविता के माध्यम से जन जागरण का काम करते हैं, मैं उन्हें कभी ओझ का कवि नहीं मानता हूं, वे उत्साह के कवि हैं, जो टूट रहा हो उसको संबल देते हैं, मनोबल देते हैं, प्राण देते हैं, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी को, वे हमें कृतार्थ करें, अभिनंदन स्वागत।
2: धन्यवाद विमल जी, सभी को सादर सस्नेह नमन करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पूर्व के साथियों ने अच्छी कविता आप तक पहुंचाई, मैं भी प्रयत्न करूंगा कि उनके साथ जुड़ सकूं, तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया, मुझे वहां चढ़ना पड़ेगा। मैं पहले चार पंक्तियां सम्मान की पढ़ता हूं। मन प्राणों को शीतल करती, क्या है हिंदी,
1: क्या बात है,
2: मन प्राणों को शीतल करती, मन प्राणों का चंदन है, मन प्राणों को शीतल करती, मन प्राणों का चंदन है, जीवन की मुस्काने इसमें जन जीवन का क्रंदन है, अपनी संस्कृति की ठाती है, अपनी संस्कृति की ठाती है, ज्ञान दीप की बाती है, सत सत वंदन है हिंदी का, कोटि कोटि अभिनंदन है, सत सत वंदन है हिंदी का, कोटि कोटि अभिनंदन है, हिंदी आन की भाषा है, हिंदी ज्ञान की भाषा, हिंदी ही हमारे देश के सम्मान की भाषा। विश्वास पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जब तक सूर्य है नभ में, गगन में चांद तारे हैं, हिंदी ही रहेगी अपने हिंदुस्तान की भाषा, हिंदी ही रहेगी अपने। हम तुलसी को कहाँ से पढ़ेंगे, कबीर को कहाँ से पढ़ेंगे, हम विद्यापति कहाँ से पढ़ेंगे, तब कहता हूँ अमर संतों की इसमें है बसी अमृतमयी वाणी,
1: अच्छा
2: अमर संतों की इसमें है बसी अमृतमयी वाणी, कबीरा सूर तुलसी है,

चंद्र कीर्तनकार खुश सोरो की गलहार बनी। चंद्र बरदाई से हम लोग प्रारंभ मानते हैं, मतभेद है, सरहपा है, चंद्रभान है, सारिभद्र सूर्य है, अधिकांश ने मांगे चंद्र बरदाई हिंदी के पहले कवि। चंद कीर्तनकार खुश सोरो की गलहार बनी, वाणी का बिला की ललकार बनी, हिंदी माँ सूरज झूम के झुमाए, तुलसी राम मेरा माए, मीरा के मजीरा की पुकार बनी, हिंदी माँ देव घना नंद रत्ना।

0: तुलसी राम मेरा माय, मीरा के मजीरा की पुकार बनी हिंदी माँ, देवा घनानंद रतना कर बिहारी संग, रस वरसा की रस धार बनी हिंदी माँ, पराधीनता की बेड़ियों के लिए शस्त्र सी जो आज एकता का एक तार बनी हिंदी माँ। मुकरी पहेली वाली सखा या सहेली वाली, मुकरी पहेली वाली सखा या सहेली वाली, भाषा यह अपनी है अपने वितान की, मिश्री की डलियों सी फूलों की कलियों सी, भाषा यह अपनी है आंसू मुस्कान की, देश की कथाओं वाली देश की व्यथाओं वाली, देश की कथाओं वाली देश की व्यथाओं वाली, भाषा यह अपनी है अपने विधान की, जिस में हमारी जान जान जिस पे कुर्बान, हिंदी यह धड़कन यहाँ हिंदुस्तान की, हिंदी यह धड़कन यहाँ हिंदुस्तान की, संस्कृति का लेके संस्कार वही बह चली, संस्कृति का लेके संस्कार वही बह चली, भाषा बन गई जन जन के जुबान की, तुलसी कबीर सूर मीरा ने दुलार दिया, प्रीत यहाँ पाई है रहीम रस खान की, आन की बनी है भाषा मान की बनी है भाषा, भाषा यह हमारी है हमारे स्वाभिमान की, जब तक जय जय हिंदी की रहेगी यहाँ, तब तक जय जय होगी हिंदुस्तान की, तब तक जय जय होगी हिंदुस्तान की। दादी की कहानियों को नहीं बिसराए हम, दादी की कहानियों को नहीं बिसराए हम, नहीं बिसराए यहाँ दादा की जुबान को, ये हमारे पूर्वजों की भाषा है भाई, दादा की दादी की कहानियों को नहीं बिसराए हम, नहीं बिसराए हम दादा की जुबान को, नहीं बिसराए हम माँ की प्यारी लोरियों को, नहीं बिसराए हम पूर्वजों के गान को, नहीं बिसराए जय हिंद जय घोष यहाँ, नहीं बिसराए जय हिंद जय घोष यहाँ, नहीं बिसराए राष्ट्र गीत राष्ट्र गान को, नहीं बिसराए हम आन बान शान यहाँ, नहीं बिसराए हम हिंदी हिंदुस्तान को, नहीं बिसराए हम हिंदी हिंदुस्तान को। एक छोटा सा गीत तो पढ़ देता हूँ सब आपके बीच में।
1: जी स्वागत।
0: हमारी संस्कृति का गान है पहचान है हिंदी।
1: वाह।
0: हमारी

हिस्ती, जब तक है यहाँ हिंदी ये हिंदुस्तान जिंदा है, हमारे देश की धड़कन हमारी जान है हिंदी, हमारे देश की धड़कन हमारी जान है हिंदी, हिंदी में हमारे देश की स्वर्णिम कहानी है, ये खुसरो

0: बसते हैं, हिंदी देश भक्तों की यहाँ जिंदा निशानी है, हिंदी देश भक्तों की यहाँ जिंदा निशानी है। गुलामी के अंधेरों में रही दिन मान है हिंदी,
1: क्या बात है,
0: गुलामी के अंधेरों में रही दिन मान है हिंदी, हमारे देश की धड़कन हमारी जान है हिंदी, यहाँ हिंदी में हम बोले यहाँ हिंदी में हम गाएं, यहाँ हिंदी में लिखने का सभी संकल्प दोहराएं, ये हिंदी प्यास बन जाए।

0: की धड़कन हमारी जान है। ये अंतिम चार पंक्तियां प्रार्थना की, आपसे निवेदन की पढ़ रहा हूँ।
1: स्वागत स्वागत।
0: हमारी भावनाओं को मिले आधार हिंदी का,
1: आहा।
0: हमारी भावनाओं को मिले आधार हिंदी का, हमारी कल्पनाओं को मिले झंकार हिंदी का, सारे देश का हिंदी को जिस दिन प्यार मिल जाए, हम सारे देश का हिंदी को जिस दिन प्यार मिल जाए, चमन हो जाएगा उस दिन यहाँ गुलजार हिंदी का,
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: उस दिन यहाँ

0: देश की धड़कन हमारी जान है हिंदी।
1: जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।
2: कार्यक्रम के विधिवत समापन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूँ दूरदर्शन के प्रभारी भाई सत्यव्रत सिंह जी का, कि आज की कवि गोष्ठी में पधारे हमारे सभी वरिष्ठ कवियों का और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें।
3: परम आदरणीय हमारे विद्वजन कविगण, केंद्र प्रमुख महोदय और सभी साथियों, राजभाषा हिंदी पखवाड़ा प्रतिवर्ष 14 सितंबर से और हमारे 28 से 29 सितंबर तक का आयोजन होता है, और इस अवसर पर हम एक संकल्प लेते हैं कि अपने काम काज में हिंदी को स्थायित्व दें और अधिकतम काम हो सके वो हिंदी में हो। और चूँकि हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी आज दुनिया के पटल पे देखे जाए तो किसी की मोहताज नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि अपनी मानसिक स्थिति से हम खुद उभरें। और एक बात ये भी है, क्योंकि ये बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, इसमें अकेले हिंदी से भी नहीं काम चलने वाला है। अब मथुरा जैसी ब्रज स्थली में देश के हर हिस्से से व्यक्ति आ रहा है, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि कम से कम हमारे शहर में रस्तों के नाम, जगह दूसरी भाषाओं में भी, क्योंकि ये इंक्लूसिवनेस जो समायोजन है, अगर बाहर का व्यक्ति यहाँ आएगा और अपनी भाषा के साइन बोर्ड या कुछ शब्द या कुछ ऐसी चीज़ जिससे उसे परेशानी नहीं हो, तो यहाँ से जो भाव लेके जाएगा वो हमारी हिंदी के प्रचार प्रसार में जो है ना मदद। तो इंक्लूसिवनेस जो है, समायोजन जो है ना, हर भाषा का, हर संस्कृति का, हर व्यक्ति का, हमारे संस्कारों में ही नहीं है कि हम जो है ना एकांकी या एकल संस्कृति को जिए।
0: हम समूह में जीते हैं।
3: हाँ, हम समूह में जीने वाले लोग हैं और हम वही शक्ति दुनिया को हम दे पा रहे हैं, तो हमारी एग्जिस्टेंस भी है, नहीं तो कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हमारा जो है अस्तित्व जो है ना यहीं पर टिका हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
4: तो बंधु मथुरा वृंदावन आकाशवाणी और दूरदर्शन मथुरा केंद्र की ओर से यह काव्य गोष्ठी आप तक पहुंची, जिसमें प्रतिभाग किया डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी, श्री दीप चंद जी वर्मा, डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी, डॉक्टर उमाशंकर राय जी, और संचालन कर रहा था मैं आपका अपना जितेंद्र सिंह। हमें दें अनुमति, नमस्कार।
5: अभी आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कवि गोष्ठी सुन रहे थे। इस कवि गोष्ठी में प्रतिभागी थे डॉक्टर रमाशंकर पांडे, उमाशंकर रही, नीतू गोस्वामी, जितेंद्र सिंह विमल और दीपचंद वर्मा। इस कवि गोष्ठी का संचालन किया जितेंद्र सिंह विमल ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ओम प्रकाश सिंह।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की

0: बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026

0: 20 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग साराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और

ये आवाज़ आप सुन रहे हैं चितलकर की, इनके साथ साथियों को भी आप सुनेंगे। राजेंद्र कृष्ण की रचना, श्री रामचंद्र का संगीत निर्देशन है, फिल्म का नाम है अलबेला।

अभी आप सुन रहे थे चितलकर और साथियों की आवाजों में अलबेला फिल्म का गीत। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी, श्री रामचंद्र का संगीत निर्देशन था।

कार्यक्रम का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का है।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में द बर्निंग ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गाए हमराज फिल्म के इसी गीत के साथ ही सुहाने तरहने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोहिनी शर्मा,
1: दोस्तों आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है। लेकिन अफसोस, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
2: नमस्कार
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर, लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331 0481, 2371717, 2371710, 2331444, और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर यह कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर, ये क्या धारणा है और कितना सच है?
3: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत, हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है
1: जी।
3: और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 8 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले 2 वर्ष जो हैं ये हम तीनों ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1000 दिन है। अब ये जो पहले 1000 दिन है ये एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पर जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि माँ को भी, वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपने इशू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1000 डेज
1: जी। और हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, क्या सवाल है आपका?
4: नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमा

0: खाने में क्या बाल विकास और पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा, कृपया बताएं।
1: जी डॉक्टर बिष्ट
2: नमस्कार, और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपने तो बहुत सही बात कर ली, और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है। जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है, और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे आपने सही बात की। ये बहुत बहुत गलत बात है। जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सब

0: कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सब से बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है।
1: जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे की जो पूरक आहार है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है, उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है दरअसल?
2: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज़ ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 डिकेड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है। और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है। तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम आपके ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है। जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक
1: जी
2: बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है।
1: जी ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिमुलेशन जिसे कहा जाता है, ये है क्या?
0: हाँ, थैंक यू। एक तो संपूरक आहार के लिए जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है, दूध की मात्रा कम नहीं करनी है। जो पहले 6 महीने आपने केवल केवल केवल स्तनपान किया था, उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे मैडम ने कहा आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में पौना कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए, तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत ज़रूरी बात है, कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या इसको रख दो, तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते, और वो बच्चे के जो समय है जब उसकी भूख है उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है, और अर्ली स्टिमुलेशन में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय उससे बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते सुनाते
1: जी
0: खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था वो हुआ था, और आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ, तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानियां सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे के बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब उनमें, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वजन जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं,

0: वज़न बहुत कम रह जाना, यानी अंडर वेट हैं या स्टंटेड ग्रोथ है, तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं। तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं इनका सवाल।
1: मनीष जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार जी।
0: शुक्रिया जी, नमस्कार।
1: मैं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को, तो इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए और जो बच्चों को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में। और दूसरा, आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
0: जी, तो इन्होंने दरअसल दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं, और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की, खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविजन। तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हो। डॉक्टर बिष्ट
2: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने, बहुत सही है। निमोनिया के से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी, और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं। और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं। उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है, जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए 0 स्क्रीन टाइम है 2 साल से कम बच्चे के लिए। तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं, और आगे जाके बच्चे की जो जो कैपेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 साल 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं करेगा।
0: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी बताइए क्या है आपका प्रश्न।
3: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, ये अब कुछ कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं। पनीर नकली, मैं खोया भी नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमारे हमने ही खरीद लिया था गलती से, तो फिर इसको वापिस करा, तो इसके लिए क्या सावधानी बरतें, और क्या ये जंक फूड में भी ये नकली देते हैं, तो जहर पे जहर, नीम कितना करेला है, नीम तला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को अनजाने में खाने पड़ जाते हैं।
0: जी धर्मवीर जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है, हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है, और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से ये समस्या जो है उजागर हो रही है। लेकिन डॉक्टर पांडे, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
4: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है, तो सबसे

0: सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर घर का बना खाना खाइए, कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी है, इस जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी। और बाकी जैसा मुनीष जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का
1: बेशक,
0: कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
1: बहरहाल धर्मवीर जी शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा। और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी, क्या सवाल है आपका?
2: जितेंद्र जी विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार। मैं
1: नमस्कार।
2: मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसे हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं ताकि बच्चों को मानसिक विकास हो सके। जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक खासकर, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम धाग के जिंदगी में, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो, तो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह की कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
1: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सवाल है और खास तौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएं या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल कहना
3: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फ़ायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार, मैंने पहले भी कहा, उसको स्टिमुलेट होना चाहिए। तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगड़ माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको जो संरक्षण देना है और जो साथ देना है बच्चे का, वो तो है ही। तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको, 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं, उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं। कई बार हम उन्हें थोड़ा छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोशअप खेलते हैं, खींचा खाची करते हैं। दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गाँव में करते थे, रस्सा कस्सी कर रहे थे, थोड़ा बहुत हल्की सी कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था। कई बार चीज़ें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे। दीज आर गेम्स विच यू कैन डू, एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करने हैं। आप घर पर बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए ये सब करना, दैट इज ऑल। आँख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आँख मिचोली थी वो बहुत बहुत अच्छा खेल था, क्योंकि उसमें बच्चों को अंधेरे में भी या आँख बंद करके भी चलने का छूने का स्टिमुलेशन मिलता था।
1: जी डॉक्टर साहब, और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से, राकेश जी। जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
4: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र कोटखाई शिमला से। तो मैं, हमारे जो है सेब का जो है फल होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को फल फ्रूट खाते हैं तो किस तरह से खिलाने चाहिए? कई बार हम बच्चों की आदत होती है कि फल ऐसे ही खा लेते हैं, कि क्या फल जो है धो के खाना कितना आवश्यकता है, जैसे कि खासकर जो है हमारे एप्पल होगी।
1: जी जी जी डॉक्टर पांडे,
0: देखिए अगर आपका बच्चा छोटा है, पहली बात तो है कि अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है, उसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब वो जो चम्मच से गिराने पे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा निकले। अब आप जो सेब की बात कर रहे हैं जो ग्रो होता है, छोटे बच्चों को इवन छोटे छोटे मैश अगर आप काट के देंगे पीसेस तो उसके गले में फंस सकते हैं. सो बहुत केयरफुल रहिए. छोटे बच्चे को जब तक बच्चा अपने उंगली से पकड़ के उसको

0: उसके दांत ना निकल आए, वो च्यू ना कर पाए, तब तक उसको कटा हुआ कोई पीस नहीं देना है, बिकॉज निगलने और गले में फंसने की संभावना होती है। शुरुआती महीनों में उसको मैश्ड फ्रूट्स ही देने हैं। आपने सेब की बात की, नॉर्मली सेब हम देर से शुरू करते हैं, शुरुआत हम कहते हैं कि हम केला दे सकते हैं, हम आम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जो निगली जा सकें बच्चे के द्वारा, वो देनी चाहिए। शुरुआती उसमें सेब और सेब की फांकें नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये कड़े होते हैं। उसी तरह आप अनार की भी वो नहीं देने हैं आपको। तो ये कुछ सुझाव है हमारी तरफ से।
1: जी जी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं संजय जी। संजय जी, क्या है आपका प्रश्न?
2: शिक्षित दायरे में एक जगह बना दी जाए सरकार की ओर से, ताकि बच्चों की देख रेख करे काम के दौरान, जब माता पिता काम पर हो, ताकि जो है बहुत अच्छे से बच्चों की देख रेख करो, काम के बाद माता पिता ले जाए और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे, या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक।
1: जी जी जी जी जी आइए, आपने एक अच्छे उदाहरण दिए। और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो, और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर, लेकिन पहले जरूर डालिए 0 और फिर नंबर 2331048। या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044। तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए। हालांकि आहार तो मैं समझता हूँ डॉक्टर पांडे की उन्हें जन्म के फौरन बाद ही दे दिया जाता आहार यदि कहें, लेकिन शायद पूरक आहार के विषय में
0: तो वो 6 महीने के बाद ही देना चाहिए।
1: जी जी जी, तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं।
3: इसमें अन्नप्राशन और
1: जी
3: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था थी, परंपरा थी, तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार दे रहा था, उसके लिए अन्नप्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी।
1: अन्नप्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
3: फेस्टिवल
1: संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया है, जैसे विवाह संस्कार, तो उसी तरह अन्नप्राशन सबसे पहला।
0: पर एक इसमें बात और है कि अन्नप्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद खिलाना भी है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हर्षवर्धन जी ने बात की, कि कई बार चटाना इज नॉट सफिशिएंट, हमें बच्चे को खिलाना है माँ के दूध के साथ।
1: जी जी जी। और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमें आपकी फोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, और डॉक्टर बिष्ट आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज कुछ अलग था इस सवाल को लेकर। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविजन का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
3: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी, और उनके पास सीमित समय है, और कई बार हम जो रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज़

0: से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ जाए, जड़ मत हो जाए और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहे। तो इस तरह के एक डेज्ड और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं, वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है, ना उसे खाने का टेस्ट टेक्स्चर पता चल रहा है, और वो उस वक्त जो खाने का जो मज़ा लेना है वो नहीं ले पाता। तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना, उनको फूड फैटिज्म भी ज़्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा होती
1: ज्यादा
0: हैं।
1: होती। तो डॉक्टर पांडे, आपसे हमारा एक सवाल था, वो
2: जी
1: चूंकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित रहा। तो यूनिसेफ ने इस
2: जी
1: बारे में क्या कदम उठाए हैं, बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
2: तो दो चीज़ें हैं। एक हम टर्म यूज़ करते हैं, टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने 2 महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है, लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा। तो ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। और एक एरिया है, क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फूड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे का काफ़ी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सीवियर वेस्टिंग या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलके काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग्स फील्ड से लाते हैं, हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
0: जैसा मनीष जी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके मानस, क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है, 90 से 95% मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो मस हेड सरकमफ्रेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे जो सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शंस भी तभी बन रहे होते हैं।
1: जी, यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इस ईमेल पर भेज सकते हैं, पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है, आप हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: थैंक यू।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है ढोला गायन। कलाकार हैं सुभाष चंद्र और साथी। सबसे पहले सुनिए प्रसंग भंवरताल की लड़ाई।

0: दावत खावे जाओ, तू न जाएगा दावत खावे।
1: हाँ

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं ढोला गायन। अभी आप सुन रहे थे भंवर ताल की लड़ाई। कलाकार हैं सुभाष चंद्र और साथी। और अब लीजिए सुनिए किशन ताल का ब्याह।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी मीनाक्षी वाजपेयी का सितार वाचन। राग है झिंझोटी, तबले पर संगति गुलाम साबिर की है।

0: अभी आप सुन रहे थे मीनाक्षी वाजपेयी का सितार वादन रागधा झंझोटी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
3: भाषा किसी भी

0: समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit. Prime Minister Narendra Modi